मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को है। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीटर वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। एएफसी अंडर-20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप हमारे कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ। आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय

हमारा मन बाहरी दुनिया से कभी भी शांति नहीं पा सकता है जब तक हमारा मन अंदर से शांत ना हो, और हमारा मन अंदर से तभी शांत होता है जब हम अपना ध्यान प्रभु की आराधना में लगाते हैं।

0: अभी आप कविता पौडवाल, उमाकांत, रमाकांत, जगजीत सिंह और अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं पर समाप्त हुआ।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
4: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
5: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के विचार।
1: गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर का कहना है कि हम मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हम उसे पाते नहीं। मनुष्य के अंतर में जिस भगवान का वास है, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मानव मंदिरवासी भगवान का अपमान करके हम किस मुंह से ये कह सकते हैं कि हम भगवान की पूजा उसे प्रसन्न करने के लिए करते हैं। भगवान पाषाण मूर्ति में ही नहीं, दीन दुखी जनों के कुटीरों में भी वास।

0: करता है। वो दीन बंधु एवं करुणा सागर है। जो सबसे नीच एवं अधम है वहां उसके युगल चरण विराजित हो रहे हैं। इस सत्य को हृदयंगम कर लेने के बाद क्या हम किसी मनुष्य को नीच या पतित समझकर उससे घृणा कर सकते हैं? गुरुदेव ने अपनी रचनाओं में मानवता का जो आदर्श उपस्थित किया है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का मूल्य सबसे बढ़कर है। धर्मशास्त्र, राष्ट्र एवं समाज के नियम कानून की सार्थकता इसी में है कि वे मनुष्य के मनुष्यत्व के विकास में सहायक हों। राष्ट्र, समाज एवं धर्म के आदर्श चाहे जितने उच्च एवं उदात्त क्यों न हों, किंतु यदि उनके बावजूद मनुष्य का जीवन श्रृंखलित बना रहे, उसे आत्मविकास का सुयोग प्राप्त न हो, तो उनका कुछ भी मूल्य नहीं हो सकता। मनुष्य यदि शरीर से स्वस्थ, मन से सबल एवं सतेज तथा हृदय से उदार एवं विशाल नहीं बना, तो फिर राष्ट्र की व्यवस्था एवं समाज के नियम उसके लिए किस काम के हो सकते हैं? युग युग में, देश देश में जितने महान कवि हुए हैं, सबने मनुष्य के मनुष्यत्व की महिमा का जयगान किया है। रवींद्र साहित्य में भी मनुष्य की वंदना वाणी सर्वत्र मुखरित हुई है, चाहे राष्ट्र के आदेश हों अथवा समाज के विधि निषेध। यदि उनसे मानवात्मा का अपमान होता है, मनुष्य का व्यक्तित्व संकुचित होता है, तो गुरुदेव ने उन्हें मान्यता देना कभी स्वीकार नहीं किया। मनुष्य मात्र के अपमान से उनका चित्त आहत हो उठता था। अपमानित एवं अनादृत मनुष्य की वेदना के प्रति संवेदनशील बनकर उन्होंने उसका अनुभव किया था। मनुष्य यंत्र की सृष्टि न होकर विधाता की सृष्टि है। एक एक व्यक्ति की सृष्टि का विशेष प्रयोजन है, उसके व्यक्तित्व की विशिष्ट महिमा है। इसलिए एक मनुष्य अपने स्वार्थ साधन के लिए यदि दूसरे मनुष्य का शोषण करता है तो यह एक बहुत बड़ा अन्याय है। भगवान की सृष्टि होने के कारण एक एक व्यक्ति उसके आदर का पात्र है। अपनी सृष्टि को देखकर वो स्वयं आनंदित होता है। आकाश के सूर्य, चंद्र, तारे उसके ज्योतिर्मय झाड़ फानूस हैं, जिसके प्रकाश में वो अपनी सृष्टि को देखता है। सृष्टि के आदिकाल में परमात्मा को जब अपने एकांत अस्तित्व के कारण सूनेपन का बोध हुआ, तब उसने अपने को बहु में अभिव्यक्त किया, एको हम बहुस्याम। जब तक भगवान अकेला था वो अपने आप को देख नहीं सकता था। जब पृथ्वी पर मनुष्य का आविर्भाव हुआ, भगवान की योग निद्रा भंग हुई और शून्य सृष्टि में प्रकाश के आनंद कुसुम कुसमित हो उठे। इस पृथ्वी पर मनुष्य भगवान का भार लेकर आया है। वो भार है पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य की रचना करने का। मनुष्य के सिवा दूसरा इस काम को कौन कर सकता है? एकमात्र मनुष्य ही इस गौरव का अधिकारी है।
1: अभी आप विचार बिंदु कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं इस पखवाड़े के कृषि कार्य विषय पर विनोवर शर्मा से जय कृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत।

0: किसान भाई, आज कृषि जगत में बातचीत का जौन विषय हो इस पखवाड़े के कृषि कार्य और ए पे जानकारी देव दे विशेषज्ञ के तौर पे हमारे बीच में श्री विनोवर शर्मा जी अलबट हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानल चाहे कि जौन पखवाड़ा चलत बा में अपने किसान भाई कौन कौन जरूरी कार्य हुआ जौन करें कि उन्हें बढ़िया कृषि मतलब मिले।
1: किसान भाई नमस्कार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य बरसात के समय में आपको बरसात में वर्षा को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: इसमें मुख्य तीन बातें आती हैं, जल निकास, जल प्रबंधन और नत्रजन प्रबंधन।
0: जी जी,
1: तो ये अति आवश्यक है एक सफल किसी कृषक के लिए। और उसमें नए विभिन्न फसलों के, खासतौर से धान की फसलों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो प्रथम पखवाड़ा में जो है कि किसान भाई अपनी रोपाई और सब धान की खेती कर चुके होंगे, धान की रोपाई कर लिए हैं और जो शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की रोपाई जुताई के दूसरे पखवाड़े तक की जा सकती है। सुगंधित प्रजातियों की रोपाई माह के अंत में करते हैं। यदि हरी खाद का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर नहीं कर पाते हैं तो मृदा परीक्षण में कृषि के लिए 60 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस और 60 किलो पोटास अति आवश्यक होता है
0: जी।
1: और इसके साथ अगर सुगंधित किस प्रजातियां हैं तो उनको 30 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास अति आवश्यक होता है
0: जी। और बताएं भैया,
1: धान की खेती में रोपाई से पूर्व 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट खेत में मिला देते हैं, परंतु ध्यान रहे कि फास्फोरस वाले उर्वरक के साथ जिंक को नहीं मिलाया जाता
0: जी जी।
1: पौध रोपाई कतार में 20x30 यानी 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। प्रति स्थान 2 से 3 पौधों को लगाते हैं
0: जी।
1: यदि देरी से रुपाई होती है तो 15x10 सेंटीमीटर पर 40 दिन पुरानी तथा प्रति स्थान 3 से 4 पौधों का प्रयोग करते हैं
0: जी। ऊसर भूमि
1: में, रुपाई के लिए 15x10 सेंटीमीटर के अंतराल पर 35 से 40 दिन पुरानी तथा प्रति स्थान 4 से 5 पौधे का प्रयोग करते हैं
0: जी।
1: धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए रुपाई के 3-4 दिन के अंतराल ब्यूटाक्लोर 50 EC 3 से 4 लीटर 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या 5% ब्यूटाक्लोर ग्रेन्यूल यानी दाने की 30 से 40 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं
0: जी।
1: ऐसे में रसायन न होने पर पेंडीमेथिलीन 30 EC 3.3 लीटर या एनिलोफास 3 EC की 1.65 लीटर मात्रा रुपाई के 3-4 दिन के अंतराल में प्रयोग करते हैं
0: जी जी।
1: ध्यान रहे कि खेत में दानेदार रसायनों के प्रयोग में के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर पानी अवश्य भरा हो।
0: और बताएं,
1: धान में मुख्य खैरा रोग लगता है। इसके लक्षण दिखाई देने पर प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम चूना, 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। खैरा रोग की जो पहचान होती है किसान भाई, यह रोग जस्ते की कमी से होता है।
0: हाँ।
1: इसमें पत्ती पीली पड़ जाती है जिस पर बाद में कत्थई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं।
0: मक्का के बारे में भैया बताएं।
1: मक्का की खेती के लिए समय से बोई गई मक्का में बुआई के 15 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई, फिर 1 सप्ताह के अंतर पर 2 बार गुड़ाई कर दें। घुटनों तक ऊंचाई के पौधों के हो जाने पर निराई गुड़ाई करें
0: जी।
1: नाइट्रोजन की 40 किलोग्राम मात्रा यानी 87 किलोग्राम यूरिया बुआई के 30-35 दिन बाद पौधों के लगभग घुटनों तक की ऊंचाई के हो जाने पर कतारों के बीच में दें
0: जी। अब ज्वार के बारे में भी बताओ।
1: ज्वार में मुख्य रूप से बुआई हो चुकी होती है तो ज्वार की बुआई के लिए आप जो है कि 12 से 15 किलोग्राम बीज आवश्यक होता है और बुआई में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं
0: जी। और बाजरा, मूंग और अरहर के बारे में भी थोड़ा बताएं।
1: बाजरा की खेती के लिए यह पखवाड़ा अति महत्वपूर्ण है और बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है और बाजरा की ICSB 155, WCC 75, राज 171, संकुल एवं पूसा 322, पूसा 23, GHB 316 और IMH 451 प्रमुख संकर किस्में होती हैं
0: जी भैया। मूंग उर्द अरहर के बारे में थोड़ा बताओ।
1: मूंग उर्द की फसल की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। क्षेत्र विशेष के लिए अनुमोदित जातियों की बुआई करें। मूंग और की प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए 12 से 15 किलो बीज प्रति प्रयोग करें। बुआई से पूर्व बीज को राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित करें। बुआई के समय प्रति

0: हेक्टेयर 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फेट तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करते हैं
1: जी।
0: मूंग में बुआई की दूरी 45 से 10 सेंटीमीटर तथा उर्द में 30 से 36 सेंटीमीटर रखते हैं। खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन 30 cc की तथा 3 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल करके बुआई कर देते हैं।
1: अरहर के बताएं,
0: अरहर की फसल में बुआई 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार तथा साथ ही सघन पौधों आवश्यकता से अधिक जो है को निकाल देना चाहिए।
1: अब सोयाबीन, मूंगफली और गन्ना के बारे में भैया बताएं।
0: सोयाबीन के लिए इसकी प्रथम पखवाड़े में अच्छी तरह से खेती की जाती है और खास तौर से यूपी में इसका उत्पादन कम होता है और क्षेत्रफल भी इसका कम है
1: जी।
0: तो इसमें जो किसान भाई अगर खेती करते हैं तो खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद एलाक्लोर 50 cc की 4 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं
1: जी जी।
0: मूंगफली खरीफ की मुख्य फसल है। मूंगफली में बुआई माह के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लेते हैं और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फेट, 30 से 40 किलोग्राम पोटास तथा 100 किलोग्राम जिप्सम कूड़ों में बीज से 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर डालनी चाहिए। अच्छी गुच्छे वाली प्रजातियों की बुआई 30 × 10 से 15 सेंटीमीटर फैलने वाली प्रजातियों की बुआई 45 से 15 या 20 सेंटीमीटर पर करते हैं। बुआई के 3 सप्ताह बाद निराई करके प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम जिप्सम डालकर हल्की गुड़ाई कर देते हैं।
1: अब ये गन्ना, हरा
0: गन्ना मुख्य फसलें हैं और गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है
1: जी जी।
0: और इस समय कृषक भाई गन्ने की खेती में अच्छी तरह से मिट्टी चढ़ाएं।
1: बिल्कुल भैया, हरा चारा पशु बदे काफी जरूरी होता है तो ओके बदे का करें भैया?
0: हरे चारे के लिए लोबिया, ज्वार, बहु कटाई वाली चरी, मक्का, बाजरा व जो ग्वार की बुआई करनी चाहिए और प्रति हेक्टेयर लोबिया के लिए 35 से 40 किलोग्राम, ज्वार के लिए 40 से 50 किलोग्राम, बहु कटाई वाली चरी का 20 से 25 किलोग्राम, मक्का का 50 से 60 किलोग्राम तथा बाजरा का 10 से 12 किलोग्राम बीज आवश्यक होता है
1: जी जी।
0: ज्वार, बाजरा या मक्का तथा लोबिया को 2:1 में
1: जी,
0: ज्वार, बाजरा या मक्का की 2 लाइनों के मध्य 1 लाइन लोबिया में बोने से अधिक पौष्टिक व अच्छा चारा प्राप्त होता है
1: जी जी। सब्जियों की खेती में थोड़ा सा भैया बताएं।
0: सब्जियों की खेती में कृषक भाई इस समय जो सीजनल फसलें हैं बैंगन, मिर्चा, ये अगेती, मूंग, फूल गोभी की रोपाई का समय है। रोपाई के समय बैंगन में 50 किलोग्राम NPK, मिर्च में 40 से 60 और 40 से 50 किलोग्राम NPK, फूल गोभी में 40 × 60 × 40 यानी 40 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं।
1: भैया विनोद शर्मा जी, आप इस पखवाड़े के कृषि कार्य में तरह तरह के फसलन के बारे में किसान भाई इनकी अच्छी जानकारी देना, आपकी जानकारी दी है बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे इस पखवाड़े के कृषि कार्य विषय पर विनोवर शर्मा से कृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर शगुफ्ता नाज की वार्ता, अपच का होम्योपैथिक उपचार।
1: अपच एक ऐसा शब्द है जो पेट के ऊपरी हिस्से में बार बार होने वाली या लगातार होने वाली असुविधा और दर्द को संदर्भित करता है। अपच को डिस्पेप्सिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग खाने के बाद पेट में भारीपन, पेट में बेचैनी या दर्द, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन, पेट भरा हुआ या फूला हुआ महसूस होना, उल्टी, मतली, अम्लीय स्वाद, पेट में गुड़गुड़ाहट, अत्यधिक गैस और डकार आने जैसे लक्षणों के समूह के लिए किया जाता है। अपच एक बहुत ही परिचित और आम समस्या है जो सभी उम्र के लोगों को कभी न कभी प्रभावित करती है।

0: यह आमतौर पर खराब खाना खाने की आदतों से संबंधित होता है। अधिक खाना या जल्दी जल्दी खाना अपच के सबसे आम कारणों में से एक है। अत्यधिक मसालेदार या वसायुक्त भोजन का सेवन, धूम्रपान या अत्यधिक मादक पदार्थ का सेवन करना, चिंताग्रस्त और तनावपूर्ण स्थिति में रहना, अवसाद, थकान और नींद पूरी न होना और गतिहीन दिनचर्या भी अन्य कारक हैं जो अपच का कारण बन सकते हैं। क्रॉनिक अपच का अनुभव करने वाले लोगों में एक अंतर्निहित गैस्ट्रिक रोग होता है। इन गैस्ट्रिक समस्याओं में पेट में सूजन, पेट में अल्सर जो एच पायलोरी नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण हो सकता है, जो पेट की अंदरूनी परत को संक्रमित करता है। एसिड रिफ्लक्स, जिसमें पेट का एसिड बार बार अन्न प्रणाली में चला जाता है, जिससे सीने में जलन और दर्द बना रहता है। अन्य स्थितियों में जैसे गैस्ट्राइटिस, इरिटेबल बाउल डिजीज, सीलिएक रोग, पित्त की पथरी, अग्नाशय शोथ, पेट का कैंसर, मधुमेह और थायराइड रोग इत्यादि भी अपच का कारण बन सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान भी अपच की समस्या बनी रहती है। कभी कभी अपच कुछ दवाओं जैसे कि गर्भ निरोधक दवाएं, सूजन रोधी दवाएं या दर्द निवारक दवाएं इत्यादि दुष्प्रभावों से भी उत्पन्न हो सकता है। बचपन में दुर्व्यवहार का इतिहास या अवसाद अपच की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। होम्योपैथी अपच की शिकायत के लिए एक प्राकृतिक और अत्यधिक प्रभावी समाधान प्रदान करती है। होम्योपैथिक दवाएं अपच के तीव्र और जीर्ण दोनों मामलों के लिए फायदेमंद हैं। इन दवाओं का उद्देश्य अपच के अंतर्निहित कारण का इलाज करना है, ताकि समस्याओं का पूरी तरह से निदान किया जा सके। अपच के लिए होम्योपैथिक दवाओं का चयन प्रत्येक केसेस में अद्वितीय व्यक्तिगत लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अपच के उपचार में कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो अत्यधिक लाभदायक हैं, उनमें पहली दवा है नक्स वोमिका। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो लंबे समय तक मानसिक या भावनात्मक तनाव में हो, या मसालेदार भोजन, मादक पेय या कैफीन युक्त पेय पदार्थ लेने के बाद, या नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन के बाद पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। रोगी को सीने में जलन, पेट फूलना, गैस और कब्ज की समस्या होती है। यह तब सबसे अधिक प्रभावी होती है जब पेट पर लगातार बने भारीपन में मल त्याग करने के बाद भी आराम महसूस न हो रहा हो। अपच के लिए दूसरी सबसे अहम दवा है कार्बोवेज। इसमें पेट के ऊपरी हिस्से में असुविधा होती है। पेट के ऊपरी हिस्से में गैस जमा हो जाती है, दर्द, जलन और ऐंठन जैसा महसूस होता है। जलन खाने के बाद बढ़ जाती है। गैस का अत्यधिक संचय होता है तथा डकार द्वारा अस्थायी रूप से आराम मिलता है और डकार एवं मल दुर्गंध युक्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्बोवेज अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण दवा है चाइना ऑफिशनेलिस। यदि रोगी को फल, चाय और दूध के अधिक सेवन से अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पूरा पेट फूला हुआ लगता है तथा डकार से किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल रहा हो, पेट में खासकर दाई ओर बहुत तेज दर्द हो रहा हो जो मुख्य रूप से खाने के बाद और रात में बढ़ जाता हो, और साथ ही अत्यधिक थकावट महसूस हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में चाइना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। चौथी दवा है लाइकोपोडियम। यदि रोगी को थोड़ा खाना खाने के बाद ही पेट भरा भरा महसूस होता है, खाने के तुरंत बाद पेट में विशेषकर पेट के निचले हिस्से में सूजन के साथ गैस बनी रहती है और पेट में तनाव, गुड़गुड़ाहट और दर्द महसूस होता हो, और विशेषकर संध्या 4 से 8 बजे के बीच यह समस्या बढ़ जाती हो, तो ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम अत्यंत लाभकारी दवा साबित होती है। पांचवी दवा है पल्सेटिला, और यह तब संकेतित होता है जब वसायुक्त भोजन जैसे आइसक्रीम, घी, मक्खन, केक या अन्य जंक फूड आइटम के सेवन के कारण अपच उत्पन्न होता है। जैसे मरीजों के अपच के लक्षण परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं, साथ ही रोगी को लंबे समय तक पानी न पीने के बाद भी प्यास की तीव्रता का एहसास नहीं होता है। यह अपच के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के कुछ उदाहरण मात्र हैं। इनके अलावा आर्सेनिकम एल्बम, ब्राइनिया एल्बा, कैल्केरिया कार्ब, चेलिडोनियम, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस, इपिकाक, रोबिनिया, सल्फर, फॉस्फोरस, एसाफेटिडा इत्यादि कई दवाएं हैं जो अपच की स्थिति में उपयोग की जाती हैं। अच्छी तरह से चुनी गई होम्योपैथिक दवा अपच के कारण होने वाली परेशानियों से राहत दिलाने में मदद करती है और भविष्य में अपच की पुनरावृत्ति की संभावनाओं को खत्म करने में मदद करती है। बार बार अपच की स्थिति उत्पन्न होने पर उचित निदान और उपचार के लिए योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करें और सेल्फ मेडिकेशन से बचें।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शगुफ्ता नाश की वार्ता, अपच का होम्योपैथिक उपचार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 10 बजे आप सुनेंगे खेल दर्पण, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर प्रियंका मलिक का उपशास्त्रीय गायन, दिन में 12:15 पर प्रेम जैन का गिटार वादन और रात 10:30 पर पंडित प्रेम कुमार मलिक का धमार गायन प्रसारित किया जाएगा।

सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर सरगम कांत वैश्य के स्वर में भजन और गीत सुनिएगा। सुबह 10:05 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर आप सुनेंगे राज मणिधामल और साथियों के स्वर में लोकगीत, एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:00। सुबह 11:30 पर सुनेगा फिल्म संगीत। दिन में 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी रंजना त्रिपाठी के गाए लोकगीत। साथ ही आप सुनेंगे डॉक्टर अजय मिश्रा से मोहन धनराज की बातचीत। विषय होगा मानसिक अवसाद से कैसे बचें। दोपहर 2:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा उमंग। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार हैं ओम प्रकाश, दीपक और साथी।

युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर, शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे आदित्य पांडे की वार्ता ग्रामीण जीवन में वनों का सह अस्तित्व, साथ ही सियाराम मिश्र से रामायण पाठ सुनिएगा। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर अंशु सिंह की वार्ता कालिदास से प्रकृति चित्रणम, रात 8:00 फिल्म संगीत।

रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात 9:30 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। दिल्ली का

उत्सवानां संस्कृतेः संस्कृतिकवैभवस्य च उत्सवरूपेण आयोज्यते। इतः प्राग् प्रधानमन्त्री मोदी शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलनस्यावधौ रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य, अर्मेनिया देशानां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री अद्य शंघाई सहयोग संघटनस्य 26वें शिखर सम्मेलनं च संबोधयिष्यति। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद

जन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। आइए सुनते हैं नील कमल फिल्म का ये भजन। आशा भोसले की आवाज़ है, संगीत दिया है रवि ने और रचना है साहिल लुधियानवी की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए सुबह फिल्म का ये भजन। लता मंगेशकर की आवाज़ है, संगीत दिया है सुधीर फड़के ने और रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की।

अभी आपने सुना फिल्मों से भजन। हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। वैश्विक संकट के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की पहली तिमाही में 7.8% की दर्ज हुई वृद्धि। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह वृद्धि 6.9% की गई थी दर्ज। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेल खंड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, नए रेल खंड और रेल कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र के विकास को मिलेगी मदद। और प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद

0: जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
1: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक मजबूत समृद्ध और विकसित में विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत को चिप निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
2: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद कल नई दिल्ली में मसौदा सूची को जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। कौशाम्बी के पुरामफ्ती थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में कल एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के समय फैक्ट्री में 20 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, एयरफोर्स, NDRF और SDRF के करीब 200 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने बताया कि घायलों के उपचार, राहत और बचाव कार्य की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2-2 लाख रुपए की राहत राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कल बहराइच में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इस खंड पर नेपालगंज रोड से वाराणसी सिटी विशेष रेलगाड़ी को भी रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए रेलखंड और ट्रेनों से मिली कनेक्टिविटी प्रदेश में केवल बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा और सुविधा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।
3: ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत सरकार की ओर से अपने मित्र राष्ट्र नेपाल के सहयोग के लिए त्वरित कदम उठाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।

0: मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नए रेलखंड की शुरुआत से यात्रियों की आवाजाही अधिक आसान होगी और क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी के साथ विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि गेज परिवर्तन के साथ नानपारा, मटेरा, रिसिया, बहराइच, बभनान और नेपालगंज बड़े रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम में उन्होंने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई।
1: भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे भी इस प्रयास में जुड़ा है। रेलवे के जो बॉर्डर के जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर और एनएफआर के कुछ हिस्से, इन सब के साथ मैं लगातार संपर्क में हूं और रेलवे के अधिकारी, जिले के अधिकारियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ और एमईए के कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रहे हैं। जहां पर भी रेस्क्यू होकर यात्री पहुंचे, उन सबके लिए स्पेशल कोच लगा के व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का भी रेलवे ने लगातार प्रयास किया है।
0: कार्यक्रम में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस परियोजना से नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 17 जिलों की करीब 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंगा के किनारे बसे कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। एसीपी दशाश्वमेध घाट अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की हैं, साथ ही ड्रोन से स्थिति की निगरानी की जा रही है। उधर चित्रकूट में रामघाट पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से राजापुर और मऊ के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एक रिपोर्ट।
2: जिले में 24 बाढ़ चौकियां चिकित्सीय स्टाफ और आवश्यक दवाओं के साथ संचालित हैं। एम्बुलेंस सेवाएं अलर्ट पर हैं, जबकि अस्पतालों में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और रैन बसेरों में भी मेडिकल टीमें तैनात हैं और रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं। जिले में बारिश और जल प्रभाव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए आज अवकाश घोषित किया गया है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसकी वजह से जौनपुर और चंदौली में कक्षा 8 तक के विद्यालयों को जिला प्रशासन ने बंद कर दिया है। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में फरार चल रहे दोनों बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ में दो आरक्षी भी घायल हुए हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने कहा कि यूपी पुलिस शेष अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कल शामली पहुंचकर अंकित के परिजनों से मुलाकात करके संवेदना व्यक्त की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वैश्विक संकट के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की पहली तिमाही में 7.8% की दर्ज हुई वृद्धि। पिछले वर्ष इसी अवधि में ये वृद्धि 6.9% की गई थी दर्ज। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा नए रेलखंड और रेल कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र के विकास को मिलेगी मदद। और प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए सुनिए प्रियंका मलिक का उप शास्त्रीय गायन, राग है भैरवी में ठुमरी और दादरा। तो आइए सुनते हैं प्रियंका मलिक का उप शास्त्रीय गायन।

अभी आप सुन रहे थे प्रियंका मलिक का उपशास्त्रीय गायन राग था भैरवी में ठुमरी और दादरा। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे अनुरेश कुमार पांडे और हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान। उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला, मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज

0: बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
3: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती एक बड़ी ताकत है।
1: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
4: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first.

0: Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
2: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विकास नापा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंद्र के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर

0: चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, दो कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address SCO summit in Kyrgyzstan's capital, Bishkek today. Country's GDP grows 7.8% in first quarter of current financial year, beating RBI's projection of 7%. US describes India as dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. Prime Minister Narendra Modi will address the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO summit has been held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. We have more from a correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India has also been emphasizing the need to create new opportunities for the youth of member

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO की सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली सेमाही के दौरान मुल्क की GDP की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे के बारे में सालिसी से मुतालिक अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। नेपाल में इमदादी कारकुनों ने पनबिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले कारकुनों को तलाश करने के लिए पहाड़ी हिस्से पर धमाका किया। और लियोनेल मेसी ने बैन अलाक्वामी फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह अर्जेंटीना की कौमी टीम के साथ 21 साल से जारी सफर भी खत्म हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO की 26वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। SCO की इस सरबरा कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू है पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक साथ। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने दौरे के पहले दिन कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत की, महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया और दीगर आलमी रहनुमाओं के हमरा 6ठे वर्ल्ड नोमेड गेम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। जनाब मोदी ने कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दो तरफा

0: मीटिंग की। जनाब पुतिन के साथ बातचीत में जनाब मोदी ने मुसलसल जंग के बजाय जंग खत्म करने की जरूरत पर जोर देते हुए आलमी तनाज़ात के सिफारती हल की हिमायत की।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: बातचीत के दौरान भारत और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा समेत दो तरफा तआवुन के अहम उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर आजम मोदी ने कहा कि ये इत्मीनान की बात है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों तक पहुंचा है।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: वजीर आजम मोदी ने ईरान, जमहूरिया किर्गिज और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें भी की। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किर्गिज़िस्तान के अपने दो रोज़ा दौरे के पहले दिन कल रूस, ईरान, जमहूरिया किर्गिज और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ दोतरफा मीटिंगें की। इन मीटिंगों में दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कल शाम बिश्केक में दीगर SCO रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स की बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान भारत की हकीकी GDP की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि साबिका साल इसी मुद्दत में यह 6.9% थी। आदादोशुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद से मुतालिक वजारत ने मौजूदा माली साल की अप्रैल से लेकर जून तक की पहली सहमाही के लिए GDP के तखमीने जारी किए हैं। उसने कहा है कि आलमी उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय मईशत में तरक्की की रफ्तार बरकरार रही है। वजारत के सेक्रेटरी डॉ सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी शोबों में शरह तरक्की बहुत मुस्बत रही, जिससे यह जाहिर होता है कि जोग्राफियाई और सियासी हालात के बावजूद सरकार के इकदाम का असर हो रहा है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने भारत की GDP की शरह तरक्की 7.8% रहने को एक बड़ा कारनामा करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर अजम ने कहा कि इस कामयाबी से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, सप्लाई निजाम में रुकावटों और आलमी गैर यकीनी के हालात के बावजूद मुल्क के अवाम की इज्तिमाई कुव्वत और उनके अज़्म की अक्कासी होती है। इधर वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मईशत की इस शानदार कारकर्दगी का सहरा मुल्क के अवाम और उनकी मेहनत को जाता है। सरकारी आदादोशुमार में भारत की GDP की शरह तरक्की 7.8% रहने के इंकशाफ के बाद अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। एक खबर रसाई एजेंसी के साथ इंटरव्यू में व्हाइट हाउस के सीनियर डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कुश देसाई ने कहा कि शरह तरक्की के आदादोशुमार से ट्रंप इंतजामिया के इस नुक्ते नजर की तस्दीक होती है कि भारत तेजी के साथ तरक्की करने वाली इकतसादी कुव्वत है। उन्होंने कहा कि भारत की वसी और वसअत हासिल करने वाली मईशत से अमरीकी कंपनियों और सरमायाकारों के लिए बड़े मौके सामने आ रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया भी भारत में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने और अमरीका में और ज्यादा भारतीय सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने आलमी बैंक की जानिब से दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे के बारे में सालिसी अदालत के फैसले को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। भारत ने मस्कूरा ट्राइब्यूनल की अथॉरिटी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उसके फैसले कानूनी एतबार से काबिल कबूल नहीं हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा है कि भारत ने कभी भी सालिसी से मुतालिक इस पैनल को तस्लीम नहीं किया और न ही इसकी कार्रवाई में हिस्सा लिया और वो इसके फैसलों का पाबंद नहीं है। भारत ने यह बात दोहराई है कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदा अब भी मुअत्तल है। यह बयान हेग में सालिसी से मुतालिक अदालत के इस फैसले के बाद सामने आया है कि मस्कूरा मुहदे को मौकूफ रखने की भारत की वजूहात के हवाले से उसे मुअत्तल रखने या खत्म करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। मस्कूरा पैनल

0: ने भारत से कहा था कि वो 1960 के पानी में हिस्सेदारी के समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहे। भारत ने अलबत्ता यह दलील पेश करते हुए फैसले को खारिज कर दिया कि मस्कूरा पैनल ही मुआहदे की शरायत की खिलाफवर्जी करते हुए कायम किया गया था। वजारत खारजा ने कहा है कि मुआहदे के ताल्लुक से भारत के आजादाना फैसलों या बुनियादी ढांचे के उसके प्रोजेक्टों के ताल्लुक से पैनल का कोई दायरा इख्तियार नहीं है। भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मुअत्तल कर दिया था। भारत ने कौमी सलामती को लाहिक तशवीश और सरहद पार से दहशतगर्दी जारी रहने का हवाला दिया था। भारत का कहना है कि मस्कूरा मुआहदे के बारे में उसका फैसला अपना मामला है और सालिसी से मुतालिक पैनल के बयानात या फैसलों से पानी और बुनियादी ढांचे से प्रोजेक्टों से मुतालिक उसके इकदाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेपाल में बचाव टीमें उन 600 से ज्यादा कारकुनों तक पहुंचने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो त्रिशूली 3A पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर मिट्टी और गाद से भरी हुई टनल में फंसे हुए हैं। बचाव टीमों के अहलकार टनल का रास्ता साफ करने के लिए धमाका खेज मादों, भारी मशीनरी और एयर पंप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जिंदा बच जाने वाले कारकुनों को तलाश किया जा सके। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 939 तक पहुंच गई है जबकि 3,925 अफराद अब भी लापता हैं। इनमें 592 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। पनबिजली प्रोजेक्टों के मकाम से अब तक 279 अफराद को बचाया गया है जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 11,000 से ज्यादा लोगों को बचाकर बाहर लाया गया है। बचाव कार्रवाई में भारत, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन के साथ साथ नेपाल और चीन की फौजी टीमें मुआवनत कर रही हैं। भारत ने बचाव कार्रवाई और मुतासिर लोगों की शिनाख्त में मदद की खातिर खसूसी टीमें वहां भेजी हैं। भारत की 19 अरकान पर मुश्तमिल एक फॉरेंसिक टीम ने वहां बरामद की गई लाशों की शिनाख्त की खातिर DNA जांच में मदद करते हुए काठमांडू में अपना काम शुरू कर दिया है। उधर पनबिजली प्रोजेक्टों के मकामात पर भी एक भारतीय बचाव टीम काम कर रही है। ये माहरीन 933 कारकुनों और मुलाजमीन का पता लगाने के लिए नेपाल के हुक्काम की मदद कर रहे हैं जो 26 अगस्त से लापता हैं। ऐसा ख्याल है कि इनमें से कई कारकुन टनल्स के अंदर फंसे हुए हैं। नेपाल में सैलाब आने और बिहार में दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे के तनाजुर में मवेशी परवरी और माही परवरी से मुतालिक वसाइल के महकमे ने लोगों को यह सलाह दी है कि वो उन मछलियों को खाने में इस्तेमाल न करें जिन्हें सैलाब के पानी से पकड़ा गया है। महकमे के मुताबिक सैलाब के दौरान मछलियां गंदे पानी, मुर्दा मवेशियों और दीगर नाकिस मादों के राबते में आ सकती हैं, इसलिए बैक्टीरिया, वायरस और बीमारी फैलाने वाले दीगर जरासीम की वजह से इनके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और इससे मुत्तसिल शिमाली साहली ओडिशा में हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेरे असर ओडिशा में फिर से शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने सुंदरगढ़ और क्योंझर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ओडिशा में फिर से बारिश का जोर बढ़ गया है। मौसमियात महकमे ने झारसुगुड़ा, बारगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल और मयूरभंज जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि 12 जिलों में येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। जुलाई के महीने में ओडिशा में 91% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर जून से लेकर 26 अगस्त तक रियासत में 1104 मिलीमीटर बारिश हुई जो कि नॉर्मल से 31% ज्यादा है। मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में कल के बाद बारिश का जोर कम हो जाने का इम्कान है, अलबत्ता कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और शिमाल मशरकी भारत के बाज हिस्सों में भी तेज बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी दिल्ली में आज दोपहर को गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویبر کل سے بھارت کا 3 دن کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے دوران وہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے وسیع تر علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی

हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, मनोरंजन के अनगिनत साधन हैं। क्या डिजिटल युग में रेडियो की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है? तो श्रोताओं, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, रेडियो की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है।

0: लगने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं रेडियो की। रेडियो ने समय के साथ खुद को बदला है। पहले रेडियो केवल एक उपकरण था, लेकिन आज रेडियो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब रेडियो कार्यक्रम केवल पारंपरिक रेडियो सेट पर नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप, वेबसाइट और इंटरनेट के माध्यम से भी सुने जा सकते हैं। यानी तकनीक बदली है, सुनने का तरीका बदला है, लेकिन रेडियो की आवाज़ आज भी हमारे साथ है। रेडियो जनसंचार का एक प्रभावशाली माध्यम है। इसकी सबसे बड़ी

विशेषता है सरलता और पहुंच। रेडियो सुनने के लिए हमें पढ़ना या स्क्रीन पर लगातार नजरें टिकाए रखने की जरूरत नहीं है। हम यात्रा करते हुए भी, काम करते हुए भी आराम से रेडियो को सुन सकते हैं। यही कारण है कि रेडियो आज भी समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और जन जागरूकता का महत्वपूर्ण माध्यम है। कभी कभी एक आवाज हजारों शब्दों से ज्यादा प्रभाव छोड़ती है। रेडियो की यही खूबी है, यह सीधे श्रोता की कल्पना से जुड़ता है। डिजिटल युग में जहां स्क्रीन और तकनीक का बोलबाला है, वहीं रेडियो हमें आवाज़ के माध्यम से इंसानी जुड़ाव का एहसास कराता है। एक अच्छा रेडियो जॉकी केवल कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि श्रोताओं से बातचीत करता है, उनकी फरमाइशें सुनता है, संदेश पढ़ता है और उनकी भावनाओं से जुड़ता है। यही अपनापन रेडियो को दूसरे डिजिटल माध्यमों से अलग बनाता है। गीतों की फरमाइशें हों, मौसम की बात हो, शहर की खबर हो या किसी सामाजिक विषय पर चर्चा, रेडियो हर विषय को आवाज़ देता है। श्रोताओं, डिजिटल युग ने रेडियो को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे नया रूप दिया है।

सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और फेक न्यूज के बीच रेडियो आज की खबरों का सबसे विश्वसनीय स्रोत बना हुआ है। भूकंप, बाढ़ या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय जब इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाते हैं, तब रेडियो ही सूचनाएं पहुंचाने का एकमात्र सहारा बनती हैं।

0: सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और फेक न्यूज के बीच रेडियो आज की खबरों का सबसे विश्वसनीय स्रोत बना हुआ है। भूकंप, बाढ़ या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय जब इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाते हैं, तब रेडियो ही सूचनाएं पहुंचाने का एकमात्र सहारा बनती हैं। रेडियो तरंगों को काम करने के लिए महंगे डेटा पैक या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। एक छोटा रेडियो बेहद सस्ता होता है, जिसे समाज का हर व्यक्ति आराम से खरीद सकता है। श्रोताओं, अंत में हम आपसे यही कहेंगे, रेडियो आज भी समाज में बेहद प्रासंगिक, विश्वसनीय और सुलभ जनसंचार माध्यम है। डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया के इस दौर में रेडियो ने अपनी उपयोगिता खोने के बजाय खुद को नए रूप जैसे पॉडकास्ट और एफएम में ढाल लिया है। तो श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज का कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज यहीं पर समाप्त हुआ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। तो आज के लिए बस इतना ही, कार्यक्रम समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की।
1: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
4: हाँ माँ, मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
3: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
4: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
5: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा।
6: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए क्यूआर स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
7: आरबीआई कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
8: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जाँच लें।
9: आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
10: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
11: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
10: आरबीआई कहता है जानकार बनिए,
11: सतर्क रहिए।
12: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
7: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने।

Will you dance with me? Let's enjoy.

श्रोताओं, अभी आपने सुना तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था सुखविंदर सिंह ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और रचना थी समीर की। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं छुपा रुस्तम फिल्म से।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
2: महिला बंदियों को आत्मनिर्भर और रोजगार परक गतिविधियों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने की कार्यवाही शुरू कराने के निर्देश जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने दिए हैं। DM और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन जी जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण करने जेल पहुंचे थे, जहां दोनों अधिकारियों ने बाल बंदी और महिला बंदी बैरक के साथ साथ पाकशाला का निरीक्षण किया और साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता समेत बंदियों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बाल बंदी बैरक में बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनके अधिवक्ताओं की व्यवस्था की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। बरसात के मौसम को देखते हुए जेल परिसर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और मौसमी तथा संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने चीनी की कीमतों और भंडारण की स्थिति पर प्रभावी निगरानी के लिए समिति का गठन किया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि चीनी का अनावश्यक और अत्यधिक भंडारण नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यापारी को

0: एक स्थान पर 30 दिन से ज्यादा अवधि के लिए चीनी का भंडारण करने की अनुमति नहीं होगी। एक ही परिसर में अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से स्टॉक पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद के सभी चीनी डीलरों को भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी हर शुक्रवार को अनिवार्य रूप से घोषित करनी होगी। स्टॉक घोषणा के बाद इसकी सूचना जिला खाद्य विपणन अधिकारी को भी देनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि आम उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी अथवा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश चारा नीति के तहत जिले के गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश को वर्ष भर पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है। प्रथम चरण में 10 गौ आश्रय स्थलों से जुड़ी चरागाह भूमि पर नेपियर घास की रोपाई कराई जा रही है। प्रत्येक चयनित गौ आश्रय स्थल की 0.2 हेक्टेयर चरागाह भूमि में नेपियर घास लगाई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक गौ आश्रय स्थल को 6000 नेपियर रूट्स स्टैम्प की निशुल्क आपूर्ति राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र बाबूगढ़ हापुड़ से की गई है। रोपाई और संबंधित कार्यों के लिए प्रत्येक गौ आश्रय स्थल के बैंक खाते में 4000 रुपए की धनराशि भी भेजी गई है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत जिले में पशुओं का बीमाकरण शुरू हो गया है। 20 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान में सितंबर तक 50,625 पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया है।
1: मेरा नाम मलखान है। जो सरकार ने पशु बीमा की योजना चलाई है, ये बहुत ही लाभदायक है किसान के लिए। सरकार ने गांव-गांव प्रचार किया है तो मुझे पता लगा है, और बहुत सारे लोग लाभार्थी भी हुए हैं और हो भी रहे हैं, तो सरकार का बहुत बहुत आभार।
0: जल जीवन मिशन के तहत खारे पानी और फ्लोराइड प्रभावित गांवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। जलेसर, सकीट और शीतलपुर विकासखंड के कुल 214 गांवों को नहर आधारित सतही जल स्रोत पेयजल योजना से जोड़ने के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इससे करीब 4.5 लाख ग्रामीणों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आवागमन को बेहतर बनाने और संकरी सड़कों से होने वाली परेशानी को कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 2 प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इन दोनों परियोजनाओं पर करीब 37 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार दोनों मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है और कम चौड़ाई के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है।
2: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
3: अंबेडकर नगर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर अपने प्राण गंवाने वाले लोगों की स्मृति में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च का नेतृत्व विधायक धर्मराज निषाद, जिलाधिकारी सप्रिया एवं पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने किया। मार्च के दौरान उपस्थित लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके बलिदान को नमन किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व जनपद अम्बेडकर नगर में पूरे उत्साह उल्लास एवं राष्ट्रभक्त की भावना के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने एकलव्य स्टेडियम अकबरपुर में ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रध्वज को सलामी दी और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों एवं अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता हमें असंख्य वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान से प्राप्त हुई है। उनके आदर्शों एवं राष्ट्र सेवा की भावना को आत्मसात करना ही उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि है। जिलाधिकारी ईसा प्रिया ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ पूरा वातावरण देशभक्त एवं राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो गया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महापुरुषों एवं राष्ट्र नायकों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों, संघर्ष एवं सेवा की भावना को नमन किया। जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जनपदवासियों को

0: हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकारों का उत्सव नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का भी संकल्प है। हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों के अनुरूप एक सशक्त समृद्ध आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। अम्बेडकर नगर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में विकास भवन में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की ई लॉटरी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। इस योजना में कुल 12 लाभार्थियों का चयन किया गया है। अम्बेडकर नगर में हथकरघा बुनकरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उनके पारंपरिक व्यवसाय को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से शासन द्वारा संचालित झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के अंतर्गत 30 व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों का चयन किया गया है। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि इन 30 बुनकरों को प्रथम किस्त के रूप में 27,90,00,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के अंतर्गत शासन द्वारा 20 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। शासनादेश के क्रम में परिक्षेत्र अयोध्या के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26-27 में 30 व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों के पक्ष में प्रथम किस्त के रूप में कुल 27,90,000 रुपए की धनराशि आहरण एवं वितरण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य पात्र हथकरघा बुनकरों को आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके कार्य को और अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाना है, जिससे बुनकरों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सके। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शिव बाबा धाम में भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनपद में विभिन्न विकास खंडों एवं नगर निकायों से आए 292 जोड़ों का विवाह उनकी सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं परंपराओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार विधिवत सम्पन्न कराया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद अम्बेडकर नगर के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 926 विवाहों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 292 कन्याओं का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े पर कुल 1,00,000 की धनराशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। सावन के महीने में अम्बेडकर नगर में काफी धूम रही। कांवड़ लेकर निकले शिवभक्तों से सड़कें गुलजार रही। शिवभक्तों को कोई समस्या न हो इसके लिए प्रशासन मुस्तैद रहा। सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। शिव बाबा टांडा के झारखंडी महादेवा मंदिर और महादेवा घाट पर बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने जलाभिषेक। अम्बेडकर नगर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, उनका तिलक किया। स्कूली छात्राओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा, डीएम ईशा प्रिया और मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला सहित कई अधिकारियों के कलाई पर राखी बांधी। रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री बस सेवा का लाभ महिलाओं ने उठाया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मेटिव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के रामपुर मरकज की है।
1: आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है आपका मेज़बान फरीदुल्ला खान। सलाम मोहब्बत कबूल कीजिए। आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। सामीन, आपके अदबी ज़ौक़ शौक़ की सैराबी के लिए आज हम इस प्रोग्राम में इनेकाद कर रहे हैं एक सेहतमंद गुफ्तगू का। सेहत या तंदरुस्ती इंसान का सबसे बड़ा ख्वाब बनकर रह गई है, जिसे हासिल करने के लिए वो हर मुमकिन कोशा है, क्योंकि बदलते दौर ने और बदलती ज़िंदगी ने अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है तो वो इंसान की सेहत है और उसकी तंदरुस्ती है। इसी सेहत को कायम रखने और इसे हासिल करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। महंगी से महंगी दवाएं, काबिल से काबिल डॉक्टर्स का इलाज, सब कुछ करने के बाद भी मुकम्मल जिस्मानी, ज़हनी और कल्बी सेहत से इंसान लगातार महरूम होता चला जा रहा है। तंग दस्ती अगरचे हो गालिब तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। जी हाँ, तंदरुस्ती और सेहत सब चीज़ों से बढ़कर कितना ही आदमी दौलतमंद शोहरतमंद हो, लेकिन वो अगर सेहतमंद नहीं है तो उसकी तमाम चीज़ें बेकार हैं। तो सेहतमंद रहने से क्यों महरूम होता जा रहा है? हमारे खान पान हमारी सेहत से जुड़े हुए

0: हैं। बचपन से लेकर जवान होने और फिर बुढ़ापे तक सब हमारे खान पान पर मयस्सर है। इसी वजू और हल के बारे में जानने के लिए ही आज मस्कूरा मौजू पर गुफ्तगू का हमने एहतमाम किया है, जिसमें हमारे साथ शामिल हैं दो मेहमान, डॉक्टर सैयद अनवारुल हसन साहब और डॉक्टर सैयद शाहनवाज साहब। हम दोनों का समीमे कल्ब आज के इस उर्दू प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं और दोनों के माबेन सुनते हैं ये गुफ्तगू, बदलती ज़िंदगी और हमारी सेहत।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि आजकल की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें बहुत ही तब्दीली आई है। यूं तो इंसान हर दौर में मुहर्रिक रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में हर शख्स नफ्सियात का शिकार है, ख्वाह पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। जरा इस पर थोड़ा गुफ्तगू करें।
2: जी हाँ डॉक्टर साहब, असल में है क्या कि आजकल की जो जिंदगी है उसमें जो नई टेक्नोलॉजी आई है,
1: हाँ ठीक,
2: उसमें सबसे ऊपर है मोबाइल फोन।
1: अच्छा ठीक,
2: मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल फोन है मैंने अक्सर हमारे घरों में देखा है और कुछ अच्छे बेहतर डॉक्टरों के घरों में भी देखा है। जब बच्चा 3-4 साल का बच्चा जब रोता है तो उसकी माँ जो है उसको खिलाने पिलाने से बेहतर यह है कि उसको एक मोबाइल फोन देना पसंद करती है उसके
1: जी,
2: हाथ में।
1: जी, जी, जी।
2: और इसी के साइड अगर देखें तो हम जो मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है, जो साइंटिस्ट है, जो उसको इंजीनियर्स बना रहे हैं, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के इर्द गिर्द या जिस कमरे में छोटे बच्चे हों उस कमरे में मोबाइल फोन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसकी रेज होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, जो उनको
1: सेहत पर
2: जहनी तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी उनको नुकसान करती हैं।
1: जी जी, सही फरमाया आपने। और ये जो आजकल एक खास सबब है इंसान का कि उसने मगरबी तहजीब का दिलदादा हो गया, जहनों में ये बात पेवस्त हो गई है कि जब तक हम मगरबी तहजीब में न ढल जाएं तब तक तरक्की से किनार नहीं हो सकती। चुनाचे हमने उनके लिबास में नजर आने लगे, उनके रस्म व रिवाज अपनाने लगे, यहाँ तक इतनी हमने अपने उलूम व फनून की कदर घटा दी कि उसकी कीमत ही नहीं रही।
2: बेशक बेशक डॉक्टर साहब, आजकल के जो लोग हैं वो मफरीदी सकाफत को ज्यादा तजीज देते हैं।
1: जी, जी।
2: उसकी एक वजह यह है कि हमारा जो कल्चर है हम उसको भूल रहे हैं।
1: जी बेशक,
2: जो हमारा रहन सहन था, जो हमारे बुजुर्ग दीन ने हमें समझाया, जो हमें बताया, हम उसको पूरी तरीके से भूल चुके हैं, जिसकी वजह से उसका असर हमारे सेहत पे, हमारी जिंदगियों पे बखूब दिखाई देता है।
1: हाँ, फिर उसका ये नतीजा हुआ कि हमारे मियारे जिंदगी तब्दील हो गए।
2: बेशक,
1: अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो गई।
2: बेशक,
1: दुनिया की घमा घमी में हम जहनी तनाव में मुब्तला हो गए।
2: बेशक,
1: जिस्मानी जज्बाती सेहत पर असर पड़ने लगा।
2: बेशक,
1: तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया।
2: बेशक,
1: दिल और दिमाग मुतासिर हो गए।
2: बेशक,
1: अपने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के बजाय मौजूदा दौर की घमा घमी में हम मुब्तला हो गए।
2: बेशक,
1: अब इसका नतीजा क्या हुआ कि हम पर बहुत सारी बीमारियां आ गई, यानी नींद का न होना,
2: बेशक,
1: और सर दर्द होना,
2: बेशक,
1: दांतों की बीमारी,
2: जी हाँ,
1: ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा,
2: जी हाँ,
1: तरह तरह की मुब्तला हो गए हम।
2: जी हाँ,
1: पूरा जिस्म हमारा अकड़ जाता है क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा
2: डिस्टर्ब
1: रहता है।
2: जी हाँ,
1: अच्छा, खास बात यह है कि हमने स्पाइसी चीजें खाना शुरू कर दी।
2: जी जी,
1: चिकनाई,
2: जी,
1: जिसकी वजह से हमारे हाजमे पर बहुत
2: डाइजेस्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा असर हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं।
1: हम जब चलते हैं फिरते हैं तो सांस फूलने लगती है।
2: बेशक,
1: हमें कब्ज होने लगा।
2: बेशक,
1: डायबिटीज के पेशेंट हो गए।
2: जी हाँ,
1: तो हमें ये जरूरी है हमारे लिए कि हम इन चीजों को अवॉइड करें।
2: कुछ मैं इस पे भी रोशनी डालना चाहूंगा, ये जो आजकल किसान, हमारे किसान भाई जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड
1: आपने
2: जो यूज करते हैं, वो चाहते हैं कि कम जमीन के टुकड़े पे वो ज्यादा से ज्यादा फसल उपजाऊ कर सकें और उससे पैसा कमा सकें। तो उसमें जो वो जो डननाश और जो वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी सेहतों को बेपनाह खराब कर रहा है। जैसे कि आप ये समझें कि कोई अगर दुकानदार वो कोई दवा का डिब्बा देता है तो वो किसान को भली भांति बताकर देता है कि इतना इस्तेमाल में लीजिएगा इसको, इतने फसल में, इतने जमीन के टुकड़े में इतना इस्तेमाल होगा, मगर उसके बाद भी वो उसकी जो मकदार है, जो क्वांटिटी है, वो उसकी बढ़ा देता है और वो क्वांटिटी जब सब्जी में लगकर हमारे घर आती है तो हम उसको वैसी ही वॉश करते हैं, वैसी ही धोते हैं जैसे हम आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले अपने माँ बाप को धोते हुए देखते थे, मगर वो अब दौर चेंज हो चुका है।
1: असल में डॉक्टर साहब, इसमें बहुत जरूरत है तालीम की।
2: तालीम की,
1: अच्छा, कुछ हमारे अंदर लालच पैदा हो गया।
2: जी हाँ,
1: कि हम ज्यादा चीज इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइजर तो हमारी पैदावार ज्यादा होगी, जबकि इसके बरक्स होता है।
2: बेशक,
1: उसकी वजह यह है कि अगर ज्यादा फर्टिलाइजर

0: डाल दिया गया
1: जी हाँ।
0: तो उससे खेत को भी तो नुकसान होगा,
1: बेशक
0: फसल को नुकसान होगा,
1: और वो होता है और उसका सामना हमें करना पड़ रहा है, कल को हमारी जनरेशन को करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा घातक है।
0: इसलिए हमें ग़िज़ा पर बहुत जोर देना है कि हम किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करें।
1: बेशक
0: हमें चाहिए कि हम सब्ज तरकारियां, मौसमी फल वगैरह का इस्तेमाल करें और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा अगर हम पानी पियेंगे तो जिस्म जो है हमेशा हमें तरोताजा रहेगा और हमारे जिस्म के अंदर खून का दौरान भी बेहतर होगा।
1: बिल्कुल सर,
0: और हमें चिकनाई तो बिल्कुल छोड़नी चाहिए। देखिए 20 साल तक के बच्चों को तो चिकनाई बहुत जरूरी है, उनकी नुशो नमा नहीं होती, लेकिन उसके बाद अगर हम 20 साल के बाद ज्यादा मिकदार में चिकनाई लेते हैं तो दिल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, हार्ट पर बहुत असर पड़ता है और हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है।
1: जी हाँ।
0: और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे दिल की धड़कन का जो चलने का तरीका है वो तब्दील हो जाता है, किडनी पर असर पड़ता है, लीवर पर असर पड़ता है, जितने ऑर्गन्स हैं वो उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम स्पाइसी चीजें छोड़ें, अवॉइड करें बहुत ज्यादा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात पे रोशनी और डालना चाहूंगा, ये जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो बहुत हद तक इन चीजों का जिम्मेदार है। मसलन जैसे कि पहले हम लोगों के घर होते थे जो कि बड़े होते थे और हवादार और जिसमें धूप अच्छी खासी आती थी, अब जो लोगों के घर हैं वो काफी छोटे हो चुके हैं, उसमें धूप हवा
0: कम आती है,
1: उस तरीके से नहीं आती जैसी पहले
0: ऑक्सीजन की जरूरत थी वो नहीं मिल पाती।
1: ऑक्सीजन की जरूरत है बिल्कुल डॉक्टर साहब। आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो धूप में खेलना उन्होंने बंद कर दिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोबाइल का इस्तेमाल
0: खत्म कर दिया।
1: बेशक घर छोटे हो चुके हैं, हवा ज्यादा नहीं आ रही घरों में, धूप ज्यादा नहीं आ रही, लोग एसी ज्यादा लगवाना पसंद कर रहे हैं। पहले लोग आंगन में सोते थे, सुबह में आंगन में जब सोते थे थोड़ी बहुत उनके ऊपर धूप भी पड़ती थी, जो कि आज डॉक्टर चीख चीख कर कैल्शियम की कमी है, आपकी बोन्स कमजोर हो रही है, तो आप सारी दवाइयों से अच्छा ये है कि सुबह की पहली धूप लीजिए,
0: कैल्शियम को बढ़ाइए।
1: एग्जैक्टली, अब मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी मेरे बड़े हैं, आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, मुझसे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है, तो होता क्या है, मैं किसी भी पेशेंट से अगर इस बात के लिए कहता हूं कि भाई आपको सुबह की पहली धूप लेना है, खासकर वुमेन्स में या छोटे बच्चों में, तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब हमारा घर छोटा है, हमें ऊपर छत पे जाके धूप लेना होगी। और अगर मैं अपने पीछे आ जाऊं आप ददियाल और ननियाल के घर पे, तो हम लोगों के घर इतने बड़े होते थे कि पूरे आंगन में धूप होती थी, हम और हम छोटे बच्चे उसी आंगन में दैलान में आंगन में खेलते थे जहां खूब धूप होती थी और हमें खूब कैल्शियम मिलता था सनलाइट से।
0: देखिए इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है कि सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग। अब हर मजहब का हर शख्स यही चाहता है कि मॉर्निंग सूरज से पहले उठा जाए, है, और वो अपने अपने तरीके से अपनी इबादत प्रार्थना करे, और फिर मॉर्निंग वॉक जो है ना और इवनिंग वॉक ये बहुत जरूरी है। आजकल क्या हो गया तरीका कि देर से सोते हैं, 11-12 बज गए, उसके बाद हम सो रहे हैं, खाना खाया फौरन पकड़ लिया, तो इससे भी बीमारियों की जड़ है, ये बीमारियां बढ़ रही हैं। और हमें चाहिए कि हम अपने जहन का तवाजुन जो है, नफसियाती कैफियत जो है, उसको बरकरार रखें, इन्फर्टिलिटी कम्प्लेक्स में न रहें कि मगरबी ममालिक हमसे ज्यादा बेहतर हैं, नहीं, हमारे यहाँ हर किस्म का माहौल है, 3-4 तरीके के मौसम हैं, बरसात है, जाड़ा है, गर्मी है, बसंत है, ये सारी चीजें, इनसे हम अफादियत हासिल करें। देखिए 3 चीजें सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं, ग़िज़ा, आराम, कुव्वते बर्दाश्त। आजकल हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई, जिसकी वजह से हमारे खून का दौरान बढ़ जाता है और हमारा दिमागी तवाजुन खत्म हो जाता है, इस वजह से भी हमें बहुत सारी बीमारियां हम लोग मुब्तला हो रहे हैं। लिहाजा ग़िज़ा के लिए तो हमें ताज़ा फल खाना चाहिए, मौसमी फल खाना चाहिए, सब्ज तरकारियां, तली चीजों से परहेज करना चाहिए, वक्त पर आराम करना चाहिए, वक्त से ही सोएं और वक्त से ही जागें, और कुव्वत बर्दाश्त हमारे अंदर होना चाहिए ताकि ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रहे, वो ना बिगड़े।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा 2 बीमारियों पे जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं और मोस्ट कॉमन हो गई हैं, जिनको हम पहले कहा करते थे कि डायबिटीज, मुझे खूब अच्छे से याद है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं, तो वहां खूब अच्छे तरीके से याद है, मेरे प्रोफेसर कहते थे कि डायबिटीज जो है वो गरीबों की बीमारी नहीं है, अमीरों की बीमारी है।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: मगर आज के दौर में जो मैं देख रहा हूं कि हर एक पेशेंट, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसको ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन में हर ये कॉमन हर पेशेंट में
0: मैंने अभी आपसे अर्ज किया ना कि ज़हनी तवाज़ुन

0: तुन हम बिगाड़ चुके हैं अपना, हमारा नफसियाती जो असर है ना वो बहुत पड़ रहा है जिस्म पर। हम हर चीज को मेहनत करके वसूल नहीं करना चाहते, बल्कि हम ये एक दूसरे को ये देखकर वसूल करना चाहते हैं कि हम भी ऐसी हो जाएं। तो जब तक मेहनत नहीं करेंगे मेरे भाई तो कैसे काम बनेगा। हम सामईन से यही कहेंगे कि वो वक्त पर ही हर काम को अपने अंजाम दें।
1: जैसे कि आपने बताया कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, फिजिकल अफोर्ड करना बहुत जरूरी है, शारीरिक एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास जैसे पहले पेशेंट आता था तो ये हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर और आपका शुगर के बारे में हम बहुत रेयरली पूछते थे, मगर आजकल सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही होता है, चाहे उसको किसी भी तरीके की परेशानी हो, ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं। अब सर ये दोनों जो बीमारी हैं, दोनों जो अमराज हैं, ये लाइफ स्टाइल डिसीज में काउंट हो रहा है। जिस तरीके से हमारी जो जिंदगी, जो तौर, जो तरीके बदल रहे हैं, उसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलिटस ये बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन हो रहा है। और ये बीमारी ऐसी है जो कि जिंदगी भर खत्म नहीं होती, और हमें जिंदगी भर इसकी दवा खिलाना भी होती है, और अल्लाह ना करे हमें होती है तो हमें खाना भी होती है।
0: नहीं, इसका सबसे उम्दा तरीका यही है कि सुबह की वॉक की जाए, खाने पर कंट्रोल किया जाए, स्पाइसी तली हुई चीजों से परहेज किया जाए, और बैलेंस डाइट ली जाए।
1: सही
0: ना, सुबह का नाश्ता हमें क्या करना है, जैसे अभी आप मुझसे कह रहे थे कि खाने में हमने जो चीज हमें डालना है वो हमने उसमें डाल दी, मिर्च उतना ही डाल दिया, नमक उतना ही डाल दिया, अब मुझे कम नमक की जरूरत है, आपको ज्यादा जरूरत है, तो लिहाजा हमारे घर के अंदर जो पका है वो हम दोनों खा लेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसके लिए भी घर में तदारुक करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग अपनी तालीम पर गौर करेंगे तो हम इस बात को अच्छी तरह जान सकेंगे कि सेहत क्या चीज है।
1: बेशक
0: सेहत के बारे में तभी हम मालूम कर सकेंगे कि हमें जब तक तालीम ना हो हमारे अंदर।
1: दुनिया भी तालीम और दीनी तालीम दोनों को हमें जो है पकड़ के रखना है, जब भी हम इन सब चीजों से सेफ रह पाए।
2: बदलती जिंदगी और हमारी सेहत, अभी इस मौजू पर ये गुफ्तगु दोनों के माबेन समाप्त कर रहे थे डॉक्टर सैयद अनवारुल हसन और डॉक्टर सैयद शाहनवाज। उम्मीद करते हैं कि ये गुफ्तगु आपके लिए करामत साबित होगी, और दुआ करते हैं कि तमाम सुनने वालों की सेहत सलामत रखे। तो सामीन, इस गुफ्तगू के बाद अब रुख करते हैं प्रोग्राम के दूसरे सिलसिले कलाम शायर की जानिब, और वहां आपको सुनवाते हैं हमारे आज के शायर जनाब इरफान सागर साहब से उनका ये कलाम।
3: एक चार मिसरे समाप्त कीजिए। मतला है कि चरागों के नज़ारे दे रहे हो, चरागों के नज़ारे दे रहे हो, मगर धुंधले उजाले दे रहे हो, और छुपाकर चांद का पैकर हमी से, छुपाकर चांद का पैकर हमी से, बहुत मध्यम सितारे दे रहे हो, बहुत मध्यम सितारे दे रहे हो, और लबों पर खामोशी रखकर हमी को, लबों पर खामोशी रखकर हमी को, मोहब्बत के हवाले दे रहे हो। एक चार मिसरे और समाप्त कीजिए। मतला है कि अजीब शख्स था मेरे उसूल तोड़ गया, अजीब शख्स था मेरे उसूल तोड़ गया, किताबे जीस्त का हर एक वरक वो मोड़ गया, किताबे जीस्त का हर एक वरक वो मोड़ गया, और भरोसा करता भी कैसे मैं अपने साये पर, भरोसा करता भी कैसे मैं अपने साये पर, अंधेरा छाते ही जो मेरा साथ छोड़ गया। चार मिसरे और समाप्त करें कि मिली जो मंजिलें तर्ज़े बयान भूल गए, मिली जो मंजिलें तर्ज़े बयान भूल गए, हम अपने कदमों के सारे निशान भूल गए, और खामोश होना है हर सांस को मगर फिर भी, खामोश होना है हर सांस को मगर फिर भी, ज़मीं पे उतरे तो फिर आसमान भूल गए। और एक गज़ल के तीन चार शेर समाप्त कीजिए कि सुबह से हम उदास बैठे हैं, सुबह से हम उदास बैठे हैं, अपने ही गम के पास बैठे हैं, और हमने चाहा कि भूल जाएं उसे, हमने चाहा कि भूल जाएं उसे, उसके गम आस पास बैठे हैं, और उसकी आमद का तस्करा सुनकर, उसकी आमद का तस्करा सुनकर, जाने क्यों बदहवास बैठे हैं, और ओढ़ कर भी शराफतों की कबा, ओढ़ कर भी शराफतों की कबा, कुछ बदन बेलिबास बैठे हैं। और मक्ता समाप्त कर लीजिए कि इस कदर दिल पे बोझ है सागर, इस कदर दिल पे बोझ है सागर,

0: आज फिर हम उदास बैठे हैं, आज फिर हम उदास बैठे हैं। मतलब पेशखिदमत है कि दुनिया में कुछ ऐसे पैकर होते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे पैकर होते हैं, गौर से देखो खुद में लश्कर होते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे पैकर होते हैं, गौर से देखो खुद में लश्कर होते हैं, गौर से देखो खुद में लश्कर होते हैं। और दूर उफक पे सूरज जब छुप जाता है, दूर उफक पे सूरज जब छुप जाता है, तेरी याद के धुंधले मंजर होते हैं, तेरी याद के धुंधले मंजर होते हैं। और शेर समाप्त कीजिए कि रखते हैं जो चेहरों पर हंसने का हुनर, रखते हैं जो चेहरों पर हंसने का हुनर, पोशीदा हाथों में खंजर होते हैं, पोशीदा हाथों में खंजर होते हैं। और खुददारी से जीना अब आसान नहीं, खुददारी से जीना अब आसान नहीं, हाथों में लोगों के पत्थर होते हैं, हाथों में लोगों के पत्थर होते हैं। और जब तन्हाई जुल्मत बनकर आती है, जब तन्हाई जुल्मत बनकर आती है, उसकी याद के साए हम पर होते हैं। जब तन्हाई जुल्मत बनकर आती है, उसकी याद के साए हम पर होते हैं, उसकी याद के साए हम पर होते हैं। और आखिरी शेर समाप्त करें कि आँखों की सरहद से ओझल होते ही, आँखों की सरहद से ओझल होते ही, चेहरे पा फिर गम के समंदर होते हैं। आँखों की सरहद से ओझल होते ही, चेहरे पा फिर गम के समंदर होते हैं, चेहरे पा फिर गम के समंदर होते हैं। और मुक्ता समाप्त कर लीजिए कि जिनके दिल में मिट जाने का जज्बा हो, जिनके दिल में मिट जाने का जज्बा हो, सागर ऐसे लोग ही रहबर होते हैं, सागर ऐसे लोग ही रहबर होते हैं।
1: अभी आप जनाब इरफान सागर साहब के कलाम से महजूज़ हो रहे थे। सामीन, ये प्रोग्राम आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ पर तरतीब दिया गया और आकाशवाणी लखनऊ के मरकज़ से नशर किया गया। अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से अभी आप सुन रहे थे आज का उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी रामपुर की थी। 747 किलोहर्ट्ज पर अपने रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं आकाश।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
7: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
6: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
7: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
8: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं सरगम कांत वैश्य।

अभी आप सरगम कांत वैश्य के स्वर में ये गीत सुन रहे थे। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है एससीओ के 25 वर्ष शांति, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना। शंघाई सहयोग संगठन में भारत, चीन और रूस सहित 10 देश शामिल है। भारत वर्ष 2017 से संगठन का पूर्ण सदस्य है। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी संगठन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत के लिए एससीओ प्रमुख देशों के साथ सुरक्षा, आतंकवाद, ऊर्जा, संपर्क और आर्थिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में GDP वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर श्री देसाई ने कहा कि बातचीत तकनीकी स्तर पर पहुंच गई है। दोनों पक्ष उत्पाद वर्गीकरण और शुल्क नियमों सहित विभिन्न विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। भारत ने विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि पर गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए इस निर्णय को कानूनी रूप से

0: अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, ना ही उसकी कार्यवाही में भाग लिया और ना ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जलसंधि अभी भी स्थगित है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। श्री जोशी ने NCERT को भारत की स्कूली शिक्षा की आधारशिला और युवा मस्तिष्कों की पीढ़ियों को संवारने वाला एक अहम संस्थान बताया। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंपों का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद में खेले गए मैच में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में संगीत दिया था आरडी वर्मन ने और रचना थी मजरूह की। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मेरे जीवन साथी फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। संगीत एक बार फिर से है आरडी वर्मन का और रचना भी मजरूह सुल्तानपुरी की।

लीजिए अब सुनिए सीआईडी फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में संगीत दिया है ओपी नैयर ने रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए कल होना हो फिल्म का ये गीत शान और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और रचना है जावेद अख्तर की।

आइए अब सुनते हैं मेरा साया फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज में संगीत दिया है मदन मोहन ने और रचना है राजा मेहंदी अली खां की।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं राजमणि घायल और साथी, आकांक्षा भारती और साथी, और सुरेंद्र कुमार पटेल और साथी। तो सबसे पहले आपको सुनवाएंगे राजमणि घायल और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आप सुरेंद्र कुमार पटेल और साथियों के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

धन्यवाद सोनम शोभित। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं मोहित जैन। ये कार्यक्रम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान। प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की है।

मोहित चौहान एक भारतीय पार्श्व गायक हैं, जिन्हें मुख्यतः उनके रोमांटिक गानों के लिए जाना जाता है। वो दो बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। आपका जन्म हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 11 मार्च 1966 को बीके राणा और कृष्ण राणा के परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर्स स्कूल दिल्ली में हुई और आगे की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश से की, जहां पर धर्मशाला कॉलेज से मास्टर ऑफ साइंस इन जियोलॉजी की डिग्री प्राप्त की। दिल्ली आकर वहां सिल्क रूट नाम का बैंड बनाया। 1966 में इस बैंड का पहला एल्बम बूंद रिलीज हुआ। इस एल्बम का एक गीत डूबा डूबा बहुत हिट हुआ था।

आप हिंदुस्तानी पॉप संगीत और बॉलीवुड संगीत में दक्ष हैं। इसके साथ ही गिटार, हारमोनिका, बांसुरी और सैक्साफोन आपके वाद्य यंत्र है, यानी इसमें आपको महारत हासिल है।

मोहित चौहान ने राम गोपाल की फिल्म रोड में पहली बार प्लेबैक पहली नजर में डरी गया था, लेकिन इनको पहचान मिली 2007 में आई फिल्म जो श्री अष्ट विनायक के बैनर तले बनी थी, जब वी मेट। इस गीत से मोहित चौहान की पहचान हुई, यानी दुनिया ने मोहित चौहान को इस गीत के माध्यम से जाना। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको इसी फिल्म से सुनवा रहे हैं।

2009 में यू टीवी मोशंस के बैनर तले फिल्म आई थी डेली सिक्स। इसमें मोहित चौहान का एक गीत बहुत ही पॉपुलर हुआ था मसकली करके। गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और संगीत निर्देशन था ए आर रहमान का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको यही सुनवा रहे हैं।

आप सुन सकते हैं हिंदुस्तानी पॉप संगीत और बॉलीवुड का मिक्सचर मोहित चौहान की विशेषता है। 2010 में फिल्म आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और ये फिल्म बालाजी फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। इस फिल्म में भी मोहित चौहान ने अपनी आवाज़ दी और ये गीत भी बहुत ही पॉपुलर रहा। गीत के बोल थे पी लूं। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और संगीत था प्रीतम का, तो क्यों नहीं इस गीत को सुना जाए।

हिंदुस्तानी संगीत, पॉप संगीत और बॉलीवुड के मिक्सचर ने मोहित चौहान को एक नई पहचान दी। ख़ास तौर से नई पीढ़ी में वो काफ़ी पॉपुलर हुए। कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। जब एक बार इंसान को सफलता मिलती है तो उसका मनोबल अपने आप बढ़ने लगता है। अवसर भी मिलते हैं, श्रोता मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक फिल्म आई थी तमाशा, ये भी यू टीवी मोशंस के बैनर तले ही आई थी और ये आई थी 2015 में। इसमें मोहित चौहान ने गीत गाया था मटर गश्ती करके, जो आजकल के आम युवा की अकृत

मोहित चौहान को जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली वो गीत था इरोज इंटरनेशनल फिल्म्स के बैनर तले आई फिल्म रॉक स्टार का कुन फया कुन। इसमें पूरा जीवन दर्शन है मोहित चौहान के साथ। इसमें

कलाकार थे एआर रहमान और जावेद अली। इन तीनों के मिली जुली आवाज़ों ने पूरे यूनिवर्स में तहलका मचा दिया, यानी उस परम तत्व की खोज तक ये लोग पहुंच गए। गीत इरशाद कामिल का था और संगीत निर्देशन एआर रहमान का। हालांकि ये फिल्म 2011 में ही आई थी, लेकिन आदमी घूम करके वहीं पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। और ये संदेश भी है, तो इस कार्यक्रम का अंतिम गीत भी है और संदेश भी है पूरी दुनिया के लिए। कुछ भी कर लो, तुमको जाना वहीं है। आइए सुनते हैं गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार थे मोहित चौहान। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा था आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान। प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की थी और ये प्रसारण किया जा रहा था देश के सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज से, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आज आपने जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं जब वी मेट, दिल्ली 6, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तमाशा और रॉकी स्टार। श्रोताओ, हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराइएगा ताकि हम आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम बना सकें। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें आकाशवाणी के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250, 8004926250।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत तीसरी कसम फिल्म से मुकेश की आवाज में। गीत शैलेंद्र का है और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मुगले आजम फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल शकील बदायूनी ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन है नौशाद का।

देश के सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत इश्क पर जोर नहीं। इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन है SD बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, गीत के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

अब आइए सुनते हैं अनजाना फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मेरी जुड़ी आवाज़ों में। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

सुरेश वाडेकर का गाया गीत। रचना संतोष आनंद की है और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। इस समय आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र आपकी सेवा में मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026

0: परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों न हो, अपनी विवेक शक्ति को बनाए रखिए, तभी बुद्धि कारीगर ढंग से आपकी समस्याओं का हल ढूंढेगी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे, बने रहें हमारे साथ।
1: केंद्रीय सचिव,
2: धन्यवाद महोदय। महानिदेशक महोदय से पुनः अनुरोध है कि विमाननीय मुख्य अतिथि महोदय को समस्त बलकर्मियों तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें।
3: That brings us to the end of the investiture ceremony. And now we have for you the address by the Honorable Chief Guest for today, that is Shri Govind Mohan, the Chief Secretary of the Home Ministry.
4: सर्वप्रथम मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का संदेश आप सबके समक्ष पढ़ना चाहूँगा। मैं आरंभ करता हूँ। सशस्त्र सीमा बल के अलंकरण समारोह के अवसर पर बल के सभी जांबाज अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कुछ अपरिहार्य प्रतिबद्धताओं के कारण इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, परंतु मेरी आत्मीय भावनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले सभी लोगों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस आपदा के दौरान एसएसबी मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में अत्यंत सराहनीय भूमिका निभा रही है। संकट की इस घड़ी में एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत स्वरूप है। राष्ट्र की सेवा करते हुए आज तक अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले एसएसबी के 51 वीर जवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन भी करता हूँ। उनकी वीरता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति एसएसबी की अमूल्य विरासत है। वीरता पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हो रहे सभी अधिकारियों एवं जवानों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। ये अलंकरण आपके साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट सेवा भाव के साथ आपके परिवारों के त्याग एवं सहयोग का भी सम्मान है। पदक विजेता अधिकारी और जवान बल के युवा कार्मिकों के लिए आदर्श हैं। मेरा आग्रह है कि आप अपने अनुभव, कार्य पद्धति और कठिन परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों को नई पीढ़ी के साथ साझा करें। सीमाओं पर तैनात एसएसबी का प्रत्येक जवान देश का सजग प्रहरी, आपदा के समय प्रथम सहायक और भारत की सद्भावना का प्रतिनिधि है। मित्रवत सीमा पर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन एसएसबी की सबसे बड़ी शक्ति है। एसएसबी की विशिष्ट पहचान उसकी शक्ति और संवेदना के अद्भुत समन्वय में है। हिमालय जैसी अडिग दृढ़ता और गंगा जल जैसी पवित्र संवेदना के साथ एसएसबी भारत की मित्रवत सीमाओं की सुरक्षा, सीमावर्ती नागरिकों की सेवा तथा पड़ोसी देशों के साथ आत्मीय संबंधों को निरंतर सुदृढ़ करता रहे। सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं और उनके परिवारों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सेवा के आपके संकल्प, साहस, त्याग और समर्पण को कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब मैं अपनी ओर से कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मंच पर मेरे साथ जो मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं एसएसबी के

महानिदेशक संजय सिंघल जी, गृह मंत्रालय में मेरे सहयोगी श्री राजेंद्र कुमार सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट, श्रीमती रेखा लोहानी एडिशनल डीजीपी, श्री रामलु नायक आईजी ऑप्स एसएसबी, इस सभागार में उपस्थित सीएपीएफ और अन्य पुलिस प्रतिष्ठानों के वरिष्ठतम नेतृत्व, उनके डीजीज, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और एसएसबी परिवार के सभी अधिकारी और कर्मीगण, गृह मंत्रालय की ओर से कुछ विषय हैं जो आज चूंकि मेरे को मौका मिला है तो मैं यहां रखना चाहूंगा। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारे मंत्रालय का और अंततः भारत सरकार का एक बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और संवेदनशील लक्ष्य है। 15,000 किलोमीटर की लगभग भारत और अन्य देशों की सीमा की निरंतर चौकसी और उसकी सुरक्षा जब तक हम मजबूत ढंग से नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत की आंतरिक सुरक्षा का भी जो हमारा लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसलिए जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस विभिन्न सीमाओं पर काम करती हैं वो देश के प्रति एक बहुत उच्चतम उनका बलिदान है और देश निर्माण के काम में एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पूर्व एक चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भारत के सभी बॉर्डर्स के लिए परिकल्पित करी है। इस चतुष्कोणीय सीमा व्यवस्था में जो चार प्रमुख स्तंभ हैं वो हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, राज्य सरकारों के जो प्रथम पंक्ति में बॉर्डर्स पर कार्यरत कर्मचारी हैं, जिसमें बॉर्डर के जिलों के जिला अधिकारी, वहाँ के पुलिस निरीक्षक और अन्य जो पूरी व्यवस्था है बॉर्डर के जिलों पर जो राज्य सरकार ने स्थापित की हुई है, वो इसका दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें आयकर विभाग है, जिसमें नारकोटिक्स का पूरा व्यवस्था है। इस तरह के जो 15 से 20 प्रमुख निकाय हैं भारत सरकार के, जो आर्थिक अपराधों पर, नारकोटिक्स पर, फेक करेंसी पर निगाह रखते हैं, वो इसका तीसरा स्तंभ है। और अंततः इसका चौथा स्तंभ है जो वहाँ का समुदाय है, जो वहाँ के आम नागरिक हैं। ये शायद पहली बार भारत के, स्वतंत्र भारत के लगभग 75 से 80 वर्ष के इतिहास में एक ऐसी परिकल्पना को जन्म दिया गया है जिसके प्रणेता गृह मंत्रालय के माननीय मंत्री हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनके आदर्श से ये परिकल्पना विकसित हुई है। और यहाँ मुझे इस परिकल्पना के बारे में बताते हुए इसलिए मुझे हर्ष भी हो रहा है और ये प्रासंगिक भी है कि इस व्यवस्था को आत्मसात किया जाए सभी स्टेक होल्डर्स में और इसको ग्राउंड पर सुचारू रूप से उतारा जाए, इसका पहला जो बड़ी मीटिंग हुई थी वो एसएसबी के ही तत्वाधान में भारत नेपाल बॉर्डर में बिहार के किशनगंज और लगे हुए जो ज़िले हैं उनको सम्मिलित करते हुए लगभग आज से 6 से 7 महीने पहले हुई थी। तो इस पूरी व्यवस्था जो कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में एक बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के रूप में उभरेगी, इसका जन्म एसएसबी के ही कर्मभूमि में हुआ था और इसलिए इस पूरी व्यवस्था को आरंभ करने की जो बधाई है उसके पात्र एसएसबी के महानिदेशक, उसके अधिकारीगण और उसके कर्मी हैं। उसके उपरांत इस व्यवस्था को और विकसित किया गया गुजरात के बॉर्डर्स पर, राजस्थान के बॉर्डर्स पर, त्रिपुरा के बॉर्डर पर और अंत में बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर्स हैं उनमें इसकी अंतिम बैठक लगभग आज से 1 महीने पहले हुई थी। इन्हीं बैठकों के क्रम में हम और जगह भी जाएंगे।

0: और जितने भी हमारे बॉर्डर जिले हैं उनके साथ वार्तालाप करके इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक ये नई पहल जो गृह मंत्रालय में आरंभ हुई है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में एक प्लानिंग है, और इसमें एसएसबी जो हमारी एक अहम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो दूसरा विषय मैं एसएसबी के बारे में आप सबके समक्ष रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि
1: श्रोताओं, हमें खेद है कि अपरिहार्य कारणों से हम आपको समाचार नहीं सुनवा पाए। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दें। खेल दर्पण, ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा रात 10 बजे। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां समाप्त फरमाइएगा रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर पंडित प्रेम कुमार मलिक से राग बागेश्वरी में धमाल गायन, और अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर प्रेम जैन से राग मधुमाद सारंग में गिटार वादन हम आपको सुनवाएंगे।

सफर सुनिएगा रात 8:30 पर। सागरिका घोष के गीत और भजन प्रसारित किए जाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर डॉक्टर अंशु सिंह की वार्ता सुनिएगा कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम।

प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी शाम 6:50 पर, पंचायत घर प्रसारित होगा शाम 6:30 पर। इसमें मोहनलाल जैसल और साथियों के विकास गीत के अलावा आदित्य पांडे की वार्ता ग्रामीण जीवन में वनों की सह अस्तित्व हम आपको सुनाएंगे। कृपया इसको एक बार फिर सुन लें। पंचायत घर प्रसारित होगा शाम 6:30 पर। इसमें मोहनलाल जैसल से विकास गीत और आदित्य पांडे की वार्ता ग्रामीण जीवन में वनों का सह अस्तित्व हम आपको सुनाएंगे। युवाणी शाम 5:15 पर प्रसारित किया जाएगा।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग दोपहर 2:30 पर हम प्रसारित करेंगे। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम पनघट 1:15 पर, इसमें अजय मिश्रा से मोहन धनराज की बातचीत सुनिएगा, मानसिक अवसाद से कैसे बचें। इसके अलावा रंजना त्रिपाठी के गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा इसी कार्यक्रम में।

श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश 12:30 पर प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं प्रेम जैन से राग मधुमाद सारंग में गिटार वादन।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रेम जैन से राग मधुमात सारंग में गिटार वादन आपके साथ तबले पर संगत की अनूप बनर्जी ने। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है श्रोताओं की फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हैलो फरमाइश। प्रस्तुति मधु कुमार की है।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। और ये कार्यक्रम आप मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: सुरेंद्र यादव, बांका जलालपुर।
0: हाँ जी सुरेंद्र जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कुर्बान फिल्म का जी, तू जब जब मुझको पुकारे।
0: तो आपकी पसंद का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: इस दुनिया में अगर रेडियो ना होता तो चैन सुकून किस अदाओं से खोता। राजेंद्र कुमार नाम है मेरा, पर प्यार से लोग मुझे कहते हैं विविध भारती के श्रोता।
0: जी, विविध भारती के श्रोता राजेंद्र जी हमारे साथ हैं कॉल पर। तो कौन सा गाना चुना है?
1: गोतनी कुंडा प्रतापगढ़ से हूँ।
0: जी जी
1: फिल्म का नाम है वारिस।
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम।
0: वाह भाई वाह, गाना तो बहुत सुंदर आपने
1: तेरे नाम
0: चुना।
1: से शुरू तेरे नाम से खत्म।
0: बहुत सुंदर गाना है राजेंद्र जी, और आपने वारिस फिल्म
1: जी
0: के इस गाने की फरमाइश की है। किसी का नाम तो नहीं लेना चाहते?
1: हाँ मैम, श्रोता मित्रों का नाम लेना चाहते
0: जी
1: हैं।
0: जी कौन श्रोता मित्र हैं
1: हमारे? तो पहले श्रोता मित्र, आज हम नाम लेंगे प्रेमचंद यादव जी का।
0: अच्छा जी
1: जी और शारदा प्रसाद प्रजापति, प्रभाकर तिवारी, विकास, नितेश आर्या जी, ऐसे ऐसे बहुत से श्रोता मित्र हैं। जितने भी सुनने वाले हैं सभी को डेडिकेट है ये गीत हमारी तरफ से।
0: तो आपको सुनवाते हैं वारिस फिल्म का ये गाना।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और मैं हूं मधु। आपके गीतों के साथ अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट अंडिया, तहसील अंडिया, थाना अंडिया, गांव मुगराव, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। मैम नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: मैम फिल्म का नाम है एक अनोखी रात
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले ना फूल तो कांटों से

0: हेलो
1: बहुत
0: मैम,
1: बढ़िया। हाँ जी बोलिए।
0: ये गाना समर्पित है शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा से और गुतनी कुंडा प्रतापगढ़ से राजेंद्र कुमार जी को।
1: अच्छा जी, तो भाई राजेंद्र कुमार जी और शारदा प्रसाद प्रजापति जी यदि ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो प्रेमचंद जी ने उनके लिए ये गाना भेजा है, ठीक है ना?
0: बिल्कुल मैम,
1: ये आप भी सुन लीजिए, उनकी तरफ से आप लोगों के

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं नमस्ते काजल बोल रही हूँ मैम।
0: हाँ जी काजल जी, कैसी
1: प्रयागराज
0: हैं?
1: से।
0: कैसी हैं
1: ठीक
0: आप?
1: है मैम।
0: हाँ बताइए, कौन सा गाना सुनेंगी?
1: किस मूवी का मैम?
0: गाने के बोल याद हैं?
1: हाँ मैम, जाने मेरे दिल को क्या हो गए।
0: अच्छा, ये अलका याग्निक की आवाज़ में गाना है।
1: ठीक है
0: ठीक है, तो काजल जी सुनवाएं आपकी पसंद का गाना।
1: हाँ मैम,

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैडम, मैं संगम
0: जी।
1: बिहार झवरिया घोसी से महेंद्रनाथ कुशवाहा बात कर रहा
0: जी
1: हूँ।
0: महेंद्र जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जहर फिल्म का जो है प्रिया प्रसाद की आवाज में,
0: जी
1: अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे जमाने भर।
0: हाँ, बड़ा हिट गाना रहा है अपने समय का।
1: हाँ मैडम, अपने समय बहुत
0: अच्छा,
1: बढ़िया गाना
0: तो
1: था जो है।
0: जी जी किसी के नाम तो नहीं
1: हाँ
0: लेने
1: मैडम,
0: आपने?
1: हाँ मैडम लेना है मैडम, शुभम कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, दीपिका कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा।
0: तो सुनिए जहर फिल्म का।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की थी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे। इसके बाद इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी हमारे लखनऊ केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। सरकार ने बिना किसी शुल्क के आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। आयातकों को कच्ची चीनी की खरीद की तारीख से अधिकतम 2 महीने के भीतर इसे सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान AI-1121 अहमदाबाद से रवाना होगी। ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर का आवास भी शामिल है। आकाशवाणी FM गोल्ड की आज 25वीं वर्षगांठ है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम सुविख्यात है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 137 अंक बढ़कर 77,094 पर, जबकि निफ्टी मामूली रूप से बढ़त लेकर

0: सुनेंगे इलाकाई खबरें, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। भारत की जीडीपी ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% की तरक्की दर्ज की है। ये शरह नमू गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 6.9% थी। आलमी इक्तसादी चैलेंजों के बावजूद भारतीय मईशत की शरह नमू मजबूत है। वजारत के सेक्रेटरी सौरभ गर्ग ने कहा कि तमाम शोबों में तरक्की इंतहाई मस्बत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जीडीपी की तरक्की को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत मुसलसल नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है और एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता भारत की तरफ एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत ने 1,27,000 करोड़ की लागत के साथ सेमिकॉन स्कीम के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में कहा कि भारत में तरक्की पजीर सेमीकंडक्टर माहौलियाती निज़ाम से भी बराह रास्त रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कल बहराइच में नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेल सेक्शन का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने इस सेक्शन पर नेपालगंज रोड से वाराणसी शहर तक जाने वाली खसूसी ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रेल सेक्शन और ट्रेनों के ज़रिए फराहम करदा राबता न सिर्फ रियासत के सरहदी इलाकों की सलामती और सहूलत के लिए बल्कि पूरे खित्ते की खुशहाली के लिए भी अहम है।
2: ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा।
1: तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने नेपाल के सानेहे में अपनी जानें गंवाने वालों को खिराज अकीदत पेश की। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नए रेल सेक्शन के खुलने से मुसाफिरों की नकलो हरकत में आसानी होगी और इलाकाई रेल रबते और तरक्की को फ़रोग मिलेगा। जनाब वैष्णव ने कहा कि गेज तब्दीली से नानपारा, मटेरा, रिसिया, बहराइच, बभनान और नेपालगंज बड़े रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक हो जाएंगे। उन्होंने नेपाल में कुदरती आफत से मुतासर ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया।
3: भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे भी इस प्रयास में जुड़ा है। रेलवे के जो बॉर्डर के जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर और एनएफआर के कुछ हिस्से, उन सब के साथ मैं लगातार संपर्क में हूं और रेलवे के अधिकारी जिले के अधिकारियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ और एमईए के कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रहे हैं। जहां पर भी रेस्क्यू होकर यात्री पहुंचे उन सबके लिए स्पेशल कोच लगा के व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का भी रेलवे ने लगातार प्रयास किया है।
1: कौशाम्बी में पुरा मुफ्ती थाना इलाके के तहत मोहम्मदपुर गांव में कल एक पटाखे की फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाके में 11 अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 20 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, फजाइया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तकरीबन 200 अहलकार राहत और बचाव कामों में मसरूफ़ हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमित पाल ने बताया कि ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस अलमनाक वाक़े पर गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी महलूकीन को 2-2 लाख रुपए और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। रियासत में जारी बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से 17 अजला में 1,70,000 से ज़्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। वाराणसी में गंगा नदी की आबी सतह मुसलसल बढ़ रही है जिसकी वजह से गंगा नदी के किनारे कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। ACP दशाश्वमेध घाट अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि इंतजामिया ने सैलाब से मुतालिक इमदादी चौकियाँ कायम की हैं और ड्रोन के जरिए सूरत हाल

0: की निगरानी की जा रही है। इस दरमियान चित्रकूट के रामघाट पर मंदाकिनी नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। यमुना नदी की आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे राजापुर और मऊ के दर्जनों देहात सैलाब के खतरे से दो चार हैं। महकमे मौसमियात ने आज रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। नतीजतन जिला इंतजामिया ने जौनपुर और चंदौली में आठवीं जमात तक के स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 212.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर 1:15 में हैं और ये समय है ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम पनघट का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पनघट।

0: कमला, अरे ए कमला, हम कहा तो से राम राम।
1: राम राम जमुना बहनी, राम राम, और पनघट सुने वाली सब
0: सखियन के
1: राम राम।
0: और बतावा कमला, बहुत ध्यान के बाद तुहार दर्शन भाव बहनी, तू तो गुलरी के फूल हो गए रहो। कहाँ चली गई रहो?
1: अरे बहनी तनी जीव ठीक ना आए रहा, नहीं अच्छा, अच्छा, ना ही पावत रहा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: मतलब बहनी हरन के ख्याल है, सतावत है, सतावत है कि का बताए,
0: पन घाटे पे भाग के आवे के पड़बे करत है ना।
1: हाँ बहनी, देखा अपन सबन के जौन है दोन दिनचर्या है तो सब के है ये बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बस इतनी इतनी बात यह है बहनी की, देखा बरसात के मौसम है तो हर मौसम के हिसाब से हमका सबन के घर में व्यवस्था करे के पड़ा था, है कि नहीं?
0: व्यवस्था करे के पड़ा था कमला। और दूसरे देखा यहाँ समय, देखा भगवान ऐसा जौन बाटे प्रसन्न हो गया है कि दिन रात पानी बरसावत है, रच्चो निकलता ही नहीं है।
1: हाँ बहनी है
0: बात, देखा हम सब बतियावत है बाहरे पानी बरसता
1: है तो कहा था ही। देखा यही, लेकिन एक देखा एक चीज यह है,
0: हाँ हाँ,
1: फायदा तो बड़ा बढ़िया है।
0: हाँ
1: कि चला खेती बाड़ी के बारे में
0: बहुत बहुत
1: नहीं कहा है, बोला जान ल कि ध्यानो बहुत रखे पड़ा था, काहे से बरसात के मौसम में जानबे करा तू।
0: अरे बहनी पूछे जी, बरसात के मौसम में जब बहरे मने जानवरन के बिलन में पानी जात है तो भाग भाग के बहनी घरे के भीतर आवत है। और यहाँ समय देखा कमला कि ए बहुत एहतियात बरते के जरूरत है। अरे तू सुने रहो, उनकर जौन केवला चाची हैं वो जौन बा ऊपर ही निकालत रहें। हाँ, और जौन ना तो वो अनियार रहा, वो टार्च वर्च लेके गए ना ही रहे और उनके हाथे मार दे बिच्छी।
1: देखा बतावा देखा, लेकिन हाँ, सुने रहे हम हाऊ बहनी,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: उनके पतो उनका बतावत रही मुला जान थू।
0: हाँ,
1: ये बहुत दिन पहले, मतलब हमें हमको लगा था 4-5 दिन पहले की बात यार।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
1: लेकिन उन्हों के बात माने के पाई।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: कि देखा उनके पतो बतावत रही है कि वो बिल्कुल घबरानी नहीं, समझू चुप्पे घरे में आई, केहू बताओ ना बहन, कहीं ना बताओ तो सब शोर मचावे लगी है। चुप्पे बैठ के अपने लड़का के कहीं अपने बहुत कहीं लड़का का फोन कही दा है ना, ओका बुलावा जल्दी से, हमके काम बा, बहुत जरूरी काम बाटे।
0: अच्छा,
1: ओकरे बाद तब से लई के भैया साबुन खूब बढ़िया से हाथ हो तो अपन
0: धोए लगे
1: पानी से धोइन बढ़िया से साबुन से। ओकरे बाद ओके बर्फ लेके जब जब तक उनके लड़का ना ही आओ
0: तब से रगड़त रहे
1: हैं है ना। जब लड़का आएगा वा तब का उनका तब बताई ना तो हड़कंप मचा घरे में, कहीं ना चिल्लाजिन पहले अस्पताल लई चला।
0: हां लई के चला,
1: हां जान लई है, घबराए जातीन हड़बड़ाए जातीन तो काम बिगड़ जाता है,
0: काम बिगड़ जाता
1: है ना।
0: देखा कमला कि आदमी की जैसे ऐसे कोनो भी बात आ जाता है तो घबराए के ना चाहे, जैसे कोलो चाची नहीं घबराए,
1: बिल्कुल एकदम शांति से काम करे चाहिए। देखा समस्या तो जीवन के हिस्सा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बिना समस्या के समाधान
0: नहीं बा,
1: जीवन जीवन भी नहीं चलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जैसे कहा थी ना कि सोच के तरीका है कि अगर समस्या आवे तो सबसे पहले के पे सोचे के चाहिए समाधान
0: पे,
1: दिमाग के शांत रखे,
0: हाँ, शांत रखे के चाहे और घबराए के न चाहे। तो जब देखा ये सब हम सब ये सब बात करते ही है तो सोचत रहे कि कन्या आज अपने बहनी हरन से यही विषय पे बात कही कह लिया जाए कि जब भी मुश्किल घड़ी आवे तो कभी घबराए के न चाहे।

0: सही बात करो, हमरे मुंह एक बात छीन ली हो तुझे।
1: तो देखा कमला, जीवन का माने दूसरा नाम ही संघर्ष है, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और हर इंसान के जीवन में ऐसे पल जरूर आवत हैं कमला, कि जब परिस्थितियां कठिन लगे लगत हैं और रास्ते बंद दिखाई पड़े लगत हैं। कभी आर्थिक परेशानी हो जाता है, कभी रिश्तों में उलझन हो जाता है, भाई तू परिवार में हो जनता ही हो, और कभी असफलता तो कभी अपने ही लोगों के साथ जौन बा कब मैंने लोगों का जब साथ छूट जाता है, तो ये सब भी मुश्किल हमारे भीतर से हमके जौन बा कमजोर करे के कोशिश करे थी।
0: बिल्कुल, कबो बीमारी उमारी हो जाए,
1: बिल्कुल,
0: कुछ हो जाए।
1: हाँ, मूल याद रहे कमला कि मुश्किल हमें रोके के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनावे के लिए आवत है।
0: बिल्कुल बहनी, यही सोच के साथ आगे बढ़े के चाहिए। मुला जीवन में देखा कठिन समय आवे तो घबराए के हार मान ले तो बहुत आसान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना? उससे आसान रास्ता तो कोनो आए नहीं कि अब हम का करी कैसे हो, ही रोवे बैठ जाए। मुला बहनी देखा ओकरे सामना कर भी असली जीत है।
1: हाँ, हाँ।
0: कहे जे कि जौन तरीका से अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता बहनी, वही तरीका से कठिन समय के बाद अच्छे दिन आवे करत है। केहू रोक नहीं
1: सकते,
0: है ना? जरूरत केवल इतना है कि हम अपन धैर्य बनाए रखी, मन का शांत रखी, सही रास्ता पर चली और उम्मीद के दामन कहूं न छोड़ी।
1: बिल्कुल बिल्कुल कमला। और देखा अक्सर हम समस्या के देख के सोचे लगी थे कि ये परेशानी कबहू खत्म होई कि ना होई, लेकिन जब कभी भी एक जैसन समय जौन बटे नहीं रहत, आज जौन परिस्थिति बहुत बड़ी लगत बना, तो वो हो सकत है कि कुछ समय के बाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाए। इसलिए मुश्किलों में खुद से जौन बा कभी भी घबराए के ना चाहे।
0: हाँ जमुना, सही बात कहो। सफलता और असफलता तो जीवन के हिस्सा है। असफलता के भी आपन महत्व है जीवन।
1: बिल्कुल
0: में।
1: बिल्कुल बहनी,
0: कहे से कि कभो भी देखा कोनो असफलता ऐसी ना ही कुछ सिखावत नहीं। हमेशा हमें कोनो कमी रह जाता तब हमें नहीं असफल
1: बिल्कुल,
0: होता ना।
1: बिल्कुल।
0: तो ओके अर्थ ही नहीं ना कि हम कमजोर रहे।
1: हाँ, हाँ।
0: ओके अर्थ ये है कि हमका अभी और प्रयास करे क्या है और अपन प्रयास करे के तरीका बदले के है।
1: जी जी जी,
0: है ना? मुश्किल समय में हमें नकारात्मक सोच से दूर रहे के चाहिए। ऐसे लोगन के साथ रहे के चाहिए जो हमका हिम्मत दें,
1: अच्छा,
0: हमार कमियां बतावें, मुला मन न तोड़े। है ना? कि छोटी छोटी कहे से कि देखा छोटी छोटी उपलब्धियन के भी अपन महत्व।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जैसे मनाई छोटी छोटी खुशियन का महत्व होता जीवन में वही तरीका से। कहे से कि बड़ी सफलता जो मिला था ना,
1: हाँ,
0: वो छोटे छोटे कदम चले से ही मिला थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल कमला। और हमें यह भी समझे के चाहे कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलत, कुछ समस्याओं के समय मन चाहत होता है, कुछ के मेहनत और कुछ के धैर्य। इसलिए जब जल्दबाजी में कोनो गलत फैसला लेवे के बजाय शांत मन से परिस्थिति का सामना करे के चाहे और एक एक कदम आगे बढ़े के चाहे।
0: बिल्कुल जमुना, देखा कहा थे कि पत्थर पे लगातार पानी के बूंद भी पड़ा था ना
1: तो निशान
0: बनाए देता। वही तरीका लगातार कीन गवा प्रयास एक दिन सफलता का रास्ता जरूर खोला था। यही लिए चाहे रास्ता कितना भी कठिन काहे न हो, कदम रुके के न चाहिए।
1: बिल्कुल। और देखा खुद पर विश्वास रखे के चाहे, काहे से कि जीत वही के होत है जे मुश्किलों के सामने झुकते नहीं डट कर सामना करत है।
0: एक दोहा में कमी नहीं रखते,
1: नहीं रखते। एक दोहा भी बाटे जॉन कि कहो ना कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान
0: रसरियावत जात थी सिर पर परत निशान।
1: तो प्रयास अगर आदमी प्रयास करत रहे और सफलता जौन बा जरूर मिले और कभी भी मुश्किल से घबराए के ना चाहे। तो देखा
0: जैसे हम तो उसे प्रयास करते हैं कि बहनी एक ठीक नीक के हमका गौ नहीं सुनाए दे।
1: अरे बहनी नेकी
0: इशारा करते हैं कि बहनी एक ठीक नीक के गौ नहीं सुनाए दे तू हमका।
1: अरे तो चला संगीता राय बहनी से तोह के हम जौन भाई कहरवा सुनवावत है तुहू सुना, हमारा बहनी हरन भी सुने।

0: कमला
1: हाँ
0: गौ नहीं कितनी अच्छी रही ना,
1: एकदम झूमे के हुई गवा ना।
0: अब तू झूमता तो रहो तू, हम देखा बड़े देखत रहे कि गाना बजाता हो हमार कमला बहनी कैसन जो में अपन हाथ गोड़ चलावत है।
1: अपन घटे पर ढोल मजीरा बजे
0: और मने झूमे ना ऐसा कैसन हो सका,
1: कैसे हो सका था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब देखा अपने अपन घटे पे एक ठे बातचीत है बहनी।
0: हाँ का बहनी
1: की मानसिक अवसाद से कैसे बचे।
0: हाँ हाँ।
1: और बातचीत करने के बदे डॉक्टर अजय मिश्रा आए हैं, उनसे बात करे हैं
0: मोहन
1: धनराज।
0: हाँ, तो चला,
1: तो चला सुन ली जाए, हम सुनिए तुम सुना बहनी भरे सुने।
0: बिल्कुल।
2: मानसिक अवसाद से कैसे बचें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मानसिक रोग और मानसिक अवसाद एक बीमारी है जो बढ़ रही है, जिस पर कि हमारी सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं, चिंता कर रही हैं कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने
0: हमें नहीं सुनाई
2: अजय कुमार मिश्र जी को आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है।
0: हाँ, आप मनोचिकित्सक
2: परामर्शदाता हैं मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय यानी कॉल्विन हॉस्पिटल इलाहाबाद प्रयागराज में। डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। यह जो मानसिक अवसाद है होता कैसे है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है?
3: सर हम अवसाद के बारे में अगर बात करें तो हम पहले अवसाद क्या होता है उसके बारे में बताना चाहते हैं। अवसाद एक कॉमन, आज की डेट में देखा जाए तो बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। टोटल पॉपुलेशन में देखा जाए तो हर घर में कोई ना कोई अवसाद से पीड़ित आपको मिल जाएगा। अगर अवसाद के बारे में देखा जाए तो एक कॉमन एक गंभीर परेशानी है जो व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता, मन मिजाज और व्यवहार को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। ये मन मिजाज में उदासी, अकेलापन, निराशा, नाकाबिलियत की सोच और बेबसी के विचारों से ग्रसित करता है। तो अभी ये तो मतलब अवसाद हो गया। और अवसाद जो ज्यादा पाया जाता है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। इसके कुछ लक्षण के बारे में, लक्षण जो होते हैं मन मिजाज में उदासी, रोजमर्रा के कार्यों में अरुचि, बिल्कुल रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं उसमें कोई रुचि न लेना, ऊर्जा में कमी, शरीर में पूरे का पूरा एक तरीके से कहते हैं कि हमारी शरीर कमजोर हो गया है तो डॉक्टर के पास जाके मरीज ये बोलता है, स्वस्थ होता है उसका हीमोग्लोबिन भी अच्छा होता है, शुगर नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं होता, बट मरीज ये बोलता है कि डॉक्टर साहब हम पूरे दिन उदास रहते हैं और हमारा शरीर पूरा थका थका सा लगता है, वजन भी अच्छा है उसके बावजूद भी बोलता है थका थका सा लगता है। तो शरीर में एक ऊर्जा की कमी हो जाती है, वह हमेशा थकावट सा लगता है और अवधान में गिरावट हो जाती है, कमी आ जाती है, किसी भी चीज में कोई ध्यान नहीं दे पाता है और आत्मविश्वास बिल्कुल का बिल्कुल कम हो जाता है, दोष की भावनाएं आ जाती है, दोष की भावनाएं आ जाती है, नींद व भूख में असामान्य परिवर्तन देखा जाता है। ये अवसाद के लक्षणों के अनुसार इसको जो देखा जाता है वो सीवियरिटी के रेंज में देखा जाता है। सीवियरिटी होता है, माइल्ड अवसाद होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। अगर ये सीवियर अवसाद है तो उसमें मनुष्य जो है आत्महत्या की बातें करने लगता है और या तो फिर वो सुसाइड, अपने आप को सुसाइड की कोशिश करता है, सुसाइड कर लेता है। तो वो गंभीर मानसिक सीवियरिटी रेंज में इसको देखा जाता है। ये सामान्य लक्षण है अवसाद के।
2: तो डॉक्टर साहब इसका कारण होगा?
3: हाँ, इसके कारण होते हैं, एक तो रासायनिक कारण होते हैं।
2: हाँ।
3: दिमाग में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे सारे काम को करने में सहायता करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर होता है जैसे हम सोचते हैं, समझते हैं, खान पान क्या खाते हैं तो ठंडा गर्म बाकी सारी चीज़ें होती हैं, या हम हंसते हैं या टीवी में देखते हैं कोई भी ऐसी हंसने वाली चीज़ें तो वो हमको ये बताता है कि नहीं इसमें रोना चाहिए, इसमें हंसना चाहिए, इसमें दुखी होना चाहिए। तो वो सारे कार्य हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होते हैं। तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो उसकी कमी शरीर के अपने दिमाग के अंदर आ जाती है जिसकी वजह से डिप्रेशन हावी हो जाता है, अवसाद हो जाता है। और दूसरा कारण क्या होता है कि तनावपूर्ण कंडीशन होती है। हाँ। जैसे लाइफ में तनाव हो जाता है, अगर देखा जाए तो ऑफिसेस में जूनियर्स को तनाव हो जाता है ज़्यादा काम होने की वजह से, या देखा जाए तो किसी के घर में किसी की मृत्यु हो, जो बहुत ही क्लोज है उसका मृत्यु हो जाता है, या किसी का बिजनेस में लॉस हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं तनावपूर्ण स्थिति। अगर तनावपूर्ण स्थिति 14 जो हमारी एक क्राइटेरिया होती है, साइकेट्रिक एसोसिएशन की एक क्राइटेरिया बनी है।

0: उसमें ये है कि 11 सिम्टम्स में से 5 सिम्टम्स जो है लक्षण शरीर होने चाहिए। अगर इसमें से आपके 5 हैं और 14 दिन से ज़्यादा हैं तो उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, अवसाद की कैटेगरी में रखते हैं। और तीसरा कारण आनुवंशिक हो सकता है, जैसे घर में किसी उनके माताजी पिताजी नाना जो भी ब्लड रिलेशन है, किसी को भी डिप्रेशन की बीमारी है तो ये बच्चों में आने की संभावना होती है अगर वो तनाव ज़्यादा लेते हैं।
1: बंद नहीं कर रहे हैं
2: डॉक्टर साहब, जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है, जो बड़े कारण है जैसा कि आपने कहा कि किसी की मृत्यु हो जाए, व्यवसाय में नुकसान हो जाए, ये सब तो बड़े कारण हैं
0: जी।
2: लेकिन जो छोटे छोटे कारण होते हैं, जैसे बातों बातों में किसी से बहस हो गई, माता पिता के बीच में तनाव हो गया, बेटे से पिताजी से कोई कहासुनी हो गई, तो क्या ये कारण भी, अगर इस तरह की परिस्थितियां लगातार बनी रहें तो क्या ये भी कारण होते हैं?
0: बिल्कुल सर, ये सब कारण होते हैं। एक्चुअली होता क्या है सर कि पहले का जो वातावरण था, जैसे हम क्या करते थे कि पिताजी की बातों को सुनते थे, माताजी की बातों को सुनते थे, उनको रेस्पेक्ट देते थे, बट आज की डेट में उसका उल्टा हो गया है। लोग काम के पीछे भागने लगे हैं, छोटी छोटी चीज़ों का तनाव लेने लगे हैं, उनको हर किसी से आगे बढ़ने की होड़ हो गई है। अगर उनका पड़ोसी ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो उनको ये लगता है कि हमको भी ज़्यादा पैसे कमाना है, उससे बड़ा बनना है। तो जो बड़ा बनने की चाह है वो इतना ज्यादा प्रभावित अपने दिमाग को और उसके शरीर में इतना प्रभावित कर देती है कि वो आगे जाके अवसाद की स्थिति पैदा कर देती है। और पहले लोग कसरत व्यायाम वगैरह भी किया करते थे, जो कि आज की डेट में सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। हर चीज़ घर के अंदर ही करना चाहते हैं। 12 बजे तक काम किया, 1 बजे आके खाना वाना खाया, 2-2.5 बजे तक बिस्तर पे लेटे, लेटते ही अपने मोबाइल को ऑन कर दिया, 2-2.5 बजे तक चैटिंग वैटिंग करती रहे, सोने में सिर्फ 3 या 4 घंटा सो पाए, सुबह 6 बजे उठ के फिर ऑफिस को चले गए। तो ये सबसे बड़ा कारण आज की डेट में तनाव पैदा करने का और अवसाद में लाने का है।
2: और डॉक्टर साहब, अगर ये देखा जाए कि पहले के ज़माने में, अब से कुछ 10-20 साल पहले की बात करें
0: जी,
2: जब एक तो तकनीकी बहुत अधिक नहीं थी और जब हमारे हाथ में मोबाइल और टेलीविज़न चैनल नहीं थे
0: जी,
2: तो बहुत सारा काम हमको अपने हाथ से करना पड़ता था, बहुत सारा काम करने के लिए हमको चल के जाना पड़ता था, तो मेहनत करनी पड़ती थी, साइकिल चलाते थे। घर में जो अगर किसान है, जैसा कि हम ग्रामीण बहनों के लिए अगर बात कर रहे हैं, तो जो किसानी का काम था उसको हंसिया से खेत की कटाई की जाती थी, फिर उसको बैलों से मड़ाई की जाती थी, तो इसमें महीनों लगता था, लोग व्यस्त रहते थे। और आज ये हो गया है कि हार्वेस्टर से कटाई कर दिया, थ्रेशर से मड़ाई कर दिया और पंखा चला करके ओसाई कर दिया, तो गल्ला भी साफ हो गया और ट्रैक्टर पर लाद करके ले आए थे, कुल मिला करके 15 दिन में पूरा सारा काम संपन्न हो जाता है। तो आदमी खाली रहता है। तो जब खाली रहता है तो अपना दिमाग बहुत जगहों पर चलाता रहता है, तो ये स्थिति कहाँ तक जिम्मेदार है?
0: सब ये जो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत बहुत सही है। पहले आदमी जितना अपने आप को व्यस्त रखता है, उसके दिमाग में उल जुलूल की बातें और फिजूल की बातें नहीं आती हैं। जब आदमी अपने आप को व्यस्त रखेगा, ये सारी चीजें नहीं आएंगी, तनाव बनेगा नहीं, अवसाद में लोगों के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट जब आदमी खाली होगा तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, अगर देखा जाए तो मोबाइल या फिर टेलीविज़न, ये सब की ज़रूरत है, बट हम उसकी अधिकता से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम दिन भर बिस्तर पे बैठे रहते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर हमको छोटे काम के लिए भी बाहर जाना पड़ता है तो हम पैदल ना जाके मोटरसाइकिल या कार से जाना पसंद करते हैं। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है तनाव होगा। और तनाव को कम करने के लिए दवाइयों से ज़्यादा अगर मैं देखता हूँ तो सबसे बेस्ट होता है फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप जितना एक्सरसाइज करेंगे वो आपके तनाव को उतना कम करेगा, शरीर थका होगा, अच्छी नींद आएगी, अच्छा सोच रखेंगे और आप अपने कार्यों को अच्छा कर पाएंगे।
2: और इसमें एक चीज़ ये भी मदद कर सकती है कि आप अगर थोड़ा सा टेलीविज़न से दूर रहते हुए और मोबाइल से दूर रहते हुए अपने लिए नए नए काम तलाशें और कोशिश करें कि जो काम पड़े हुए हैं, जो आप नौकर के भरोसे छोड़ते हैं, जो आप मजदूर के भरोसे छोड़ते हैं, तो अगर अपने घर के छोटे छोटे कामों में आप खुद लगें, आप अपनी गाड़ी को खुद धोएं, आप अपने घर को खुद साफ करें, गमले की सफाई करें, क्यारी में निराई करें, गुड़ाई करें, पौधा लगाएं, तो इससे जो आपका समय है वो उसका भी उपयोग होगा, आपका दिमाग भी खाली नहीं रहेगा, शारीरिक हलचल भी होगी, तो इससे आपका शारीरिक व्यायाम भी होता रहेगा। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं वो आदमी को रचनात्मक तरीके से उसके शरीर को और मन को दोनों को दुरुस्त रखती हैं।
0: बिल्कुल सर,
2: तो ये एक अच्छी बात होगी जो

0: जो हमारे सुनने वालों को, अगर वो हमारी बात को इस अर्थ में समझें कि उनको अपने समय को सही उपयोग करते हुए अवसाद या मानसिक तनाव की स्थितियों से बचने की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आजकल ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि आदमी अपने में ही सिमट रहा है।
1: बिल्कुल सर।
0: जैसे देखा जाए कि पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए चले जाते थे, 15 दिन मामा मौसी के यहाँ खेतीबाड़ी का काम करवाते थे।
1: बिल्कुल सर।
0: फिर वो आकर के हमारे घर में हमारे घर का काम करवाते थे।
1: बिल्कुल सर।
0: तो वो हमारे पारिवारिक और जो संबंध थे वो भी बने रहते थे।
1: बिल्कुल सर।
0: और एक दूसरे से मिलते थे, अपना दुख सुख कहते थे, वो चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। तो इनका इनका क्या रोल है ये तनाव दूर रखने में?
1: सर इनका सबसे बड़ा रोल है तनाव दूर रखने में। पहले जब शादियां होती थी तो लोग किसी के घर में जाके चार चार पाँच पाँच दिन तक रहते थे, बेझिझक बिना शर्म के उनके घर में काम करते थे। इवन रिश्तेदार की तो छोड़िए, लोग पड़ोस में भी शादियां पड़ती थी तो लोग वहां जाके शादियों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे। बट अभी सर क्या है, अभी हमने देखा पड़ोस को तो छोड़िए, वो अपने रिश्तेदारों में भी नहीं जाते, उनके घर पे कोई रिश्तेदार आता नहीं, किसी से बातें नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं सर ये सबसे बड़ा एक कारण बन गया है कि लोग अकेले में रह गए हैं। लोगों लोग जब दूसरों से मिलते थे तो उनके विचारों को सुनते थे, उनके बड़े बुजुर्ग उनके अपने विचारों को बताते थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये चीज़ करना चाहिए, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता था। बट आज की डेट में उनको सारी चीज़ें मोबाइल के थ्रू ही दिखने लगी हैं, और प्लस उनके माता पिता, कुछ लोगों के माता पिता के पास भी टाइम नहीं है, वर्किंग है, तो बच्चों को नौकरी को भरोसे छोड़ के चले जाते हैं, और जब बच्चा रोए या जिद करे तो उनको टीवी या मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो ये अवसाद में जाने का सबसे बड़ा कारण हो गया है। पहले दादा दादी होते थे, चाचा चाची होते थे, फूफा मौसी सब होते थे, तो बच्चे को संभालते थे, कुछ पढ़ा देते थे, कुछ उसको अच्छी अच्छी कहानियां भागवत गीता रामायण वगैरह के बारे में बताते थे, तो उसको सारी चीजें पता होती हैं। बट आजकल के बच्चों को अगर रामायण भागवत गीता के बारे में आप पूछेंगे तो उसको कुछ नहीं पता है, या दशहरा क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं। तो आज के बच्चों में इसकी बहुत ही ज्यादा कमी होती जा रही, क्योंकि एक परिवेश, माँ बाप परिवेश तो देना चाहते हैं, बच्चों को सारी सुख सुविधाओं का सामान तो देना चाहते हैं, उसको लाखों का सामान खरीद के बाइक कार सब देंगे, बट उसको जो एक परवरिश करनी चाहिए, जो एक तरीका होता है बताने का, वो सब चीजों से
0: उसके लिए समय नहीं निकालते। ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, और अगर हम गांवों के परिवेश की बात करें तो बहने पहले सुबह से लेकर के दोपहर तक काम करती थी, लेकिन दोपहर में जब उनका खाना पीना हो गया तो 2 घंटा पीपल के पेड़ के नीचे या तालाब के किनारे किसी छाया में बैठ करके और आपस में गपशप करते थे, हंसी मजाक करते थे। और ये जो अभी बारिश का समय चल रहा था, तो अभी तो चल भी रहा है, तो इसमें कजरी गाने की, झूला की बड़ी परंपरा हुआ करती थी, वो चीजें अब खत्म हो गई।
1: बिल्कुल खत्म हो गई।
0: इनका इनका जो सामाजिक रिश्तों को बांध करके रखने में जो इनका रोल है, इस पर कुछ बात बताइए हमको।
1: सामाजिक परिवेश में ये अपने आप को बांध नहीं रख पा रहे हैं, इसका कारण मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन, उनके रिश्तेदार ये सबसे बड़े इसके कारण हो गए हैं।
0: हाँ।
1: जो कि उस पुराने परिवेश के बारे में अपने बच्चों को बताते नहीं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बताएं तो बच्चा करे ना, बच्चों को उन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं, रिश्तेदारों से मिलने नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं वहां तो आपको नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। और आज की डेट में देखा जाए तो बहुत लोग जादू टोना टोटका इस सब के बारे में ज़्यादा मानने लगे हैं। पहले अगर देखिए तो नवरात्रियों में लोग अपनी कन्याओं को खाना खाने के लिए भेज देते थे, बट आज की डेट में नहीं भेजते, क्योंकि उनको लगता है कुछ जादू टोना कर दिया जाएगा, कुछ टोटका कर दिया जाएगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं, कोई जादू टोना टोटका भूत प्रेत जैसी चीजें कोई होती नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा इस बारे में कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, अच्छी चीजें बताएं, भूत प्रेत जादू टोना लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों से दूर रखें, और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बच्चों के ऊपर खर्च करें, सारी चीजें करें, पढ़ाई लिखाई जब तक उनका चल रहा है उनको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल में अपने कार्यों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं कर रहा है, और वहां पे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक बीमारी होती है।
0: हाँ।
1: जिसमें माँ बाप ध्यान अपने बच्चों पे नहीं देते हैं तो एक तरीके से वो एंटी सोशल टाइप का हो जाता है।
0: हाँ।
1: तो अपने बच्चों को देखें, और आजकल बहुत ये बीमारियां बहुत कॉमन होती जा रही हैं, डिप्रेशन हो गया, एंटी सोशल हो गया, तो वो सिर्फ रीजन एक है कि अपने जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं।
0: तो अगर ये जैसा कि आपने इसके लक्षणों में बताया था कि भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना या कम आना, अगर आदमी चिड़चिड़ा हो जाए, इस तरह के लक्षण अगर पाए जाएं
1: जी,
0: तो ये मान लेना चाहिए कि

0: ये व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन की तरफ यानी अवसाद की तरफ बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
1: सर ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब अवसाद ऐसे लोगों को हो रहा है तो अवसाद के रोगियों की पहचान और इलाज जो शुरुआती दौर में होता है वो उनके रिश्तेदार, उनके माता पिता और उनके दोस्त के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि जब मरीज बीमार होता है तो ये सारे डिस्कशन अपने इन तीन लोगों से ही करता है।
2: कमला
3: रहनी
2: देखो, डॉक्टर अजय मिश्रा से मोहन धनराज जी की बातचीत कितनी अच्छी रही ना।
3: हाँ, सबसे बढ़िया चीज़ जो उन कहनी कि सबसे पहला जो बातचीत होता या समझे के वो होता वो परिवार होता,
2: परिवार होता, रिश्तेदार
3: तो
2: होता।
3: हाँ, तो अगर मानसिक बीमारी के या मानसिक समस्या के समस्या मान के ऊपर समय से ध्यान दे दी जाए तो मन ही बहुत आराम से ठीक हो सका था, या कहा कि बीमारी के स्तर तक पहुँचबे न करे है ना। तो ओका जो ना है बड़ी जल्दी और आराम से ठीक की जा सकता
2: था। तो देखा बातचीत तो सुन लिया गा। अब हम सोचे थे तो हाँ एक ठे जोन बाटे फिल्मी गीत सुनाओ थे फिल्म रिश्ते नाते से और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, तो चलो तुम सुनो, हमारा बहनी हरन भी सुना।
3: बिल्कुल।

0: कंगना, क्या बात है
1: हाँ,
0: भाई,
1: कैसा
0: कितना
1: लगा?
0: बढ़िया गाँव नहीं सुना हुआ
1: हाँ, दहाड़ देखा?
0: बाछे
1: बिल्कुल है
0: कहा थी ना
1: हाँ? तो लागत है ना कि जैसे तू गीत गौनाई में एकदम रम जात हूँ, है ना कमला?
0: गीत गाने ही चीज ही नहीं सी है बहनी कि मैंने ही खोए जाता हूँ मैं।
1: बिल्कुल। तो ये बतावा, तो
0: हाँ
1: देखा इतना बढ़िया तो है, हम गीत सुनवाए। तू आज जौन बटे बरसात का मौसम हो हाँ? तो आ तू रसोई घर में काले के आए बटू हमारे बहनी हरन के, वो हमारे बिना खासकर।
0: देखा बहनी, जैसे मौसम है ना वैसे कुछ चटपटा चटपटा चटकारेदार बतावे वाली है ये
1: अरे
0: आज
1: तो
0: है
1: बतावा बहनी, देखा तू बस इतना ही बोलू हमरे मुंह में पानी आएगा।
0: तो आज हम बेनी हरन के बताओ पाव भाजी।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: तो देखा पाव भाजी के लिए सबसे पहले सामग्री देख लें बेनी हरन कि 4 जने के बदे हम बताओ थे इतने बन जाए। तो ये उबले आलू ले लें 3 बड़े है ना, आधी फूल गोभी, बारीक कटे टमाटर 3 ठे है
1: अच्छा।
0: ना, हरी मटर जो ना है पौना
1: हाँ
0: कप,
1: अच्छा।
0: चुकंदर आधा ना, 2 बारीक कटा प्याज, 1 शिमला मिर्च है, 1 चम्मच लहसुन अदरक के पे
1: अच्छा,
0: जो
1: दरदरा
0: पीस के
1: पीस
0: ना।
1: ले। हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: और 2 चम्मच ले पाव भाजी मसाला आवा था बाजारी में,
1: हाँ हाँ
0: 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लें,
1: अच्छा।
0: आधा चम्मच हल्दी,
1: हाँ
0: नमक और हरा धनिया अपने स्वाद के हिसाब से ले
1: हाँ
0: लें,
1: हाँ हाँ
0: नींबू ले लें,
1: अच्छा
0: मक्खन इनमें अच्छे से लागत है तो एक
1: अच्छा
0: कटोरी मक्खन धई लें, जितना
1: अच्छा
0: लगे उतना डाल दें
1: हाँ
0: केवल,
1: हाँ
0: 2 चम्मच तेल ले लें,
1: और उस नमक स्वाद अनुसार।
0: नमक स्वाद अनुसार आवे करे। ओकरे
1: बिल्कुल।
0: अलावा कि जैसे मौसम के हिसाब से एमा सब्जी में जैसे हम खाली फूल गोभी और जो टमाटर और हरी मटर जो नहीं आए हर समय मिल जाती, चुकंदर ओकरे अलावा बीन्स आए, गाजर आए,
1: हाँ,
0: यो डाल सके
1: डाल
0: थे
1: सकी थे।
0: ना।
1: हाँ अब विधि बताओ जल्दी से
0: अब
1: तो।
0: विधि एक ही है कि फूल गोभी मटर और चुकंदर का काट धोए के बढ़िया से काट के कुकर में नमक और पानी थोड़ा सा डालें और 3-4 सीटी लगा लें,
1: अच्छा
0: ओकरे बाद उमें उबला आलू मिलाए के बढ़िया से मीस लें
1: अच्छा अच्छा
0: है
1: खूब
0: ना।
1: ओके।
0: हाँ
1: हाँ ओके,
0: मैं
1: मसल दें खूब।
0: मसाल दें बढ़िया
1: हाँ
0: से,
1: हाँ
0: ओकरे बाद कढ़ाई चढ़ावें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और आधा चम्मच मक्खन डाल दें,
1: अच्छा।
0: ओकरे बाद वहाँ प्याज और प्याज डाल के हल्का से भून लें, जब थोड़ा सा जो ना है पारदर्शी हो लागे प्याज,
1: सुनहरा हो।
0: हाँ
1: हाँ
0: सुनहरा ना हो पारदर्शी हो
1: अच्छा
0: जाए,
1: अच्छा
0: खाली
1: हाँ
0: महक खत्म हो जाए, वही समय लहसुन अदरक डाल दें,
1: अच्छा।
0: लहसुन अदरक डाल के 1 मिनट वो भून लें, काहे से तानी से जो कच्ची माँ क्या है
1: हाँ
0: वो
1: खत्म हो
0: खत्म हो
1: जाए।
0: जाए, ओकरे बाद टमाटर डाल के ओका पकाए लें,
1: हाँ
0: हल्का सा नमक डाल दें, एकदम ध्यान रखें कि नमक जो ना है वो सब्जी में भी डाला गवा बा उबाले के
1: हाँ
0: बदे
1: हाँ तो
0: तो वही
1: मैं
0: हिसाब
1: समझ
0: से
1: के।
0: नमक, हाँ नमक डालें, ओकरे बाद बाकी मसाला डाल दें जो सूखा मसाला है जो लीन गरानी की पाव भाजी मसाला, कश्मीरी लाल
1: हाँ
0: मिर्च,
1: हाँ
0: हल्दी
1: हाँ अभी
0: उल्दी,
1: जो बताऊँगा।
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: ओका कुल लेके बढ़िया से भून लेके आए, तब तक भूने के है जब तक तेल न छोड़ दे
1: छोड़ दे।
0: कढ़ाई में
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ हाँ
0: जब हो जाए तो ओकरे बाद जो हम सब्जी मीस के धरी गई है ओका डाल लें, वही कुकर में आधा गिलास 1 गिलास पानी डाल के खंगाल के वो पनिया वही
1: अच्छा।
0: सब्जी हम डाल के 8 से 10 मिनट तक मध्यम आँच पे खुला पकावें,
1: अच्छा।
0: और बीच बीच में ओका चलावा तो मीसत रहा है जैसे ताकि जैसे बाजार में एकदम महीन दिखा था ना वही तरीका हो जाए, और फिर ओकरे बाद बहनी पाव का बीच से फाड़ लें, या तो पाव ना मिला तो ब्रेड ले सकती थी, वो का मक्खन से सेकें और बढ़िया भाजी के ऊपर मक्खन डाल के पाव भाजी गरम गरम परोसें।
1: क्या बात है, देखा तू तो एकदम से जौन बा इतना चटकारेदार जौन बा बताऊ कि अब तो से का बताई कमला।
0: एक चटकारेदार गाँव नहीं सुनाए दे
1: अरे वाह, तो चलो तुम ओके हम गौने ही सुनावत है।

0: कैसा लगा?
1: जमुना बहनी,
0: अरे
1: आज तो तू दिल खुश कह रही हो,
0: वाह,
1: जैसे
0: सखी है
1: चटपटी
0: तार।
1: पाव भाजी वैसे बढ़िया गाना।
0: बिल्कुल है भाई, सखी है इतना तो सोचे के पड़े ना कमला के बारे में।
1: हाँ, अब तनी हमरे सखी हरन के बारे में भी सोच ले के
0: हाँ
1: आ।
0: हाँ बिल्कुल सोचे के बा, और अपने सखी हरन के हमें एक ही संदेश सुनवावे के बा
1: हाँ,
0: तो
1: ताकि वो
0: तुम।
1: चिट्ठी पत्री जल्दी जल्दी लिख के बताओ
0: हाँ तो
1: कि
0: चलो,
1: उनका कार्यक्रम कैसा लगा
0: कैसा
1: था।
0: लगा था? हाँ तो चलो सुना जाए। पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ई हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आप वो पनघट का हिस्सा बनी है।
2: हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और एमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
3: हमार ईमेल एड्रेस है
1: pangatprogram@gmail.com, स्पेलिंग है PANGATPROGRAM@gmail.com, pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
3: हमार व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2550। तो सखियन, देर कोनी बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात।
1: तो हम सबे इंतजार करत है बहनी, अरे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना।
0: हाँ।
1: और
0: और
1: लेकिन देखा
0: हाँ
1: जमुना बहनी
0: हाँ हाँ
1: कि घड़ी हमका सब इनका इशारा करती
0: तो
1: है।
0: चलो बहनी, से विदा लीन जाए।
1: राम राम बहनी, अरे
0: राम राम बहनी, अरे।

0: ये 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी

0: के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50 हजार करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
2: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ AI समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में FM गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं।

0: साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खास पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले दो दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले दो दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूदा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना इयात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 में और ये समय है NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज एनसीईआरटी के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
3: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने। लिखा है,
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
3: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं,
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है। सादर धन्यवाद।
3: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी जी जी श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकानाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
3: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
2: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
3: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए।
2: जी,
3: वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
2: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
3: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
2: जी,
3: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
2: जी,
3: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
2: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
3: ए लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
2: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
3: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
2: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
3: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
2: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीने उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
3: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
2: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन

0: ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
1: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओं, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
5: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ।

0: हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे,
1: मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
2: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
3: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
5: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
6: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
5: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
6: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
7: Stephen, happy birthday to you!
8: Happy birthday to you, Stephen!
7: Thank you. How are you?
9: Happy birthday, Stephen! Thank you, Thomas.
7: Congratulations!
9: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
7: Oh, fine.
9: Thanks for coming in. Please come in. Please.
8: Oh, sure. Yes. Why not?
7: Come. Yay.
8: Come.
7: John, please come here.
8: Oh, sure. Yay.
9: Join us for a drink, please.
5: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
4: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये

0: विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
2: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
3: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
4: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
5: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़,

FM 100.3 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं और इसी के साथ संपन्न होती हमारी ये सभा। शाम की सभा धरती गीत कार्यक्रम से आरंभ होगी। आज के कलाकार होंगे ओम प्रकाश, दीपक और साथी। इस बीच हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम FM 100.3 MHz पर जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम धरती के गीत। ओम प्रकाश दीपक और साथियों के स्वर में प्रस्तुत है देवी गीत।

0: धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश दीपक और साथियों की आवाज में कहरवा। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। युवा श्रोता सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी।

0: शाम हो गई है और दिल के स्टीरियो पर बजने लगा है एकदम फ्रेश इवनिंग वाइब विथ युवाणी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि शाम होगी थोड़ी म्यूजिकल, थोड़ी मस्ती वाली और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब से भरी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु पांडे
1: और मैं हूं ज्योति आज के इस सफर के साथी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी हमारी, हर उस युवा की जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचता है। आज का शो सिर्फ बातें नहीं करेगा बल्कि आपको महसूस करवाएगा और रुककर सोचने का मौका भी देगा ये आज का शो,
0: और उठकर दौड़ने की ताकत भी, क्योंकि युवा होना सिर्फ उम्र का नाम नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक बेचैनी है, एक सपना है जो चैन से बैठने ही नहीं देता। दोस्तों, आज की ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है ना, सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में, रात को सोने से पहले आखिरी चीज़ भी

0: वही है, नोटिफिकेशंस, मैसेज, रील्स, लाइक्स, कमेंट्स, सब कुछ इतना तेज कि कभी कभी लगता है कि भाई हम कहीं इस इन सब के चक्कर में अपने को तो पीछे नहीं छोड़ दे रहे हैं।
1: बिल्कुल, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर में कितनी ज़्यादा आवाज़ें सुनते हैं, है ना? लेकिन अपने अंदर की आवाज़ कितनी कम सुनते हैं। कभी-कभी हमें बस चुप बैठने की ज़रूरत होती है, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी दिखावे के, बस शांति चाहिए होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने कमरे की खिड़की खोलकर आसमान को देख सकते हैं, कोई पुराने गाने सुन सकते हैं, या आपका कोई जो फेवरेट काम है या आपका जो पैशन है उससे जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, या फिर डायरी में दो लाइन लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को चिल बनाती हैं। और चिल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप और परेशान हो जाए, घबरा जाए या एकदम से लाइट फील होने लगे। चिल का मतलब है कि आपको थोड़ी सी मेंटल पीस मिले, आपका दिमाग शांत हो।
0: दोस्तों, अगर हम जब हम शांति की बात कर ही रहे हैं ज्योति,
1: हाँ
0: तो शांति के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन, रील, लाइक, इन सारी चीज़ों के जंजाल से थोड़ा सा बाहर आएँ, और बाहर आने के बाद हम ये सोच पाएँ कि हमारे समाज में चल क्या रहा है,
1: बिल्कुल,
0: हमारे देश में हो क्या रहा है,
1: हाँ
0: और देश ही क्यों, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी क्या क्या हो रहा है, और हमें क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, इसके लिए भी हमें जागरूक होना चाहिए। और शांति यहाँ से भी आती है।
1: कहाँ से?
0: अगर हमको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो रही है,
1: हाँ
0: समाज, देश, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, तो अगर हमें उन सारी चीज़ों से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो शांति यहाँ से भी आती है।
1: हाँ तो कहने का मतलब ये है कि हमें सारी चीज़ों को लेके अवेयर रहना है
0: हाँ
1: कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है ना, और अपने साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ दूसरी चीज़ें देखते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो उन चीज़ों को देख कर, समझ कर, हम जो भी अपनी लाइफ में आगे करने वाले हैं या कर रहे हैं उनमें कई सारे सुधार कर सकते हैं। या फिर ऐसे हो सकता है ना कि हम टाइम टेबल भी बना सकते हैं कि यार यहाँ पे इन्होंने ऐसे गलती किया तो हमें
0: हाँ
1: ऐसी गलती नहीं करनी है।
0: हाँ और एकदम हमें ये करना है, लेकिन हमें बहुत सीरियस भी नहीं रहना है, क्योंकि हम
1: हाँ
0: युवा हैं, और युवा अगर बहुत सीरियस होता है तो उसे मिलने में, थोड़ा बात करने में बहुत अजीब लगता है कि हम युवा, हम मतलब हमें इतना जोश होना चाहिए और उस स्थिति में हम इतने सीरियस हैं। सीरियसनेस ठीक चीज़ है, पर हमेशा ठीक हो ये ज़रूरी नहीं है,
1: हाँ
0: है ना? क्योंकि थोड़ा सा अगर आप स्कूल के जीवन से बाहर आ गए हैं, कॉलेज की लाइफ में, या फिर कंपटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा अभी ज्योति ने आपको एक बहुत हल्का सा संकेत किया था कि बारिश हो ही रही है हमारे प्रयागराज में,
1: हाँ
0: आप खिड़की के पास बैठ के खिड़की खोल लीजिए। अगर आपके पास कोई रेडियो सेट है, या फ़ोन पर भी हम अगर हमें सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम आज ऐसी प्यारी बातें, ऐसी अच्छी बातें, और बहुत अच्छे अच्छे गीतों के साथ आपसे आज हम वो सब शेयर करने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आज तो काम की बात हुई है, थोड़ी ज़्यादा हुई है। लेकिन दोस्तों, बात ये होती है कि यूथ जो होता है वो लाइफ को लेके बहुत अवेयर होता है, वो जीवन में करना क्या चाहता है, जीवन से सीखना क्या चाहता है, और दूसरों को सिखाना क्या चाहता है, ये उसको बहुत भली भांति पता होता है। और इस पता होने में ही मैंने कहा ना कि आपको बहुत सीरियस नहीं होना है, आपको खिड़की खोल लेनी है, थोड़ा सा आप अपने इतिहास में जाइए, सोचिए कि जब आप पहली बार स्कूल गए होंगे, स्कूल की कैंटीन पर गए होंगे, और टिफ़िन लेके नहीं गए रहे होंगे, वहाँ पर आपने कैंटीन से कुछ खरीदा होगा, खाया होगा, पर उस खाने में बहुत शेयर हो गया होगा, कितने सारे दोस्त रहे होंगे, तो आपने खरीदा होगा अगर 5 रुपए का बिस्किट, तो उसके 5 टुकड़े हुए होंगे और आपको सिर्फ एक टुकड़ा मिला होगा। पर आज अगर हम 100 रुपए की चीज़ खरीद के पूरा खा भी ले रहे हैं, तो भी संतुष्टि नहीं हो रही है, ऐसा
1: हाँ,
0: क्यों?
1: ऐसा इसलिए कह सकते हैं सुधांशु कि आज हमारे पास चीज़ें तो सारी अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा मेंटल पीस है ना वो खो सा गया है। क्योंकि तुम देखोगे कि जब हमारे दोस्त हमारे साथ में होते हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ में होती है, तो हम बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं। कभी भी कुछ भी होता है, दिक्कत होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हमारा दोस्त है ना, वो
0: हाँ
1: मुझे ये वाला टॉपिक समझा देगा, है ना। फिर वहीं अगर फैमिली का रोल देखें तो हम बहुत ज़्यादा हताश फील हो रहे होते हैं, या फिर हम निराशा मिलती है किसी चीज़ में, हम फेल हो जाते हैं, तो हमारी फैमिली हमें मोटिवेट करती है, हमारे फ्रेंड्स भी हमें

0: डिबेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आसपास जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसको ऐसा बना के रखिए कि वो जो लोग हैं वो आपको हमेशा अपलिफ्ट करें, हमेशा मोटिवेट करें, और आपके अंदर भी उनको देख करके कुछ करने की, कुछ सीखने की, नई नई नई चीज़ें आजमाने की जो ये कला है या कह सकते हैं कि हैबिट है, वो आपके अंदर आए।
1: और दोस्तों, अमूमन ऐसा होता है और हम देखते हैं कि हम बहुत सारा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं ये सोचने में कि एक्स वाई जेड नाम का एक व्यक्ति है, वो बहुत काम कर ले रहा है, उसको बहुत सारी सफलताएं मिल जा रही हैं, उसने कई सारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां प्राप्त करी और फिर छोड़ दी, अब नए की तैयारी कर रहा है, और हम एक ऐसे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके भीतर कुछ है ही नहीं। हो सकता है आपके भीतर कुछ और आल्ट हो, आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो हमेशा खुद को ब्लेम करते रहना कि अरे हम तो किसी काम के हैं ही नहीं, हम क्या कर पाएंगे, वो एक्स वाई जेड ने ये कर लिया, वो कर लिया, तो नहीं, परेशान नहीं होना है। मोटिवेशन के लिए हमें कोई रील या कोई वीडियो देखने की क्यों ज़रूरत है, हमें खुद से मोटिवेट होना चाहिए। हम प्रकृति से मोटिवेट क्यों नहीं होते हैं? फूल खिलता है, कुछ दिन बाद मुरझा जाता है, फिर गिर जाता है, पर फिर उसी डाली में फिर से फूल खिलता है। तो ये जो प्रक्रिया है बनने और बिगड़ने की, ये पूरे सृष्टि के, ये सृष्टि का नियम है और सृष्टि के प्रत्येक जीव पर ये चीज़ लागू होती
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: सुधांशु।
1: तो कहने का मतलब ये है कि अगर घड़ी की सुई कभी 12 पे टिकी है, तो इसका मतलब एकदम नहीं है कि वो हमेशा 12 पे ही टिकी रहेगी, वो 3 पे भी आएगी, 6 पे भी आएगी, और फिर रात के 12 भी बजेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ पर आपसे उम्मीद क्या की जा रही है, कैसे हार्ड वर्क की उम्मीद की जा रही है, आप वो करिए। आपका काम ये देखना नहीं है कि घड़ी की सुई कहाँ है, आपका काम ये करना है कि जहाँ आपको छोड़ दिया गया है, आप वहाँ से अपने को कितना उभारते हैं। और उभारने के लिए, अगर आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप अपने को उभारने के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर डिपेंड करेंगे, किसी मोटिवेशनल वीडियो पे डिपेंड करेंगे, किसी सेकेंडरी चीज़ पे अगर आपने अपने को ढाला रखा, तो आप ये जान लीजिए कि आप जीवन के सबसे असफल व्यक्तियों में गिने जाएंगे।
0: पर सुधांशु, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो असफल व्यक्तियों में गिने जाएंगे। तुम्हारी इस बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा, हमें अपना रास्ता हम खुद ही चुन ले। कभी कभी जो हमारे बड़े होते हैं, या फिर हमारे कहते हैं ना, एक मेंटोर होता है हमारे पास, हमारे चाहे बड़े दीदी भैया हो गए, हमारी फैमिली में से कोई हो गया, मम्मी पापा हो गए, हमारे टीचर हो गए, तो वो हमें गाइड करते हैं ना, तो उन्हें भी हम एज अ इंस्पिरेशनल इंस्पिरेशन देखते हैं, है ना? तो हम उनसे सीखते हैं, तो वो हमारे रोल मॉडल भी बन जाते हैं, तो हम अपनी लाइफ को भी चाहते हैं कि हम उनकी तरह बने आगे चलकर। तो कह सकते हैं ना कि
1: हाँ, मतलब
0: फिर हम
1: कहने का दोस्तों सिर्फ इतना सा है, अगर आप अपने खुद से मोटिवेट हो जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। खुद से मोटिवेशन आपको इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको जीवन में हमेशा कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देगा, खड़े आपको अकेले ही होना है, स्थिति कुछ भी रहेगी। तो इसलिए अगर आपको किसी का सहारा मिल रहा है, तो ये नहीं है कि नहीं भैया ठीक है, हम बहुत कैपेबल हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, ये नहीं कहना है। आपको जो मिल रहा है उसको साहस से स्वीकार कीजिए, और नहीं मिल रहा है तो उसको भी साहस से स्वीकार कीजिए, क्योंकि ना चलने से तो अच्छा है कि धीरे धीरे हम चल ही रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम में भी तो चल ही रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, इतनी बड़ी बातें की, और इसके बाद भी
0: तो दोस्तों, हमने इतनी बातें की, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कई बार रास्ते बदलते हैं, सपने बदलते हैं, लोग बदलते हैं, ये सब ठीक है, मतलब बदलाव अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है जिसको आपको कभी भूलना नहीं है और इसको कभी बदलने नहीं देना है, वो है अपने अंदर की उम्मीद, क्योंकि उम्मीद ही वो ताकत है जो गिरने के बाद उठना सिखाती है। आप अभी जिस जगह पर हैं वो आपकी पूरी कहानी नहीं है, ये बस एक चैप्टर है, पूरी किताब तो अभी बाकी है।
1: और हमारे कार्यक्रम की भी पूरी किताब अभी बाकी है।
0: हाँ
1: और सबसे पहले हमारे कार्यक्रम का ये पहला गाना महसूस करिए, और फिर बताइएगा अंत में कि आज आपको हमारा शो कैसा लगा।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी यूथ लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और अपने फ्यूचर को भी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन सुधांशु,
1: हाँ
0: मुझे ऐसा
1: हाँ
0: लगता है इसमें एक चीज़ हमें और ऐड करने की
1: क्या
0: ज़रूरत
1: है
0: है।
1: वो?
0: वो ये है कि अगर हम आज मेहनत करते हैं ना,
1: ठीक
0: अपने
1: है।
0: प्रेजेंट में मेहनत करते हैं, अपनी जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें अगर हम कंसिस्टेंट हैं, तो उसकी वजह से हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो सकता है।
1: बिल्कुल, यानी अगर हम अपना वर्तमान सही करते हैं तो हमारा आने वाला भविष्य अपने आप सही हो जाएगा, यही ना?
0: हाँ, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है सुधांशु, ये जो बात हमने कही है, इससे हम एक बहुत ही अहम टॉपिक जो है ना, वो कनेक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम आपको बता दें आज हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा सोचिए, अगर आपको थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस की जानकारी होगी तो आपको ये पता होगा कि आज से क्या शुरू हो रहा है ना? दोस्तों, हम बात आज करने जा रहे हैं नेत्रदान पर। नेत्रदान यानी कि आई डोनेशन। और हम आपको बता दें इस वर्ष की हमारी जो थीम है वो ये है, डोनेट आई गिफ्ट साइट ट्रांसफॉर्म लाइव्स। यानी ये जो पखवाड़ा है नेत्रदान का, ये शुरू होता है वर्ष 2026 के लिए 25 अगस्त से 8 सितंबर तक। यानी चल रहा है, कहने का मतलब ये है
0: हाँ,
1: कि चल रहा है। और इसीलिए जनरल अवेयरनेस की चीज़ थी कि ये आपको पता है कि नहीं पता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो हमारी ज़िंदगी है में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत हमें तब समझ आती है जब उसके बिना दुनिया को देखना लगभग लगभग क्या मतलब मुश्किल ही हो जाता है। जैसे कि सुबह की पहली सनलाइट, माँ के चेहरे की मुस्कान, बारिश की पहली बूंद और किसी अपने को देखकर चेहरे पर आने वाली खुशी।
0: हम इन सबको देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर किसी इंसान के लिए ये सब सिर्फ इमेजिनेशन हो, अगर उसके लिए दुनिया रंगों की नहीं बल्कि सिर्फ अंधेरे की एक तस्वीर हो, तो शायद दुनिया को देखने का नज़रिया हमारा जो है वो बदल जाएगा।
1: आज की बातचीत थोड़ी अलग है, लग रहा होगा आपको। आज हम किसी सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहे हैं, न किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे आज हम आपसे बात कर रहे हैं। आज बात हो रही है एक ऐसी रोशनी की जो हमारे जाने के बाद भी किसी की ज़िंदगी में रह सकती है। हाँ, आज की बातचीत जुड़ी है नेत्रदान यानी कि आई डोनेशन से। और यकीन मानिए भाई, ये सिर्फ आँखों की बात नहीं है, ये उस पूरी कायनात की बात है। ये उस पूरे मतलब जैसे अगर हम सपना देखें तो ये उस पूरे सपने की बात है जिसको हम आँख खोलने के बाद देख पाते हैं। और आँख खोलने के बाद हम देख भी इसीलिए पाते हैं कि हमारे पास रेटिना होता है, हमारे पास रोशनी होती है।
0: बिल्कुल सुधांशु, अगर हम सबसे पहले एक बेसिक सवाल देखें कि नेत्रदान आखिर होता क्या है, तो इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं
1: हाँ
0: कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आँखों के उपयोगी हिस्से जो होते हैं, मेनली कॉर्नियास को, अगर
1: हाँ
0: हम उसे दान करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम नेत्रदान कह सकते हैं।
1: अच्छा, और यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि नेत्रदान और आँखों का प्रत्यारोपण एक ही चीज़ नहीं है। हम अपनी आँखें किसी दूसरे व्यक्ति को वैसे ही वैसे नहीं दे देते हैं। आमतौर पर डोनेटेड कॉर्निया का यूज ऐसे व्यक्ति की दृष्टि सुधारने के लिए होती है जिसकी कॉर्निया में गंभीर समस्या के कारण विजन प्रभावित होता है।
0: यानी आपके जाने के बाद आपकी आंखों का एक हिस्सा किसी दूसरे इंसान के लिए एक नई रोशनी की शुरुआत बन सकता है। सोचिए, हम अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें दूसरों को देते हैं, कपड़े, किताबें, गिफ्ट्स, पैसे, लेकिन एक ऐसा गिफ्ट भी है जो शायद सबसे प्राइसलेस हो सकता है, किसी को देखने की पॉसिबिलिटीज़ देना।
1: क्या हर व्यक्ति, अच्छा एक बहुत आम सवाल है
0: हाँ
1: जो
0: हाँ
1: कि हमारे मन में आ जाता है कि क्या हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है?

0: हमारे दिमाग में अक्सर आता है ना, क्योंकि हम सब
1: एक
0: देखते
1: जेन्युइन
0: हैं,
1: एक जेन्युइन
0: हाँ,
1: प्रश्न है.
0: क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमें चश्मा लगा होता है, किसी को कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो हमारे मन में सवाल आते हैं कि हम दान कर सकते हैं कि नहीं कर
1: हाँ,
0: सकते.
1: मतलब एक जेन्युइन सवाल है.
0: हाँ
1: तो इसका फैसला ये है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद मेडिकल प्रोफेशनल्स ये मतलब प्रोफेशनल्स तय करते हैं कि नेत्रदान होगा कि नहीं होगा. उम्र या चश्मा पहनना अपने आप में ये तय नहीं करता है कि व्यक्ति डोनर बन सकता है कि नहीं बन सकता है.
0: और एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये भी है सुधांशु,
1: हाँ
0: कि अगर नेत्रदान हम करेंगे तो मेरी आंखें किसी एक व्यक्ति को मिलेंगी. दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है. डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया मेडिकल असेसमेंट और आवश्यकता के अनुसार होती है. इसीलिए इंटरनेट पर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने के बजाय ऑथराइज्ड आई बैंक या मेडिकल प्रोफेशनल से सही इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है.
1: हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं एक बहुत छोटी सी और बहुत दिलचस्प कहानी पर. मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसे कुछ बहुत पसंद है, लेकिन उसने बारिश को कभी देखा ही नहीं है. वो सिर्फ सुनता है बारिश की आवाज़ें, पेड़ों की सरसराहट, लोगों की बातें. पर उसके मन में एक सवाल रहता है कि बारिश दिखती कैसी होगी. अब सोचिए, अगर किसी डोनर की जेनरोसिटी की वजह से उसकी ज़िंदगी में कभी वो दिन आ जाए जब वो आसमान को देख सके, पेड़ों को देख सके, अपने परिवार के चेहरे को देख सके, तो उसके लिए क्या वो सिर्फ विज़न होगा?
0: वो होगा एक नया एक्सपीरियंस, एक नई खुशी, एक नई पॉसिबिलिटी. और यही नेत्रदान की सबसे खूबसूरत बात है. हम शायद उस इंसान को पर्सनली कभी ना जाने, लेकिन हमारा एक डिसीजन उसकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल डिफरेंस ला सकता है. दोस्तों, स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था ना कि हमारी जो यूथ लाइफ है उसको हम अपने प्रेजेंट में अच्छे से काम करके, कंसिस्टेंट रह के अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं. तो इसमें आप इस बात को भी जोड़ सकते हैं कि अगर आज हम एक फैसला ले लें कि जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, तो जो हमारी आँखें हैं उसको हम डोनेट करके जाएंगे, तो इससे ये होगा कि आप भले ही इस दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन जिस व्यक्ति को भी आपकी आँखें मिलेंगी, उसके टिश्यूज़ मिलेंगे, वो आपको ताउम्र याद करेगा.
1: दोस्तों, ये जो आंखें हैं ना,
0: हाँ
1: ये बहुत प्यारी चीजें हो बहुत प्यारी चीज होती है. क्योंकि कहते हैं कि आंखों का पानी सूख जाना भी बहुत, पहली बात तो ये काम बहुत कठिन लेवल पे होता है, बहुत कठिन स्तर पे होता है. और अगर आपकी आंखों का पानी सूख गया तो इसके अगर हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो बहुत सारे अर्थ हैं. पर अगर आपकी आंखों का पानी सूख गया तो ये मान लीजिए कि सूखा धरती पे नहीं है, सूखा आपकी पूरी मानवता में है. क्योंकि आँख का पानी सूखना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. और आँख इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि उस आँख पर हमारे यहाँ के साहित्य ने, देश दुनिया के साहित्य ने कितने शेर कहे हैं, कितनी कहानियाँ कही हैं, कितनी नज़में पढ़ी हैं, है ना. तो आँखों की, जो कभी कभी होता है कि जब हम अपने किसी बहुत चहेते व्यक्ति को देखते हैं तो देखने की शुरुआत कहाँ से होती है?
0: आंखों से.
1: आँखों से होती है. सबसे पहले हम उसकी आँखों में अपनी आँखें डालकर ये देखना चाहते हैं कि वो इंसान जिसको हम चाहते हैं वो हम में क्या चाहता है ना. तो ये चाहने और ना चाहने, ढूंढने और चीज़ों को पा लेने की जो चीज़ है वो शुरू होती है आँख से ही. और अगर आपकी आँख में पानी नहीं है, हया नहीं है, दर्द नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर ठीक है, एक आँख है.
0: तो सुधांशु, तुमने जो बात कही वो फिलोसफिकल वे में और आर्टिस्ट्री वे में बहुत सही बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने दोस्तों को एक गाना तो सुनवा देना चाहिए.
1: हाँ, गाना तो सुनवाएंगे, लेकिन
0: हाँ
1: उससे पहले हमारे पास एक बहुत छोटा संदेश है. पहले आइए वो सुनते हैं.
2: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं.
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से.
4: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें.
5: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से.
6: जिंदगी की रोज की दौड़

0: में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
1: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
0: RBI कहता है जानकार बनिए,
1: सतर्क रहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
3: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: दोस्तों, अगर आप किसी से मिलने जाइएगा और अगर वो आपसे कहे कि मेरी आंखों में झांको कि मैं हम क्या चाहते हैं, और तो फिर आप उसकी आंखों में जरूर झांकिएगा, क्योंकि पूरी कायनात उसकी आंखों में आपको दिखेगा। और शकील बदायूनी का एक बहुत अच्छा शेर है कि बुजदिली होगी चरागों को दिखाना आँखें, बुजदिली होगी चरागों को दिखाना आँखें, अब्र छट जाए तो सूरज से मिलाना आँखें।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे नेत्रदान पर। अब बात करते हैं दोस्तों हम युवाओं की, कि हम यूथ्स हैं, युवा हैं, हम ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, रील्स देखते हैं, नए नए आइडियाज़ डिस्कस करते हैं और सोशल मीडिया पर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं। तो क्यों ना किसी एक ऐसी चीज़

0: बारे में भी बात करें जो रियल में किसी की जिंदगी बदल सकती है। अभी हम बात कर रहे थे ना आई डोनेशन को, आई डोनेशन की, तो इसको लेकर भी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये भी हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
1: अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो उसे करना क्या चाहिए। सबसे पहले किसी ऑथराइज्ड आई बैंक या संबंधित स्वास्थ्य संस्था के पास जाइए, वहाँ आपको डोनर रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस के बारे में सही गाइडेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल रजिस्ट्रेशन कर लेना ही पूरी प्रक्रिया नहीं है, परिवार को भी आपकी इच्छा के बारे में पता होना चाहिए। अब भाई आप पूछेंगे क्यों, तो इसलिए कि आफ्टर डेथ डोनेशन की प्रक्रिया में परिवार की जानकारी और कॉपरेशन बेहद ज़रूरी हो सकते हैं। इसलिए आज अगर आप आई डोनेशन के बारे में सोच रहे हैं ना, तो सिर्फ फॉर्म भरने पर मत जाइए, आप पूरी पहले जानकारी ले लीजिए फिर।
0: दोस्तों हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें टेम्प्ररी होती हैं। हमारी जॉब बदलती है, हमारा शहर बदल सकता है, हमारे दोस्त बदल सकते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ बदल सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जाने के बाद हमारे होने का एहसास छोड़ जाती हैं।
1: किसी की मदद करना उन्हीं में से एक है। नेत्रदान को सिर्फ डोनेशन की तरह मत देखिएगा, इसे एक लेजेंसी ऑफ काइंडनेस की तरह भी देखिएगा। एक ऐसा फैसला है ये जिसके बारे में शायद डोनर को कभी पता नहीं चलेगा कि उसने किसकी जिंदगी को टच किया है, और शायद यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। आप किसी अनजान इंसान के लिए कुछ कर रहे हैं बिना उसका नाम लिए हुए, बिना उससे मिले हुए, बिना किसी रिवॉर्ड की उम्मीद किए हुए। तो मित्रों, आज की बातचीत की शुरुआत हमने एक सवाल से की थी कि दुनिया को देखने की कीमत क्या है।
0: शायद इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है सुधांशु,
1: हाँ,
0: क्योंकि किसी के लिए दुनिया देख पाना किसी लग्जरी से कम नहीं है। नेत्रदान के बारे में सबसे ज़रूरी बात यही है कि सही जानकारी लें, अपने परिवार से बात करें और निर्णय सोच समझ कर लें। किसी भी मेडिकल डोनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमेशा ऑथराइज्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स और रिकग्नाइज्ड आई बैंक पर भरोसा करें।
1: दोस्तों हम ज़िंदगी में बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारे जाने के बाद और किसी की ज़िंदगी में रह जाता है। शायद किसी के लिए एक उम्मीद बनकर, किसी के लिए एक नई शुरुआत बनकर, और शायद रोशनी बनकर।
0: तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम में तो कई सारे टॉपिक्स लेकर आते हैं ना, तो अभी हम आई डोनेशन पर चर्चा कर रहे थे, तो सुधांशु क्यों ना अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाया जाए और पहुंचा जाए अपने अगले सेगमेंट पर।
1: दोस्तों आज हम प्रेरणा पुंज में बात किसकी करेंगे ये आपको सबसे अंत में पता चलेगा, पर हम बात पूरी करेंगे। अदब की दुनिया में जब भी आम आदमी की बेबसी, गुस्से और हौसले को लफ्ज़ों में ढालने की बात आती है, तो एक शेर अनायास ही जहन में गूंज उठता है। कहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
0: बिल्कुल, ये शेर जिस तेवर और तल्खी की नुमाइंदगी करता है, ठीक वैसा ही एक मिजाज था उस शख्स का जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी और कलम को आम इंसान के हक का हथियार बना दिया। आज हम एक ऐसे अजीम फनकार की जिंदगी के सफर पर नजर डालेंगे।
1: आज 1 सितंबर है, थोड़ा कैलेंडर पलटिएगा और इतिहास को भी देखिएगा कि आज 1 सितंबर है तो क्या है। 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव में एक बच्चे की पहली किलकारी गूंजी थी। शुरुआती दौर में उन्होंने परदेशी उपनाम से लिखना शुरू किया, लेकिन आगे चलकर अपने उस तेवर के साथ उभरे जिसने पूरी अदबी दुनिया को हिला कर रख दिया।
0: महज 24 साल की उम्र में 1957 में उनका पहला काव्य संग्रह सामने आया, सूर्य का स्वागत। इसके बाद आवाज़ों के घेरे, उनका चर्चित गीति नाट्य एक कंठ विष पाई, उपन्यास छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और कहानी संग्रह मेरी प्रिय कहानियाँ जैसी कृतियाँ देखने को मिली।
1: और साल 1975 में जब साये में धूप आई तो हिंदी साहित्य को पहला स्थापित गजलकार मिल गया। कमलेश भट्ट कमल ने अपनी किताब हिंदी साहित्य के आधुनिक सूर्य में उनके बारे में क्या खूब लिखा है। उन्होंने भले ही बहुत ज़्यादा गज़लें नहीं लिखी, मात्र

0: 52 गज़लें जो उनके इकलौते गज़ल संग्रह साये के धूप में सामने आई है, लेकिन उसमें एक ऐसी अद्भुत कहन, जन सामान्य से जुड़े सरोकारों के अभिव्यक्ति की एक ऐसी छटपटाहट और ऐसी ताजगी मौजूद है जो पहले लिखी जा चुकी गज़लों से उन्हें बिल्कुल अलग कर देती है।
1: और इसी ताजगी और छटपटाहट से निकली थी वो सदा। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए।
0: आम आवाम की खामोशी और लाचारी पर उनकी कलम ने यूं मार किया। उन्होंने लिखा कि न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। और हुक्मरानों को सीधे चुनौती देते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की और लिखा कि तेरा निज़ाम है सिल दे ज़बान शायर की, तेरा निज़ाम है सिल दे ज़बान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए।
1: उनका व्यक्तित्व बड़ा अलबेला था। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव अपने लेख वो आदमी नहीं मुकम्मल बयां है में कमलेश्वर के साथ उनके रिश्ते का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि ये यारी कितनी पक्की थी कि जब कमलेश्वर अपनी बेटी ममता के विवाह का प्रस्ताव इनके बड़े बेटे आलोक के लिए लेकर गए तो आलोक की माँ राजेश्वरी जी ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उस लेखक ने खुद लिखा था कि अगर कमलेश्वर इस अफसाने में न होते तो ये सिलसिला शायद यहाँ तक ना आ पाता।
0: और उनके बेपरवाह अंदाज का भी क्या कहना। गायत्री कमलेश्वर अपनी किताब कमलेश्वर मेरे हमसफर में लिखती हैं, पर क्या लिखती हैं ये हम आपको बताएंगे पर इस संदेश के बाद।
2: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
4: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों उन्होंने लिखा था कि उन्होंने, मतलब उनका एक वाक्य है कि सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। वो एकदम गोरे लंबे चेहरे पर नूरानी चमक लिए बिंदास कवियों जैसे दिखाई देते थे। जब वो दिल्ली एक इंटरव्यू देने आए तो उनकी अटैची में एक भी ढंग का कपड़ा नहीं था, सारे मैले थे। जब इंटरव्यू के लिए उन्होंने राजबेदी से पैंट कोट, मोहन राकेश से शर्ट और टाई उधार मांगी थी, तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति कैसा रहा होगा। और
1: इसी के साथ सुधांशु, कुंभ मेले का वो किस्सा भी बड़ा मशहूर है जब वो और मार्कंडी जी साइकिल से कुंभ मेला घूमने निकले। भूख लगी तो हलवाई की दुकान पर खूब खाया, बिल 9 रुपए आया लेकिन जेब में एक ठेला नहीं था।
0: जब उन्होंने, एक बात हम आपको और बता दें, उनकी दोस्ती भवानी प्रसाद मिश्रा और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से बहुत गहरी थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपने लेख वो सब कुछ पा लेना चाहता था में उन्होंने लिखा है कि वो बड़े मायावी थे। बहुत कम लोग हैं जो इतनी खुली जिंदगी जीते हों और फिर भी मायावी कहलाते हों। स्वस्थ, सुंदर, दिल फेक, जिंदा दिल आदमी थे वो। उनके दोस्त भी बहुत थे और दुश्मन भी। और अगर हम धर्मवीर भारती की बात ना करें तो भी बात बनती नहीं है। धर्मवीर भारती ने भी लिखा है कि माथे पर झूलने वाली लठ, हरदम शरारती मुस्कान, हरदम बेचैन, हरदम सक्रिय, ज़रा सी बात पर चुनौती स्वीकार कर लेने वाला, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी लाइन है। और ज़रा से प्यार में पिघल जाने वाला एक ऐसा आदमी था जिस पर कुछ मामलों में आप आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, पर कुछ मामलों में वो क्या बयान देंगे, वो क्या कहेंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा हम लोगों को भी नहीं था। और जब मुल्क में बेचैनी बढ़ी तो उनकी पंक्तियों ने इन जन आंदोलनों को राह दिखाई।
1: और जब मुल्क में बेचैनी बढ़ी जैसे तुमने कहा था तो उसमें कई सारी ऐसी कहानियां सामने आई और पंक्तियां भी जन आंदोलन को की राह को दिखाती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
0: सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आम इंसान की तकलीफों पर तंज कसते हुए भाई उन्होंने लिखा था कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ।
1: और समाज के सन्नाटे पर उन्होंने लिखा, इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात,

0: रात अब किसी भी बात पर खुलती नहीं खिड़कियां।
1: मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। 1975 के दौर में जब जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का समर्थन करते हुए कुछ लिखा गया, उन्होंने कविता लिखी थी कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशन दान है। तब तत्कालीन राष्ट्रपति फारुखुद्दीन अली अहमद से ब्रिटेन में पत्रकारों ने पूछा कि भारत में ऐसा कौन सा शायर है जो ऐसी बातें कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के जरिए जब लिखित सवाल पूछा गया कि ये बूढ़ा आदमी कौन है, तो वो जवाब में लिखता है कि वो बूढ़ा आदमी विनोबा भावे हैं। लेकिन अफसोस, महज 44 साल की उम्र में 30 दिसंबर 1975 को दिल का दौरा पड़ने से वो आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई।
0: सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा था, दिल के दौरे से उनका मरना एक मजाक लगता है। उन्हें न दिल का कोई रोग था, न ऐसी कोई शिकायत। वो बीमार आदमी नहीं थे, न तन से, न मन से, न आदत से। और उस शायर ने खुद भी कभी कहा था,
1: हाँ, जिस दिन पिंजड़े की सलाखें मोड़ लूँगा मैं, उस दिन साहर्ष जीव देह छोड़ दूंगा मैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और आप हमें अगर अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
0: yuvvaniald@gmail.com। अगर आप चाहें तो आप हमें हमारे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8002946250।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आप हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
2: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है, तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
3: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
5: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए

0: आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की।

0: निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे मोहनलाल जैसल और साथियों की आवाज में देवी गीत और सियाराम मिश्र से रामायण पाठ। 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अंशु सिंह की वार्ता होगी कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी सागरिका घोष। रात 8 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत, 8:30 बजे सबरस। रात 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। 10 बजे खेल दर्पण लखनऊ केंद्र से। 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित प्रेम कुमार मलिक का गायन सुनिएगा। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर विचार बिंदु में आप सुनेंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंत के विचार। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत ऋचा गुप्ता से रितेश कुमार शुक्ल की बातचीत होगी, बारिश के मौसम में फसलों की देखभाल। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय की वार्ता, खसरा कारण लक्षण और उपचार। सुबह 7 सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कल सुबह 7:30 पर प्रियंका मलिक का उपशास्त्रीय गायन और दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर प्रियंका मलिक का ख्याल गायन। कल सुबह 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की। 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी अंशुला सिंह। 10:05 पर सुनिएगा वॉयस ऑफ प्रयागराज, इसमें कल आप सुनेंगे डॉक्टर मुकेश खरे से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत का

पहला भाग 10:30 पर लोकगीत जंग बहादुर यादव, रश्मि टंडन और लाल बहादुर रागी और साथियों के स्वर में। 11:00 एक ही कलाकार कार्यक्रम में अभिनेत्री रेखा पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा। 11:30 पर फिल्म संगीत। 12:30 पर हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की। कल दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल शाम 5:15 युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। 6:30 ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम होगा पंचायत घर। शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। 8:00 चित्रपट संगीत, 8:30 सबरस और कल रात 10:00 फिल्म संगीत। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन को प्रकाश से भर देता है। धन चुराया जा सकता है, संपत्ति छीनी जा सकती है, लेकिन शिक्षा ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता।

शिक्षा केवल डिग्री पाने का साधन नहीं, बल्कि सही और गलत में अंतर समझने की शक्ति है। जिस समाज की शिक्षा मजबूत होती है, उस समाज का भविष्य मजबूत होता है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: श्रोतृभ्यः सेवां समर्पयति। अस्याः प्रमुखकार्यक्रमेषु सुर्ख्यों में स्पॉटलाइट, मनी मैटर्स, मार्केट मंत्र, स्पोर्ट्स स्कैन अथ च कंट्रीवाइड इत्यादयः अतीव लोकप्रियाः सन्ति। अनेनैव सह आज सवेरे परिक्रमा च पत्रिकाशैल्यां वार्ताः, समसामयिक विषयान् विश्लेषणञ्च श्रोतृन् प्रति प्रापयन्ति, येन सूचना मनोरञ्जनयोः आकर्षणं स्पष्टतया परिलक्ष्यते। इयं वाहिनी आकाशवाण्याः अधिकृत सजीव प्रसारण सेवायाम् अथ च ऑल इंडिया रेडियो लाइव इति चलदूरभाष अनुप्रयोगे उपलभ्यते, येन भारतस्य विश्वस्य च श्रोतारः यत्र कुत्रापि यस्मिन् कस्मिन्नपि समये कार्यक्रमाणां रसास्वादनं कर्तुं शक्नुवन्ति। भारत ऋतु विभागेन छत्तीसगढ़ राज्ये प्रतिदिनं अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णपरा पूर्व संचेतना प्रदत्ता अस्ति। हिमाचल प्रदेशे, बिहारे, मध्य प्रदेशे, उत्तर प्रदेशे, झारखंडे, ओडिशा प्रदेशे, उत्तराखंडे, पूर्वोत्तर भारतस्य केषुचित् भागेषु च श्वः यावत् प्रचंड वृष्टिः भवितुमर्हति। संपूर्णे झारखंड राज्ये प्रचंड वृष्टिः प्रचलति, येन राज्यस्य अनेकेषु भागेषु जलाप्लावनस्य आशंका वर्तते। ऋतुविभागेन अनेकेषां मण्डलानां कृते नारंगवर्णीया, पीतवर्णीया च संचेतना प्रसारिता। अग्रिमासु चतुर्विंशतिहोरासु संभाव्यस्य आकस्मिक जलाप्लावनस्य च सूचना प्रदत्ता अस्ति। रांचीनगरस्थितस्य ऋतुविभागस्यानुसारम् अद्य झारखण्डराज्यस्य अधिकांशभागेषु मध्यमतः प्रचण्ड वृष्ट्या सह मेघगर्जनस्य च संभावना अस्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
2: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है, और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में, स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
4: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर।

पंचों दुर्गा भैया के राम राम। हम कही देखा भाई पंच भैया हरे, देखा खूब जोर के बारिश होती है और झमाझम होती बा। तो भाई देखा खेती किसानी के लिए ठीक बा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बरस गई हैं तब गड़बड़ बा। तो बारिश में एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात बा कि भाई सेहत के ख्याल रखें। काहे से भाई देखा चाहे गुरु बछरुआ हो चाहे अपने सबके, सेहत ठीक रही तो सब बढ़िया रही। और देखा ये कहा जात भर कि अगर शरीर स्वस्थ बा तो खेती बाड़ी भी अच्छे से चली और दौड़त रहे बिना गाड़ी रुके। तो सेहत के जब बात आवा तो भैया देखा कि आज जौन बाटे सितंबर माह के पहला सप्ताह बा, तो सेहत के जब बात करी थी तो ये बात आवत है आज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनावा जात बाटे। ये भी ना मनावा जाते कि भाई देखा कि आप सब खाना हम सब खाई थी तो संतुलित बा कि नहीं, पोषण युक्त बा कि नहीं, इस सब पे बहुत भाई देखा ध्यान दे के पड़ा था। अगर पोषण युक्त खाना बा संतुलित बा निश्चित बा कि शरीर पे लागी कौनो बेरामी ना आई और स्वस्थ रह बा, तो भाई देखा कि जौन चार पैसा डॉक्टरी पे भाग बा वो चार पैसा भाई अपने के लिए घरे के लिए बची तो और भी काम पे लग सकत है। तो भाई देखा इस 7 दिन तो हम सब भाई देखा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तहत आप सभी के जागरूक करवाई करब। लेकिन कहा भी जात बा ना कि जैसे खाए अन्न वैसे रहा मन, तो भाई अन्न हमार कैसे रहा है? ए पे भाई देखा एक सोच विचार ला कि संतुलित

खाना, हरी पत्तेदार सब्जी हो, दूध हो, जैसे भाई पहले रहा वैसे अब तो नहीं देखा। आज के आधुनिक जीवन शैली में बहुत कुछ बदलाव अपने उस सब खियाँ देखे के मिलते बाटा है कि भाई चला गए भाई बहरे खाए लेहन, तो भाई ये सब ठीक नहीं ना। बहरे से और जितनी भी जाए भाई तली भुनी हुई चीज़ बा, ये सबसे बच के रहा के बाटा है, चाहे लड़कियाँ गदेल हो चाहे अपने सब एक परानी हो। तो जितना भी संतुलित खाना हो, अगर थाली संतुलित भा तो आपन सबके भाई देखा सेहत अच्छी रही, आओ स्वस्थ रह तो जीवन के गाड़ी जौन बाटे वो दौड़त रहे। तो भाई बात बतकई होते रही, और जौन अपने लोक परंपरा बा, अपने पंचायती के परंपरा बा गौनई के, तो एक मोहन लाल फैजल के एक उनके संगाती के एक विकास गीत बा, एक आप सुने।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो पंच भैया मोहनलाल के भाई विकास गीत सुनागा, साथे साथे संदेशा भी सुनागा। ये भाई देखा कि यह समय भाई देखा बारिश खूब होती बा, तो भाई जहाँ धान के लिए भी तो ठीक बाटे, लेकिन वहीं गोभी उभी के लिए बजरी के लिए भाई देखा नुकसान बाटे। लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया बारिश होती है, देर से आए लेकिन बढ़िया। उसमें सबसे अपने सबके लिए एक बड़ी चीज़ आवत है कि जल संरक्षण के का उपाय हम सब कह सकी थी। जल संरक्षण हुई तो भैया देखा पानी के जल स्तर बढ़ी, पानी जमीन पर जाई, तो निश्चित बाकी भाई हमें ये पानी फिर हमारे सबके एक बड़े उपयोग में आ सकत है। तो भाई कहा भी जाता है कि जल है तो कल है भैया। तो भाई देखा पानी जौन अपन सभे के जीवन बाटे, खेती या पशुपालन या पर्यावरण के लिए देखा ये सब बहुत बेहद जरूरी बात है। तो एक संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, एक जिम्मेदारी अपन सभे के बाद तमाम तरह के भाई देखा सरकारी योजना बाटे दार मनरेगा के तहत भाई देखा कि सरकार तालाब खुदवावतिया है, तो तमाम तरह के जौन भाई पोखर पुराना है ओकर ठीक करत बा, कुआँ भाई ठीक बा वह सब ठीक करावत बा। लेकिन अपने सभी की जिम्मेदारी बा कि पानी के उपयोग जितना उतना करी और दुरुपयोग ना करी। भाई मेड़बंदी सही रहा है, ट्यूबवेल में जब आवश्यकता हो उतने पानी ली, और समर से बल आज तो भाई देखा घरे घरे में आजकल लगाए दे यहाँ कि चलत बा तो चलते ही बा। तो ये सबके भाई थोड़ा थोड़ा अगर जिम्मेदारी नहीं होबा तो सबके ही जिम्मेदारी हुई तो जल संरक्षित हुई। तो भाई देखा कि आज पंच भैया मंगलवार के दिन आज रामायण पाठ के दिन, तो देखा सिया राम मिश्रा भैया का बतावत है एक तुहु सुना।
2: समादरणीय समस्त पंच महानुभाव, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में विभीषण शरणागत की बड़ी मार्मिक चर्चा की है। जिस समय राक्षसेंद्र रावण से प्रताड़ित होकर विभीषण अपने मन में वेदना लिए हुए प्रभु श्री राम की शरणागति की इच्छा से भगवान श्री राम की शरणागति के लिए आता है, उसके मन में विभिन्न प्रकार की चिंतन की बातें उठ रही हैं और आकाश मार्ग से रामादल की ओर जिस समय आता है कि चले उहरसी रघुनायक पाही अकरत मनोरथ बहु मन माही, देखी हूँ जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी, जे पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धरि धाये, हरि उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं।

अधिकार। श्री राम के चरणों का चिंतन करते हुए विभीषण प्रभु श्री राम के शिविर के समक्ष पहुंचे ही थे कि शत्रु का विशिष्ट दूत समझकर द्वारपालों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया कि कपिन विभीषण आवत देखा और जाना को रिपुदूत विशेखा ताही राखी कपीस पही आए समाचार सब ताही सुनाए। बानरा सुग्रीव ने यह सूचना प्रभु श्री राम को दिया। तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए। उस समय सुग्रीव जी कहते हैं कि

ही स्वभाव। सुग्रीव जी ने कहा, भगवान ये स्वेच्छाचारी विभिन्न प्रकार के वेश धारण करने वाले निशाचर हैं, हमारा भेद लेने के लिए आए हैं, इसलिए मेरी तो ये इच्छा है कि इन्हें बंदी बना लेना चाहिए। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया सुग्रीव आपका यह उत्तर उचित है, राजनीति के अनुसार है, परंतु मेरा एक प्रण है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। सुग्रीव जी ये मेरा प्रण है कि कूर कुटिल खल कुमति कलंकी कैसा भी व्यक्ति मेरे समक्ष आए ते सुन शरण सामूहे आए सकृत प्रणाम किए अपनाए, मैं अपने शरण में आए हुए का परित्याग नहीं कर सकता कि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। और इतना ही नहीं सुग्रीव जी, अगर ये विभीषण भेद लेने के लिए भी रावण के द्वारा भेजे गए हैं तो भेद लेन पठवा दस सीसा और तबहु न कछु भय हानि कपीसा और जो सभीत आवा सरनाई रखी हूं ताई प्राणी की नाई। इसलिए हे हनुमान जी आप सुग्रीव को साथ लेकर के सम्मान पूर्वक विभीषण जी को ले आइए कि उभय भांति तेहि आनौ हसिका कृपा निकेत जय कृपालु कहि कपि चले अंगद हनु समेत। और जब विभीषण जी प्रभु श्री राम के समक्ष पहुंचे तो प्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान मैंने आपके कृपालुता की चर्चा सुना है और मैं देखना चाहता हूं कि जो मैंने सुना है उसमें सत्यता कितनी है कि श्रवण सुजस सुनी आयऊ प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। ये कहते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में विभीषण गिर पड़े, प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने। भगवान श्री राम दौड़ करके विभीषण को अपने हृदय से लगा लेते हैं कि यस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय लगावा अनुज सहित मिली ढींग बैठारी। विभीषण जी को भगवान श्री राम ने अपने समक्ष बैठाया, अपने समकक्ष बैठाया और समाचार पूछते पूछते विभीषण को लंकेश शब्द से संबोधित किया कि कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। भगवान श्री राम ने विभीषण को जो ही लंकेश कहा सुग्रीव जी चौंक पड़े कि प्रभु श्री राम सत्य संध हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। आज प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंकेश शब्द से संबोधित किया है, क्या बात है। परंतु प्रभु श्री राम ने दोबारा विभीषण को जो ही लंकेश कहा कि सुनु लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। विभीषण जी के लंकेश शब्द से सुग्रीव जी ने सोचा कि मुझे प्रभु श्री राम को टोकना चाहिए, उठते हैं बोलने का प्रयास करते हैं। परंतु जिस समय भगवान श्री राम ने समुद्र का जल मंगा करके विभीषण का राज्याभिषेक करना चाहा उसी समय सुग्रीव जी अपने आप को रोक न सके, उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा भगवान आज विभीषण आपकी शरण में आया है, आते ही आपने इसे लंकेश बना दिया, अगर कल रावण आपकी शरण में आएगा तो उस समय आप क्या करेंगे, आपके समक्ष धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुग्रीव मेरी अयोध्या का वैभव लंका के वैभव से कहीं अधिक है, अवध राज सुर राज सिहाही दशरथ धन सुनि धनद लजाही। अगर रावण को विभीषण को मैंने लंकेश बनाया है और रावण मेरे समक्ष आता है तो

0: मैं उझे अवधेश बना दूंगा। हम आजीवन चारों भाई वन में निवास करके रावण को अवधेश अवश्य बना देंगे। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा।
1: तो भैया ये रहे सियाराम मिश्रा, आप लोग भाई सुनें। हम कही कि भाई देखा ए समय बारिश के मौसम बा, सेहत पे ध्यान रखें। काहे से भाई देखा ए समय मच्छर के भी समय बा, तो भाई मच्छर से भाई जरूर बचें। देखें कहूँ ऐसे आसपास भाई पानी जमा ना हो दें, वो पे सावधानी बरतें, गोरू बछरुआ का ध्यान रखें। अब देखा चला चली के बेला हो तो पंचो भैया, तो दुर्गा भैया राम राम करत आएँ आपसे, राम राम।

ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाड़ी लखनऊ केंद्र से।

0: ओम भैया,
1: हाँ रत्ना बहनी,
0: देखो ये बरखा बूंदी मैया जो है अपने पशुओं का बहुत ध्यान रखा जरूरी रहते हैं।
1: बिल्कुल ध्यान रखे के देखो, जब बरखा मौसम होते है तो अच्छा तो बहुत लागत है, लेकिन अपने साथ साथ बहुत बीमारी लेके आते है।
0: सही बात कहा, तो वो खास करके जो संक्रमण वाली बीमारी होती है ई बरखा मैया बहुत फैलती है, और कुछ अस बीमारी होती है जिनका इलाज है नहीं है।
1: देखो इनते बचे खातिन अपने जो हरहा गोरु हैं उनका नियमित जो है टीकाकरण वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगर नियमित हम पंचे अपने हरहा गोरुन का टीकाकरण कराए रहा तो आवे वाले समय में या जो बीमारी है या जो इस समय जो समय चल रहा है वह में बीमारी नहीं हो पाती है।
0: उनमें कुछ बीमारी ऐसी है कि अगर वही हुई जाए तो अपने पशु का, जिसे हम पंच मनईन मैया कुछ बीमारी होती है कि उनका इलाज नहीं है, यू ना हो पाओ इसके खातिर हम पंच टीकाकरण कराए के उनका सुरक्षित कर सके थे।
1: हाँ बहनी, और यह चीज़ यह है देखो, जैसे एक बुखार चलत है लंगड़िया बुखार,
0: हाँ
1: वो इतना घातक हो जाते हैं कबो कबो, अगर हम समय तेरे वह क्या बचाव ना करी टीकाकरण के माध्यम से तो बहुत परेशानी हो जाते हैं। तो अगर टीकाकरण करा दो तो भैया ये सब चीजें तेरे अपने हरहा गुरुन का बचाव जा सकत है।
0: सही बात कहा, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, लंगड़िया है, खुरपका मुंहपका है, ये सब बीमारी जो है अगर लग जाती हैं तो नुकसान बहुत होता है। दूसर जो है आपो का यह कहूँ ना कहूँ नुकसान उठाए पड़ते हैं।
1: हाँ, और नुकसान तब हूँ उठाए पड़ते हैं जब हम पंचन के यहाँ खबरें नहीं पता चल पाती हैं।
0: सही बात कहा, तो खबरें जरूरी है।
1: आओ जान लीजिए आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए योगी सरकार कृषि वानिकी नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों को नीति को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। कृषि वानिकी का मतलब है खेतों में फसलों के साथ उपयोगी पेड़ पौधों को भी उगाना। इससे किसानों को फसल के अलावा लकड़ी, फल और दूसरे उत्पादों से अतिरिक्त आमदनी का मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार करना है और लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस नीति के तहत किसानों को बेहतर पौधरोपण तकनीक, बाजार और उचित मूल्य से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा, यानी खेत में फसल के साथ पेड़ भी

0: और पेड़ों से किसान की अतिरिक्त कमाई भी। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश के कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की तैयारी है।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: रत्ना बहनी।
5: हाँ ओम भैया।
4: देखो ये बेहरा अपन धान की फसल खेत में खड़ी है, लहलहा रही है।
5: सही बात कहा तो, लेकिन उसके साथ साथ कीट जो है वह बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनका प्रबंधन बहुत जरूरी है।
4: तो रत्ना बहनी, आज की बातें जान लीन जाए डॉक्टर नरेंद्र प्रताप भैया तेरे।
6: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, धान की फसल आपके खेत में खड़ी है, तो उसमें कीट रोग प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर NP मल्ल साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि धान की फसल में कौन कौन से कीट हैं, कौन कौन से रोग हैं, और उनका प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
7: धान की फसल में कीट मुख्य रूप से जो प्रदेश में हमारे लगते हैं उसमें दीमक, पत्ती लपेटक कीट है, फुदका है, तना बेधक है, गंधी बग है।
6: और बीमारियों में?
7: उसके अलावा जो प्रमुख बीमारियां उसमें पत्ती धब्बा रोग है, सीथ ब्लाइट है, झोंका रोग है, उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट और बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक और फाल्स स्मट।
6: जी,
7: यही मुख्य रूप से बीमारियां हैं जो हमारे प्रदेश में इस समय फसलों में लग रही हैं।
6: तो दीमक से शुरू करें तो दीमक की पहचान हर किसान भाई कर लेते हैं, तो इनसे नुकसान क्या होता है और इनका प्रबंधन कैसे हो?
7: असल में दीमक विशेष करके वहाँ पर इसका प्रकोप होता है जहाँ पर पानी का उथला होता है, जहाँ पर पानी, एक तरह से कहिए कि जहाँ पानी का भराव नहीं होता है या पानी जल्दी उतर जाता है, वहाँ पर दीमक का प्रकोप होता है। दीमक सफ़ेद रंग का होता है, पंखहीन होता है, असिंचित परिस्थितियों में इस कीट के श्रमिक जड़ों एवं तनों को खाकर पौधों को सुखा देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में कच्चे गोबर का प्रयोग न करें और अवशेष जो है उसको अच्छी तरह से सड़ा दें, क्योंकि कच्चा जो कहिए सेलुलोज होता है उसी को ये खाता है। और इसके नियंत्रण के लिए ब्यूवेरिया बेसियाना विशेष करके बायोपेस्टिसाइड है, इसका 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम असड़े गोबर में मिलाकर लगभग 10 दिन बाद कई स्थानों पर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर रखने पर उसमें वो आकर्षित होता है और वहीं पर उसको मतलब प्रभावित कर देता है। इसके अलावा अगर हम दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो क्लोरपाइरीफास 20% 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करना चाहिए सिंचाई के पानी के साथ, तो इससे कीट का प्रबंधन हो जाता है।
6: डॉक्टर साहब, हानिकारक कीटों में पत्ती लपेटक भी लगता है?
7: जी जी, इस समय पत्ती लपेटक विशेष करके 15 सितंबर तक बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। इसमें इसकी सुड़ियाँ पीले रंग की होती हैं तथा पत्तियों के दोनों किनारों को जोड़कर अंदर रहते हुए पत्ती हरे भाग को खुरच खुरच के खाती है, जिससे पत्तियों में सफ़ेद रंग की पारदर्शी धारियाँ बन जाती हैं। अगर इस कीट का प्रकोप हो रहा हो तो खेत में जो प्राकृतिक शत्रु हैं जैसे मकड़ी है, मिरिड बग है, ग्राउंड बीटल है आदि का संरक्षण करना चाहिए। और अगर प्रकोप ज़्यादा हो गया है तो झरबेरी का जो बेर होता है उससे अगर उस पत्तियों को उस पर घुमा दें तो उसकी पत्तियां खुल जाती हैं और सारे कीड़े जो हैं वो नीचे गिर जाएंगे और इनके प्राकृतिक शत्रु उनको खा जाएंगे। उसके अलावा हम नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल विशेष करके 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव कर दें तो इस कीट का मतलब एक तरह से रिपेलेंट एंटीपिडेंट के कारण उसमें उसका प्रकोप कम होगा। यदि हम दवा का प्रयोग करना चाहते हैं, अगर सारे उपाय हमारे फेल हो गए हैं, तो क्विनालफास्ट 1.25 लीटर अथवा क्लोरपाइरीफास 1.5 लीटर, ट्राइजोफास 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है।
6: डॉक्टर साहब, धान की फसल की बात चल रही है,
7: जी जी,
6: तो फुदकों से काफी नुकसान
7: जी
6: होता
7: जी
6: है,
7: विशेष करके भूरा फुदका, हरा फुदका और सफेद पीठ वाला फुदका 3 प्रमुख फुदके हैं, लेकिन इसमें भूरा फुदका सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, विशेष करके वहां पर इसका प्रकोप होता है जहां पानी का भराव होता है वहीं पर। इसके शीश और प्रौढ़ जो भूरे रंग के होते हैं, पंख वाले भी होते हैं बिना पंख।

0: वाले भी होते हैं। और वानस्पतिक अवस्था में गोलाई में इसके प्रकोप से पौधे गोलाई में सूखते हैं, जिसे हापर बर्न करते हैं।
1: जी
0: और ये मधुस्राव भी छोड़ता है, जिससे पूरी फसल काली हो जाती है और बीच से गोलाई में सूखती है।
1: जी
0: इसके अलावा सफेद पीठ वाला भी फुदका होता है,
1: हाँ,
0: ये भी मतलब उसके शीश और प्रौढ़ उसके रस चूसते हैं और इससे पौधा पीला पड़ के सूख जाता है।
1: और इसी तरह से
0: हरा फुदका भी होता है, ये हरे रंग का होता है और विशेषकर प्रौढ़ के पंखों पर जो होता है इसके काले रंग के लास्ट में एक धब्बा होता है। और ये भी विशेष करके इसका शीश और प्रौढ़ रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और नोक से सूखने लगती हैं।
1: डॉक्टर साहब, चाहे भूरा फुदका हो, सफेद पीठ वाला फुदका हो या हरा फुदका, इनका प्रबंधन हो कैसे?
0: सबसे पहले इसके अल्टरनेट होस्ट जो होते हैं, मतलब जो उसका मुख्य फसल के अलावा जो खरपतवार होते हैं, खरपतवारों से मुक्त रखना है, उसी पर पलते हैं। पहले भूरे फुदके प्रकोप दशा में समय हो तो खेत का पानी निकाल देना चाहिए, और प्रकोप अगर हो रहा है तो उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और नीम ऑयल 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि 8 से 10 फुदके प्रति झुंड दिखाई दें तो इमिडाक्लोपिड 150 मिलीलीटर अथवा थायोमेथेक्सेम 100 ग्राम अथवा एस्टामिप्रिड 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है।
1: यानी 2.5 एकड़ में,
0: 2.5 एकड़ में यानी प्रति हेक्टेयर। उसके अलावा दानेदार अगर कीटनाशी का हमें प्रयोग करना है तो 2 से 3 इंच पानी में कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 18 से 20 किलोग्राम और कार्बोफ्यूरान 20 किलोग्राम में से किसी एक रसायन को हम 2 से 3 इंच पानी में अगर हम उसको बुरकाव करें तो इस कीट का भी नियंत्रण कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा जो धान में लगने वाले हानिकारक कीट हैं।
0: जी जी,
1: बीमारियां कौन कौन सी हैं जो धान की फसल की पैदावार प्रभावित कर सकती हैं?
0: इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भूरा काफी देखने को मिलता है। इसमें पत्तियों पर गहरे कत्थई रंग के गोल आकार के अंडाकार धब्बे बनते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अगर भूरा धब्बा की शिकायत है धान की फसल में तो उसका प्रबंधन हो कैसे?
0: इस रोग के नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 75% 2 किलोग्राम अथवा थायोफिनेट मिथाइल 70% गुलनशील चूर्ण 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
1: कहीं कहीं शीथ ब्लाइट की भी शिकायत आती है।
0: शीथ ब्लाइट की शिकायत वहाँ पर आती है जहाँ पर थोड़ा सा पानी का भराव होता है। इसमें देखेंगे तो इसका पत्र कुंचल यानी शीथ अनियमित आकार के उस पर धब्बे बन जाते हैं, जिसका किनारा गहरा भूरा और बीज का भाग हल्का भूरा होता है, और इस रोग का प्रकोप भरे पानी वाले खेतों में अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए यदि संभव हो तो खेत का पानी निकाल देना चाहिए, और रोग के प्रकोप की दशा में कार्बेंडाजिम 50% अथवा थायोफिनेट 70% घुलनशील 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी 500 मिलीलीटर की दर से छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, धान की फसल में झोंका रोग की भी शिकायत होती है।
0: हाँ, झोंका रोग की भी शिकायत होती है। इस रोग में पत्तियों पर आँख के आकृति यानी धब्बे बन जाते हैं, जिसके बीच में राख के रंग के किनारे कत्थई रंग के होते हैं। इसके अतिरिक्त ये डंठलों, बालियों तथा गांठों पर भी इसके काले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण अथवा थायोफिनेट मिथाइल 70% घुलनशील चूर्ण 1 किलोग्राम अथवा हेक्साकोनाजोल 5% ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, धान की फसल में मिथ्या कंडुआ यानी फाल्स स्मट की समस्या आ रही है।
0: जी जी, विशेष करके ये देखने मिला है कि जो हाइब्रिड धान है उसमें ज्यादा ये समस्या देखने को मिल रही है। इस रोग में बाली निकलने के बाद कुछ दानों के स्थान पर पीले रंग का पाउडर भर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में यदि संभव हो तो प्रभावित बालियां को तोड़कर उसको इकट्ठा करके बाहर नष्ट कर देना चाहिए, और खड़ी फसल में कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण 500 ग्राम अथवा कापर हाइड्रोक्साइड 77% WP 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8004376051, 800-43-76-051, 800-43-76-051। किसान भाई अपने खेत की निगरानी करते रहें और इसमें मित्र कीटों का भी ध्यान रखें। उसमें यदि 2 भाग शत्रु है और 1 भाग मित्र कीट है तो हमें दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवा का प्रयोग करना है उसको आखिरी विकल्प के रूप में करना चाहिए, पहले जैविक कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए।
1: डॉक्टर NP मल्ल साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया, कार्यक्रम में यहाँ अति सब जानकारी तो मिली। हाँ। लेकिन गौनई कोई नहीं सुनने को मिली।
3: अरे रत्ना बहनी, देखो अपने तक

0: खत बनिया बाजा धरा होए हैं, और मूंगफली खात हो चबैना चबात हो, ख्यात के काम करके लौटो और गौनाई सुनाई मिल जाते तो जू एकदम प्रसन्न हो जाते।
1: सही बात कहा था, तो काहे ना पंच भाई बहन इनका एक गौनाई सुनवा दें जाए।
0: हाँ, तो चंद्रभूषण तिवारी भैया के स्वर में यह है विकास गीत, और सुना जाए, पंचो भाई सुने आनंद ले।

0: ओम भैया,
1: हाँ रत्ना बहनी।
0: देखो बहुत जने बढ़िया खेती कराते हैं, लगता है कि जैसे उनका देख के हमो पंच कुछ सीखी और वैसे अपन काम नीक नीक करी। तो एक खातिन जो है आज के किसान भैया आए हैं, वही बता रहे हैं अपने बारे में यहाँ।
1: हाँ तो उनकी कहानी जान लीजिए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं गोंडा जनपद के रुपईडीह ब्लॉक के पूरे चैन कुंवर गांव के अनिल चंद्र पांडे भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप सफसली खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: डॉक्टर साहब, मेरी पढ़ाई लिखाई आईटीआई के बाद पॉलीटेक्निक किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया। उसके बाद में फिर हम गांव गए तो देखा खेती पाती हमारी बहुत अव्यवस्थित थी, तो हमने सोचा कि नौकरी ढूंढने के बजाय क्यों ना हम खेती पाती पर अपने ध्यान दें। तो खेती पाती अपने पास पर्याप्त मात्रा में थी, तो इसी से अपने गाँव का भी देख रेख करते रहे, गाँव वालों के साथ में रहेंगे, माता पिता का देख रेख करते रहेंगे।
2: तो ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: पहले जब हम खेती करना शुरू किए थे तो हमारे पास 7 एकड़ थी, 4 एकड़ जमीन हमने खरीदी है। अब इस वक्त हमारे पास 11 एकड़ है और लीज पर हमने लगभग 25 एकड़ जमीन ले रखी है।
2: तो कौन कौन सा फसल चक्र अपनाते हैं?
3: फसल चक्र में हम पहले गर्मी में धान लगाते हैं, धान के बाद फिर इधर आलू और गन्ना, और आलू और चना, आलू और सरसों, आलू और मसूर सब लगाते हैं,
2: यानी
3: साथ में
2: सफसली
3: सह
2: खेती
3: फसली खेती करते हैं सारी।
2: और मिठास का भी उत्पादन करते हैं?
3: हाँ, गन्ने का उत्पादन करते हैं, गन्ने के साथ सह फसली करते हैं, और ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिसमें एक फसल दूसरे फसल को नुकसान ना करे, नुकसान के बजाय ज्यादातर फायदा करे।
2: तो शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय आ रहा है, क्या तैयारी है आप?
3: शरदकालीन में गन्ना बोने के लिए हमने अपने खेत में जो अगेती वैरायटी की धान और थोड़ा समय से पहले नर्सरी डाल दी थी, कुछ खेतों में सीधी बुआई

0: भी की थी हमने। खेत तैयार करने के बाद उसमें हम गन्ना और आलू, गन्ना और चना, गन्ना और मसूर, गन्ना और सरसों, ये सब लगाएंगे।
1: यानी मुख्य फसल गन्ने की होगी, उसके साथ सह फसली खेती में आलू होगा, चना होगा, मसूर होगी, सरसों होगी।
0: डॉक्टर साहब मुख्य फसल दोनों ही हैं, उसमें अपने जो क्षमता है उन फसलों की उससे वो कम उत्पादन नहीं देती हैं। जैसे आलू हमने लगाया था, कई साल पहले से लगा रहे हैं, तो आलू में 175 कुंटल एकड़ तक उत्पादन हमने लिया है, जो आलू की उत्पादन क्षमता इतनी ही होती है, तो पूरा आलू भी उत्पादन लिया है।
1: और मिठास की फसल
0: और गन्ना में हमने 600 कुंटल प्रति एकड़ तक निकाला है, तो दोनों फसलें बराबर अपने क्षमता के अनुसार पैदा हो जा रही हैं, तो उसमें मुख्य फसल कोई नहीं, दोनों फसलें मुख्य होती हैं, दोनों उत्पादन बराबर दे जाती हैं।
1: तो जहां गन्ने के साथ आलू की सह फसली खेती की तैयारी है, तो बुआई और बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और आलू की खुदाई और फिर गन्ने की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
0: धान कटने के बाद उस खेत की हम गहरी जुताई करते हैं। गहरी जुताई करने के बाद उसमें ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना दोनों डालते हैं,
1: गोबर की सड़ी खाद के साथ
0: ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना डालते हैं, जिससे हमें कीटनाशक और फफूंदी नाशक नहीं डालना पड़ता है। लगभग वही जब आलू झुलसने का टाइम आता है तब डालना पड़ता है, और हम गन्ने में और आलू में कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल बवेरिया बेसियाना का प्रयोग करते हैं। तो जब हम जुताई करने के बाद ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना डाल देते हैं,
1: एकड़ पीछे कितना प्रयोग करते हैं?
0: एकड़ पीछे 2 किलो ट्राइकोडर्मा और 2 किलो बवेरिया बेसियाना डालते हैं।
1: और लगभग 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला देते हैं?
0: हाँ, 2 किलो ट्राइकोडर्मा 50 किलो सड़ी गोबर की खाद में और 2 किलो बवेरिया बेसियाना 50 किलो सड़ी गोबर की खाद में मिला देते हैं। शाम के समय उसको डाल के फिर रात में ही जुताई कर देते हैं, क्योंकि उसमें धूप ना लगने पाए।
1: जी, और फिर गन्ने के साथ जहाँ आलू की सह फसली खेती है, तो वैरायटी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है।
0: ख्याति एक वैरायटी है, और ख्याति ये वैरायटी ज़्यादा टेम्परेचर में, जैसे हमें आलू अगर केवल लगाना हुआ तो देर में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आलू जल्दी लगाना होता है तो टेम्परेचर सहने वाली वैरायटी होनी चाहिए। तो इसमें अगले साल मैं एक कुफरी नीलकंठ लाया था, तो वो भी काफ़ी टेम्परेचर में जमाव उसका अच्छा हुआ था, और कुफरी ख्याति जो है इसका भी काफ़ी टेम्परेचर में जमाव अच्छा होता है, दोनों का उत्पादन भी बहुत अच्छा है।
1: और गन्ने की कौन सी प्रजाति?
0: गन्ने में तो हम अगले साल हमने 16202, 15023 और 14201, ये 3 वैरायटियां लगाई थी।
1: तो फिर बुआई में कौन कौन सी बारीकी करते हैं? दो गन्ने की लाइनों के बीच में कितनी आलू की लाइनें होती हैं?
0: दो गन्ने की लाइनों के बीच में एक लाइन आलू की लगाते हैं, लेकिन आलू थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि दो लाइन लगाएं, लेकिन दो लाइन के लिए हमें मशीन लानी पड़ेगी। इस साल बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मशीन बनी है कुछ जगहों पर, तो देख रहे हैं अगर वो मशीन आ जाएगी तो दो लाइन करेंगे। वैसे एक लाइन लगाते हैं, उत्पादन तो पूरा आता है लेकिन साइज बड़ी हो जाती है आलू की, और 4 फीट पर गन्ने से गन्ने की दूरी और 4 फीट पर आलू से आलू की दूरी करते हैं हम।
1: तो फसल की भूख मिटाने के लिए कितनी मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रबंधन करते हैं?
0: सब फसली में डॉक्टर साहब आलू और गन्ना दोनों अच्छी खादों वाली फसलें हैं, ज़्यादा खाद चाहती हैं, तो इसमें जितना गन्ने के लिए रिकमेंडेड है उतना गन्ने में डालते हैं, जितना आलू के लिए रिकमेंडेड है उतना आलू में डालते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, दोनों की खादें अलग अलग पड़ती हैं, क्योंकि सह फसली में कोई भी जब आप लगाओगे तो ज़्यादा खाद लेने वाली फसलें हैं, अगर उनको खाद कम कर दोगे तो उत्पादन घट जाएगा।
1: यानी दोनों की भूख मिटाने के लिए जितनी संस्तुत मात्रा है
0: जी
1: उसका प्रयोग करते हैं।
0: फिर
1: खड़ी फसल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं सह फसली खेती में गन्ने के साथ आलू?
0: गन्ने के साथ आलू अगर सितंबर अक्टूबर में बोते हैं तो 1 हफ्ते में गन्ना जमाता है। गन्ने का शोधन जरूर करना चाहिए, गन्ने का शोधन नहीं करेंगे अगर हल्का भी पानी बरसा या ना भी बरसा तो जमाव खराब हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आलू और गन्ने के दोनों के बीजों का शोधन करें।
1: कैसे करते हैं?
0: एक दवा है हेक्साटॉप करके, तो उससे हम गन्ने के टुकड़े को उसमें डुबो लेते हैं और आलू को भी उसी में डुबो लेते हैं। और आलू और गन्ना बोने में जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो सबसे मुख्य बात यह है कि खेत जोतने के बाद तुरंत आलू बोना होता है। अगर आप खेत की जुताई किए और आलू का खेत सूख गया, ऊपर धूल आ गई, का आलू सड़ने लगेगा, तो एकदम हरा खेत होना चाहिए। तुरंत जुताई करके तुरंत आलू की बुआई शुरू कर दी जाए कि आलू के पास एकदम से नमी रहे, सूखी मिट्टी ना जाए। और गन्ने में तो आलू बोने के बाद फिर गन्ना डाल के लाइन में उसमें हल्की मिट्टी गिरा देते हैं।
1: और फिर क्या मेड़बंदी?
0: नहीं, मेड़ उसमें बनी

0: नहीं रहती है आलू में, जब हम आलू में बोते हैं एक डोरी रखते हैं उसी के सहारे किनारे आलू रख देते हैं, फिर हमने टंच प्लांटर एक ले रखा है जो 4 फीट पर मिट्टी दोनों तरफ से एकदम से बीज में पहुंचा देता है। उस टंच प्लांटर से उसको आलू की लाइन को बीच में करके लाइन से टंच से खींच देते हैं तो वो आलू ढक जाता है, फिर बगल जो मिट्टी गिरती है उसी के बगल मिट्टी रख के फिर एक कूंड में ट्रैक्टर चलाते हैं, जो एक नाली बनती है एक बाहर करते हैं, ऐसे करते जाते हैं। तो हमारे केवल आलू रखने के लिए मजदूर रखना पड़ता है, मिट्टी चढ़ाने के लिए मजदूर नहीं रखना पड़ता, ट्रैक्टर से चढ़ जाती है।
1: तो जो अब तक का आपका तजुर्बा है सफसली खेती का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: पिछले साल हमने पेड़ी में भी साफ फसली खेती की थी, पेड़ी काट कर उसमें बुआई करके लाइन बना दी, तो लाइन से पानी देते थे बीच में कुंड से, तो उसमें हमने पेड़ी के खेत में चना सरसों और गोभी लगाई थी, तो पेड़ी में भी हम साफ फसली लेने लगे हैं। हम सलाह यही देंगे कि अगर किसानों को खुशहाल रहना है और खुशहाल रहने के लिए साफ फसली खेती ही एक ऐसा उपाय है जो आपको घाटे से बचा सकती है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 91-25-086-048, 9125-086-048।
1: अनिल चंद्र पांडे भैया आज आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: बहनी
7: हाँ भैया,
6: देखो अपन जो खेती होते वह मौसम पर आधारित होते, और अगर हम पंचन के यहाँ मौसम के हाल पता चल जाते तो हम पंचे जो अपनी खेती में आगे क्या काम होते वो बड़ी आसानी से बड़े ढंग से कर पाए थे।
7: तो वही के खातिर मौसम की जानकारी देवा दीन जाए। मौसम की जानकारी जो प्राप्त हुई है भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 1 सितम्बर से लगाए के 7 सितम्बर तक में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहूँ कहूँ स्थान पर बरखा होए की संभावना है। और जो चेतावनी की बात की जाए भैया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 तारीख से लगा के 5 तारीख तक भारी से अत्यधिक भारी बरखा होए की संभावना है, और बाकी 6 और 7 तारीख का कोई चेतावनी नहीं है।
6: रत्ना बहनी देखो पंच भाई अपन कार्यक्रम सुनत है, उनका कई स्वागत है, अपन प्रतिक्रिया बतावे खातिर वही अपन पता नोट कर ले और अपन प्रतिक्रिया दे, तो पता बताए दो।
7: तो पता है कार्यक्रम किसान वाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन है 226001।
6: और जो अपने कार्यक्रम का ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com, तो ऐ पर अपन प्रतिक्रिया भेजो भैया, ऐसे ही सुनत रहो कार्यक्रम किसान वाड़ी। अब देखो बिरिया हो रही है, पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे। मेरी

0: बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर 4 घंटे में मुआवजा देने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के MSME अवार्ड समारोह में की शिरकत। कहा, विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है MSME सेक्टर। रेलवे ने मुरादाबाद संभाग के 712 किलोमीटर मार्ग के लिए कवच योजना के तहत 170 करोड़ रुपए किए मंजूर। इस कदम से और सुरक्षित होगी रेल यात्रा। और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर की 2000 क्विंटल। प्याज के दामों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षित भंडार से राज्यों को की जा रही सप्लाई। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश में बारिश से होने वाली जनहानि, पशुहानि और आर्थिक हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का आकलन कर 2 से 4 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, राहत सामग्री और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 549 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 248 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 552 नाव और मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए 312 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन राहत शिविरों में करीब 1700 लोग रह रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
3: उधर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और NDRF की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। रसिन डैम का जलस्तर स्थिर रखने के लिए पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण बाढ़ गंगा नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों को बाढ़ गंगा और बागेन नदी के किनारे, घाटों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। उधर वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गई है। प्रशासन की ओर से गंगा और वरुड़ा के तटवर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। वरुड़ा के जल भरवाव से प्रभावित कुछ परिवारों को पहले ही राहत शिविरों में रखा गया है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए NDRF, जल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम समेत संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। पीलीभीत में भारी बारिश और बनबसा बैराज से 2 लाख

0: से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है। ट्रांस शारदा क्षेत्र में फसलें और संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। उधर देवहा नदी की बाढ़ से कई गांवों के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। भारी बारिश को देखते हुए चित्रकूट और पीलीभीत में कक्षा 8 तक के स्कूलों में कल अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के आर्थिक वृद्धि को 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाने वाला बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, निर्णायक नीतियों ने देश की आर्थिक नींव को मजबूत किया है और वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित एमएसएमई अवार्ड समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एमएसएमई विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत देश की संकल्पना नहीं है, बल्कि ऐसे राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य है जो मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक में अग्रणी हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके।
2: विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि एमएसएमईज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक रूप से मजबूत भारत ही नहीं होता है, बल्कि ऐसा भारत है जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली कम्पिटिटिव हो, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी हो, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करे और अपनी स्ट्रेटेजिक तथा इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में भी वह आत्मनिर्भर हो।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 UPPET के लिए पंजीकरण, शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। यह असुरक्षित स्थितियों को टालने के लिए आवश्यक होने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है, गंभीर परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है और टक्कर के जोखिम को काफी कम करता है। यह पहल रेलवे सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। उधर देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: चीनी के भंडारण की नई सीमा इसी महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले

0: खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। उधर प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसे दिल्ली एनसीआर, वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में वितरित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार में प्याज आते ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में दाम और कम होंगे। रेल मार्ग से प्याज की सुरक्षित आपूर्ति के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: कौशाम्बी के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में पुलिस ने आज सुबह एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फरार चल रहे तीन आरोपियों पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर 4 घंटे में मुआवजा देने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एमएसएमई अवार्ड समारोह में की शिरकत। कहा, विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है एमएसएमई सेक्टर। रेलवे ने मुरादाबाद संभाग के 712 किलोमीटर मार्ग के लिए कवच योजना के तहत 170 करोड़ रुपए किए मंजूर। इस कदम से और सुरक्षित होगी रेल यात्रा। और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी भंडारण की सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर की 2,000 क्विंटल। प्याज के दामों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षित भंडार से राज्यों को की जा रही सप्लाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए डॉक्टर अंशु सिंह की वार्ता महाकवि कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम।
3: प्रकृति शब्द प्र उपसर्ग पूर्वकम क्री धातोः तीन प्रत्ययम् योजयित्वा निष्पद्यते। यस्य मूलार्थः अस्ति प्रत्येक रचनायाः आधारः मूल स्वभावो वा। आंग्लभाषायां नेचर इति शब्देन प्रकृति परिभाषिता अस्ति। यस्य मूल लैटिन शब्दः नटुरा अस्ति। यस्य अर्थः जन्मजातः प्रकृतिः अस्ति। अस्य लैटिन शब्दस्य अर्थः ग्रीक अवधारणायाः फिसित शब्दः अस्ति। अस्याः अवधारणायाः अन्तर्गतम् यूनानी विचारकाः जीवित सृष्टेः आंतरिक वृद्धिम् आंतरिक शक्तिम् वा निर्दिष्टम् कृतम् सम्यक् प्रतिबोधितवन्तः एवं पाश्चात्य दृष्टया भारतीय विचारधाराया निष्कर्षतः प्रकृतिः सह आधारः अस्ति यस्याम् वातावरणम् पर्यावरणम् वा चराचर सृष्टेः चक्रम् आधृतम् अस्ति। तदेव चित्रण शब्द चिति संज्ञाने धातोः संसृष्टम् यस्य अर्थः अस्ति चेतना मनः प्रभावित कर्त्र आकृति स्वानुभूतेः पुनर्प्रसारणम् अन्येषां साक्षात् रूप प्रवर्तनम्। मनुष्यस्य कस्यचित् अपि जीवस्य जीवनस्य प्रथम अनुभूतिः साक्षात् प्रकृति एव अस्ति। अस्मादेव कारणात् ईश्वरीय शक्तेः प्रतीकं देवानाम रूप प्राकृतिक शक्तैः एव द्योतिताः या वयं वेद सूक्तेषु पश्यामः। ये मानव सभ्यतायाः प्रथम साहित्यस्य दर्शनस्य च मूलाधाराः सन्ति। इमाम् एव प्रकृतिम् आधारं कृत्वा अनेके कवयः लेखकाश्च अनेकाः रचनाः कृतवन्तः। किन्तु एषु कविषु अन्यतमं स्थानं महाकवेः कालिदासस्य अस्ति। यतो हि प्रकृतिम् अयं महाकविः न केवलम् ईश्वरीयसत्तायाः जीवनस्य सृष्टुः रूपे दर्शितवान् अपि तु प्रत्येक प्राणिनि कालिदासस्य प्रकृतिः युगपत् गच्छन्ति अनुभूयते। महाकवि कालिदासस्य सप्तरचनाः प्रामाणिकाः रूपे स्वीकृताः सन्ति। यासु विक्रमोर्वशीयं मालविकाग्निमित्रम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् एतानि त्रीणि नाटकानि कुमारसम्भवं रघुवंशं च महाकाव्यद्वयं मेघदूतं

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सागरिका घोष की आवाज़ में ये भजन।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। नमस्कार दोस्तों, शाम का वक्त हो, आसमान पर बादल हो, हवाओं में मिट्टी की खुशबू हो और कहीं दूर से बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे तो दिल अपने आप किसी खूबसूरत गीत की तलाश करने लगता है। बारिश सिर्फ मौसम नहीं है, ये तो एक एहसास है, कभी मोहब्बत का, कभी यादों का और कभी उन अधूरी बातों का जो बरसती बूंदों के साथ फिर से याद आ जाती हैं। तो आइए आज की इस सुहानी शाम को समर्पित करते हैं बारिश, प्यार और सदाबहार फिल्म संगीत के नाम, और आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में मंजिल फिल्म का ये गाना, आरडी बर्मन का संगीत, योगेश के बोल।

किशोर कुमार की ही आवाज में अगला गाना सुनिए, कटी पतंग फिल्म से। संगीत है आरडी बर्मन का, बोल आनंद बख्शी के। दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद सुकून के कुछ पल अपने नाम करने का वक्त है। कभी कोई धुन हमें पुरानी यादों तक ले

आनंद बख्शी के। दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद सुकून के कुछ पल अपने नाम करने का वक्त है। कभी कोई धुन हमें पुरानी यादों तक ले जाती है, तो कभी कोई गीत दिल की उस बात को कह देता है जिसे हम खुद भी शब्दों में नहीं कह पाते।

एस डी बर्मन का संगीतबद्ध किया आनंद बख्शी का लिखा चुपके चुपके फिल्म से अगला गाना सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। बारिश की शाम जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही गहरी होती है किसी की याद। कभी कोई चेहरा बारिश की बूंदों में नजर आता है, कभी कोई पुराना गीत दिल को छू जाता है। बरसात की रात थी, तन्हाई का आलम था, एक गीत बजा और लगा कोई बहुत करीब है।

दोस्तों, अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में ब्लैक मेल फिल्म से। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की। शाम हो और उसमें किसी अपने की याद शामिल ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कुछ रिश्ते दिल के बहुत करीब होते हैं, दूर होकर भी हर पल हमारे साथ चलते हैं।

कहते हैं मोहब्बत में सबसे खूबसूरत एहसास होता है किसी का आपके दिल के इतने करीब होना कि उसकी मौजूदगी के लिए उसका सामने होना भी ज़रूरी न रहे। बस एक चेहरा याद आता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब इसी खूबसूरत एहसास को एक और सदाबहार गीत के साथ महसूस करते हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में घर फिल्म के इस गाने के साथ। संगीत है आर डी बर्मन का, बोल गुलजार के।

दोस्तों, ये खूबसूरत शाम की महफिल अपने अंतिम पड़ाव पर है। मोहब्बत कभी बड़ी बड़ी बातों की मोहताज नहीं होती। कभी एक नज़र, कभी एक मुस्कान और कभी सिर्फ एक गीत दिल की पूरी कहानी कह देता है। अब बारी है उस गीत की जिसमें प्यार भी है, अपनापन भी है और एक खूबसूरत सी शरारत भी है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आपने सुना मेरे जीवन साथी फिल्म से। संगीत था आर डी बर्मन का, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की। दोस्तों, आज हमने गीतों के साथ मोहब्बत महसूस की, यादों को जिया, कुछ भीगे भीगे पुराने लम्हों को फिर से महसूस किया। शायद इसीलिए तो संगीत को आत्मा की भाषा कहा जाता है, क्योंकि जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहां से संगीत शुरू होता है। तो दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अनुपमा देशपांडे की आवाज में ये भजन।

अनुपमा देशपांडे की आवाज में अभी आपने सुना भजन। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

दोस्तों, जहन के किसी कोने से तांक झांक कर रही हैं कुछ ऐसी गजलें जो आप ही नहीं मैं भी भूल चुका हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इन्हें सुना भी ना हो, क्योंकि ये HMV का वो खजाना है जो आज से 25 साल पहले अलग अलग EPs पर रिलीज हुआ था और अब कैसेट और CD की शक्ल में आप तक पहुंच रहा है। आइए उन्हीं भूली बिसरी यादों को आवाज दें और सुने उन गजलों की गुनगुनाती आहट।

जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना गजल। लीजिए अब सुनिए नुसरत फतेह अली खां की आवाज में सूफी गीत।

आपने सुना सूफी भक्ति गीत। इसी के साथ सबरस कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है।

0: जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
1: सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
4: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
5: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय

0: से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
1: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
2: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
1: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की

0: आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई तआवुन तंजीम SCO के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इको निज़ाम के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया है। SCO समिट नताइज पर मबनी 13 माहिदों के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई, जिसमें दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इकदामात और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। ज़िराअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने PM धन धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने नतायज पर मबनी निगरानी और किसानों को फवायद की बरवक्त फराहमी पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIR को रद्द करने का हुक्म दिया है। CJP ने मरकज की जानिब से यकीन दहानी के बाद 5 सितंबर का अपना मुजवजा मार्च वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकाम पर कल शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। और मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 बैन अलाक़वामी मैचों की सीरीज के लिए 15 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिज जमहूरिया की राजधानी बिश्केक में मुनक़िदा शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराह ने मुमलकत की काउंसिल की 26वीं मीटिंग में शिरकत की। समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सभी रुकन ममालिक पर दहशतगर्दी के लिए माली मदद फराहम करने, लोगों को भर्ती करने, शिदत पसंदी और महफूज पनाहगाहों के पूरे इको निज़ाम को नीस्त व नाबूद करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मामले में दोहरे मेयार की कोई जगह नहीं है। जनाब मोदी ने दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी लड़ाइयों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जंग और महाज़ाराइयाँ किसी मसले का हल नहीं है और सभी मामलों को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता बरस शंघाई तआवुन तंजीम तहजीबी डायलॉग की तजवीज़ पेश की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी का इजहार किया कि इसका पहला इजलास इस साल भारत में होगा। भारत की तरजीहात को SCO बिश्केक एलामिये में नुमाया तौर पर शामिल किया गया है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: एलामिये में बातचीत की खातिर एक कुर्रा अर्ज, एक कुनबा, एक मुस्तकबिल के नज़रिए का इरादा किया गया है। शंघाई तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की और कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के सिलसिले में दोहरा मयार नाकाबिले कबूल है। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दों की नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के खिलाफ जामे इकदामात पर भी जोर दिया। रहनुमाओं ने इस साल भारत में होने वाले SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का खैर मकदम किया और SCO यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस की भारत की पहल को सराहा। एलामिये में अंग्रेजी को SCO की सरकारी और कामकाज की जबान के तौर पर शामिल किए जाने की भी बात कही गई है। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद आज दोपहर वतन वापस होने के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि SCO समिट के मौके पर मुख्तलिफ मीटिंगें भारत के लिए सूदमंद साबित होंगी। बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम की 26वीं समिट 13 अहम नतायज के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई। इन नतायज में इंसदाद दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इकदामात, तवानाई, कुदरती आफत के बंदोबस्त और डिजिटल इश्तराक का अहाता किया गया है। SCO के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर इसमें 4 मफाहमत नामों और 20 से ज़्यादा फैसलों को मंजूरी भी दी गई है। ये इकदामात दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मुनज़्ज़म जराइम और एक दूसरे के ममालिक में दीगर खतरात से निमटने के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे। मुनशियात की गैरकानूनी तिजारत की रोकथाम के सिलसिले में भी मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं। आबोहवा की तब्दीली और तवानाई के सिलसिले में SCO ममालिक ने तवानाई की बचत और मौसर इस्तेमाल के सिलसिले में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। समिट में हंगामी सूरत हाल से मुतासर ममालिक की मदद के लिए एक बयान भी मंजूर किया गया। डिजिटल शोबे में रुकन ममालिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इश्तराक को वसत देने पर इत्तफाक किया। वजारत खारजा ने कहा कि ये नतायज इलाकाई सलामती, तरक्की और कनेक्टिविटी के मामले पर अपनी पोजीशन पर पेशरफ्त के लिए भारत को एक कलीदी प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। वजारत खारजा ने कहा कि समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आइंदा 25 बरसों के लिए एक नक्शे राह पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में जल शक्ति वजारत की महकमा जाती समिट के अख्तामी इजलास से खिताब करेंगे। इस 2 रोज़ा महकमा जाती समिट का आगाज आज हुआ है और ये वज़ीर-ए-आज़म के महकमा जाती समिट के नज़रिए की सीरीज़ की पहली समिट है, जिसका मकसद टीम इंडिया के जज्बे को मुस्तहकम करना اور تعاون پر مبنی وفاق کو مضبوط

0: है और अब इस बात की यकीन दहानी को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की अवलिन तरजीह नौजवानों की फलाह व बहबूद और तरक्की है।
1: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: इंसानी हकूक से मुतालिक कौमी कमीशन NHRC ने उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर की जानिब से एक लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के मामले में दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरों और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पुलिस सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें वो ग्रेटर नोएडा से सवार हुई थी। ये वाकया गुज़िश्ता महीने की 4 तारीख को पेश आया था। कमीशन ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस मामले पर उनसे तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिसमें तहकीकात और अगर मुतासरा को कोई मुआवजा दिया गया हो तो उसकी तफसील भी शामिल होगी। कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट के बाद आज खुद नोटिस लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई तक नीट पेपर लीक मामले से मुतालिक तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIRs को आज रद्द करने का हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत दी कि इन मामलों को आगे न बढ़ाया जाए या इनके सिलसिले में तहकीकात न की जाए और इन्हें हर तरह से रद्द समझा जाए। तहम अदालत आलिया ने दिल्ली पुलिस को उन 2873 लोगों के खिलाफ एक FIR को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी है जो जंतर मंतर एहतजाज में मौजूद थे और जिनका संगीन मुजरिमाना रिकॉर्ड है। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान रिकॉर्ड किया जो मरकज की जानिब से पेश हुए। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। नेपाल में आए अचानक तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। वहीं हिफाजती फोर्सेज की जानिब से मुल्क के 8 मुतासिरा ज़िलों से मजीद लाशों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। कई ज़िलों की नदियों में सतह आब के बढ़ने की वजह से सैलाब के ताज़ा अलर्ट और रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बचाव कारकुनों को फंसे हुए लोगों को निकालने के दौरान मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली 3 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के लिए भारत की 15 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर भारत की कप्तानी करेंगे जबकि तिलक वर्मा नायब कप्तान होंगे। इस सीरीज के 3 मैच 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को भी टीम में जगह दी गई है। जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट की वजह से जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज़ में नहीं खेल पाए थे। इसके अलावा वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। चीन के ग्वांगडोंग सूबे के शेंजेन में जारी चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की उन्नति हुडा बाहर हो गई हैं। आलमी नंबर 25 हुडा को खवातीन के सिंगल्स के शुरुआती राउंड में आलमी नंबर 12 जुनूबी कोरिया की किम ग्वांग ने सीधे सेटों में 10-12 और 18-12 से शिकस्त दी। अब सारी तवज्जो मुकाबले में रह गए भारतीय खिलाड़ियों पर मरकूज हो गई है। कई सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी कल अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इको निज़ाम के खिलाफ मुतहद होने पर जोर दिया। SCO समिट नतायज पर मबनी 13 माहिदों के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इकदामात और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। ज़िराअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने PM धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने नतायज पर मबनी निगरानी और किसानों को फवायद की बरवक्त फरहमी पर जोर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIRs को रद्द करने का हुक्म दिया है। CJP ने मरकज़ की जानिब से यकीन दहानी के बाद 5 सितंबर का अपना मुजवजा मार्च वापस ले लिया है। इसके साथ ही आकाश

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं स्वाति नाटेकर की आवाज में गजल। दोस्तों, गजल सिर्फ अल्फाज नहीं होती, ये दिल की वो आवाज है जो खामोशी में भी सुनाई देती है। कभी मोहब्बत बनकर, कभी याद बनकर, तो कभी किसी अधूरे ख्वाब की तरह दिल में उतर जाती है।

दोस्तों, मोहब्बत में सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि दिल अपनी शर्तों पर नहीं चलता। दिल को कहाँ मालूम है किसे चाहना है, किसे भूल जाना है। ये तो बस अपनी मर्जी से धड़कता है और अपनी मर्जी से किसी को अपना बना लेता है। तो आइए इसी बेपरवाह दिल की कहानी सुनते हैं स्वाति नाटेकर की आवाज़ में अगली खूबसूरत गज़ल में।

कहते हैं पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और मोहब्बत का एक सच्चा एहसास एक तरफ। एक लफ्ज़ है मोहब्बत, मगर इसके मायने हज़ार हैं। किसी के लिए खुशी, किसी के लिए इंतज़ार और किसी के लिए पूरी ज़िंदगी का खूबसूरत खुमार।

वाह क्या बात है। कुछ आवाज़ें कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचती हैं और कुछ गज़लें ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होती, उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। कहते हैं इश्क अगर सच्चा हो तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं, इश्क अगर सच्चा हो तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं और गज़ल अगर अच्छी हो तो खामोशियाँ भी बोलने लगती हैं।

दोस्तों, अब शाम धीरे धीरे रात में बदल रही है। महफिल अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो महफिल खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। रात खामोश है, चांद भी तन्हा है, हवा में किसी की याद का अफसाना है। कुछ लोग दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं, शायद इसी का नाम मोहब्बत है।

श्रोताओं, स्वाति नाटेकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गजल। इसी के साथ कहकशा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण लखनऊ केंद्र से।

0: यहाँ जीत और हार का फैसला मात्र मिलीमीटर के अंतर से तय होता है। यह खेल एकाग्रता का है, शारीरिक स्थिरता का है और मानसिक दृढ़ता का है। और पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो भारतीय निशानेबाजों ने ओलंपिक, एशियाई खेलों और विश्व कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिरंगा लहराकर देश का नाम ऊंचा किया है। लेकिन एक आम खिलाड़ी इस खेल को कैसे समझ सकता है और राष्ट्रीय स्तर का या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज कैसे बन सकता है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सत्यम सिंह जी। आप एक राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज रहे हैं, साथ ही साथ आप एक शूटिंग कोच भी रहे हैं और वर्तमान में भारतीय टीम में चयन हेतु आप ट्रायल दे रहे हैं। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि ये शूटिंग या निशानेबाजी जो खेल है, ये किस तरह की ये प्रतिस्पर्धा है, ये खेल क्या है, इसके बारे में बताएं।
1: प्रतिस्पर्धी खेल निशानेबाजी पूरी तरह से एक सटीक अनुशासन है और आपके सार्थक निर्णय का ये प्रमाण है कि अगर आपका निर्णय अनुशासित है तो आप सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य भेदक बन सकते हैं
0: जी।
1: और एक चीज इसमें और भी हम जोड़ना चाहते हैं कि इसमें नियंत्रण और अनुशासन, ये दो चीज ऐसी है जो कि मुख्य रूप से इसका अनुपालन करते हैं
0: जी। अच्छा, निशानेबाजी की अगर हम बात करें या जिसे शूटिंग कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: सर, मुख्य रूप से निशानेबाजी में तीन तरह की प्रतिस्पर्धा होती है
0: जी।
1: एक राइफल, दूसरी पिस्टल और तीसरी शॉटगन, जिसे हम अपने भाषा में बंदूक भी कहते हैं
0: जी।
1: और इन तीनों प्रतिस्पर्धा में, जैसे कि पिस्टल में हमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज में मैचेस होते हैं
0: जी।
1: जैसे 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल एंड 50 मीटर फ्री पिस्टल एंड 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल
0: जी।
1: और उसी तरह से राइफल वर्ग में 10 मीटर राइफल, 50 मीटर राइफल प्रोन, 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन और 300 मीटर के लिए इस वर्ग में हमारी बिग बोर की प्रतियोगिता होती है जो कि 300 मीटर की दूरी से खेली जाती है। उसमें भी दो इवेंट होते हैं, एक 50 मीटर, एक 300 मीटर प्रोन और 300 मीटर थ्री पोजीशन
0: जी। अच्छा, जो मुख्य जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो किस तरह की होती है, जैसे आपने 10 मीटर की बात की एंड देन फिर बाद में आपने और अन्य प्रतिस्पर्धाओं के बारे में बताया, आपने कुछ कॉम्पिटिशन के बारे में बताया, तो वो कैसी होती है, थोड़ा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बता दें आप।
1: देखिए सर, मुख्य रूप से हमारे इस खेल में प्रतिस्पर्धाओं को अलग अलग चैंपियनशिप, अलग अलग प्रतियोगिताओं के हिसाब से अलग अलग वर्ग के खेल को इसमें रखा गया है
0: जी।
1: जैसे कि चूंकि यह हमारा जो खेल है शूटिंग, यह 1907 में इसकी हमारे फेडरेशन की स्थापना हुई थी, जबकि 1897 से यह ओलंपिक में खेला जा रहा है ओलंपिक
0: जी।
1: इसमें मुख्य रूप से पहले जितने भी कैटेगरीज मैंने बताई, जितने भी खेल मैंने बताए हैं, वो सारे होते थे, बट अभी कुछ रिसेंट चेंजेस हुए हैं और उसमें क्या हुआ है कि कुछ बाकी सारे वर्ग को हटा करके मुख्यतः सारे कैटेगरीज में से एक दो इवेंट्स को ही सिर्फ ओलंपिक में जगह दिया गया है। जैसे कि पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल मेन, 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल वुमेन एंड 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन, ये चार कैटेगरीज हमारी पिस्टल में है

0: और राइफल में 10 मीटर एयर राइफल मैन, 10 मीटर एयर राइफल वुमेन, 50 मीटर थ्री पोजीशन मैन, 50 मीटर थ्री पोजीशन वुमेन,
1: जी
0: ये हमारी राइफल की चार कैटेगरीज हैं जो कि हम ओलंपिक में खेलते हैं। और शॉर्ट गन में हमारे ट्रैप है, ट्रैप मैन एंड ट्रैप वुमेन,
1: जी
0: स्किट मैन एंड स्किट वुमेन।
1: जी मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। आपने ओलंपिक की बात की, और जब हम निशानेबाजी की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हम जान पाते हैं कि ओलंपिक जैसे खेलों पे या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई अगर खेल हो रहा है तो वहां से हम समझ पाते हैं कि निशानेबाजी में ये प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो आपने जैसे 10 मीटर के बारे में बताया, एंड देन 25 मीटर के बारे में आपने बताया, फिर आपने ट्रैप के बारे में बताया, ऐसा इन सब कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में क्या करना होता है, या जो और भी प्रतिस्पर्धा है उसमें क्या करना होता है, उनका नाम के साथ आप बता दें हम।
0: सर देखिए, 10 मीटर प्रतियोगिता जो है ये मातृ प्रतियोगिता, मातृ इवेंट हमारी है,
1: जी
0: जिसमें कि मदर इवेंट हम इसको कहते हैं। बेसिक सारी यहीं से स्टार्ट होती हैं,
1: जी
0: और जनरली जो भी शूटिंग स्टार्ट करता है वो 10 मीटर पिस्टल या 10 मीटर राइफल से ही स्टार्ट।

0: करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हम जान पाते हैं कि ओलंपिक जैसे खेलों पे या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई अगर खेल हो रहा है तो वहां से हम समझ पाते हैं कि निशानेबाजी में ये प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो आपने जैसे 10 मीटर के बारे में बताया, एंड देन 25 मीटर के बारे में आपने बताया, फिर आपने ट्रैप के बारे में बताया, ऐसा इन सब कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में क्या करना होता है, या जो और भी प्रतिस्पर्धा है उसमें क्या करना होता है, उनका नाम के साथ आप बता दें।
1: सर देखिए, 10 मीटर प्रतियोगिता जो है यह मात्र प्रतियोगिता, मात्र इवेंट हमारी है,
0: जी
1: जिसमें कि मदर इवेंट हम इसको कहते हैं। बेसिक सारी यहीं से स्टार्ट होती हैं,
0: जी
1: और जनरली जो भी शूटिंग स्टार्ट करता है वो 10 मीटर पिस्टल या 10 मीटर राइफल से ही स्टार्ट करता है।
0: जी
1: और इसमें होता क्या है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में हमारी दूरी जो होती है वो हमारे हमसे 10 मीटर दूरी पे टारगेट को रखा जाता है। जो एयर पिस्टल में जो टारगेट जिसे हम जिस लक्ष्य को हमें भेदना होता है वो 0.5 मिलीमीटर के लिए हम उस लक्ष्य को भेदते हैं वो
0: अच्छा
1: होता है, और
0: जी
1: राइफल में 0.1 मिलीमीटर पे हमारा टारगेट होता है कि
0: जी
1: उस टारगेट को हमें 1 घंटे 15 मिनट में 60 बार एक ही जगह पे हिट करना होता है, उसका
0: अच्छा
1: अभ्यास हम करते हैं।
0: जी
1: ये एयर पिस्टल का हो गया। ऐसे ही 25 मीटर में दूरी 25 मीटर हो जाती है, जो हमारा कैलिबर है, जो हमारा एम्यूनिशन का कैलिबर है वो चेंज हो जाता है। ईयर पिस्टल में 0.177 बोर का कैलिबर का हम लोग यूज करते हैं पैलेट्स,
0: जी
1: और 25 मीटर पिस्टल में 0.22 बोर का एम्यूनिशन हम लोग यूज करते हैं, जिसकी की मारक संख्या ज्यादा होती है तो, और उसकी दूरी भी 25 मीटर हो जाती है। और इसमें आपके जो शस्त्र हैं वो भी बदल जाते हैं,
0: जी
1: वो अलग तरीके के शस्त्र हो जाते हैं। इसमें हम लोग मैगजीन भी यूज करते हैं इस
0: जी
1: इवेंट में,
0: जी
1: और इसके जो टारगेट होते हैं इसमें हम लोग 0.5 mm से लेकर के 1 मिलीमीटर तक का हमारा लक्ष्य होता है, जिसे कि हमें इसकी टाइमिंग अलग होती है, इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं उसमें हमें उसको भेदना होता है
0: जी
1: जी। और ट्रैप शूटिंग बेसिकली सर ये आउटडोर शूटिंग है जी। जनरली हम लोग अगर देखा जाए तो जो भी हमारे ओलंपिक्स या बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें जो हमारा क्वालिफिकेशन राउंड होता है या जो भी हमारा फाइनल राउंड होता है, जनरली ये इंडोर खेला जाता है, 10 मीटर, 25 मीटर एंड 50 मीटर।
0: जी
1: लेकिन जो ट्रैप है ये प्रॉपर हमारा आउटसाइड गेम है, और इसमें क्या होता है कि दो तरह के इवेंट होते हैं, एक ट्रैप होता है, एक डबल ट्रैप होता है। पहले दोनों कंसीडर किया जाता था, बट अभी रिसेंट चेंजेस हुए, डबल ट्रैप को हमारे बाकी सभी चैंपियनशिप से डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, और इवेंचुअली अभी कुछ दिनों के बाद मे बी नेक्स्ट ईयर से ये नेशनल में भी ये हमारा डबल ट्रैप इवेंट नहीं रहेगा। बट ट्रैप में दो इवेंट फिलहाल खेले जाते हैं, ट्रैप और डबल ट्रैप।
0: जी
1: ट्रैप और डबल ट्रैप में बेसिक डिफरेंस ये है कि हम ट्रैप में हमें 2 शॉट मिलते हैं एक टारगेट को हिट करने के लिए। जो हमारी क्ले बर्ड्स होती हैं वो एक मशीन के थ्रू एक निश्चित स्पीड में एक निश्चित दिशा में वो जाती हैं, और जिनकी दूरी मतलब टारगेट हम जहां तक अचीव कर सकते हैं वो लमसम 30 से 40 मीटर, 50 मीटर इस तरह से तक हम उसको चेज कर सकते हैं। और डबल ट्रैप में क्या होता है कि हमें 2 टारगेट को हिट करना होता है, 2 शॉट मिलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रैप और डबल ट्रैप में। ये गेम क्या होता है, इसमें हम शॉटगन यूज करते हैं इसको खेलने के लिए। इसमें 5 प्लेटफॉर्म बने होते हैं, बेसिकली होते 6 प्लेटफॉर्म हैं, 5 हमारे फ्रंट पे होते हैं, और जो 6वां प्लेटफॉर्म होता है वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म के जस्ट बिहाइंड पीछे होता है। तो इस तरह से हम देखें तो हमें एक साथ में इसमें 6 लोग प्रतिभाग करते हैं, और जब हमारा पहला खिलाड़ी शूट करेगा तो वो अपने प्लेटफॉर्म से हट करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, और जो 6वां प्लेयर रहेगा वो पहले प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। इसी तरह से रोटेशन होता रहता है, और हमें हर एक प्लेटफॉर्म से मतलब 5 प्लेटफॉर्म से फायरिंग करनी होती है, 6वां प्लेटफॉर्म हमारा वेटिंग एरिया होता है,
0: जी
1: और 5 अलग अलग जगह से खड़े होकर के हमें शॉट लेना होता है, टारगेट को हिट करना होता है। और डबल ट्रैप में भी सेम प्रोसेस होता है, बस उसमें हमें 2 चांस मिलते हैं ट्रैप में, और इसमें हमें 2 शॉट के लिए 2 टारगेट होते हैं।
0: जी
1: तो ये हमारा ट्रैप और डबल ट्रैप हो गया।
0: तो आपने जो कंपटीशंस बताए, जो भी प्रतिस्पर्धाएं आपने बताई हैं, उसमें आपने बताया कि 10 मीटर मेल के लिए होता है और 10 मीटर फीमेल के लिए होता है, विमेन का जो होता है कैटेगरी होता है। अच्छा, लगाना तो सिर्फ निशाना ही है, तो फिर 2 कैटेगरी क्यों रखी गई है? क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा मस्कुलिन पावर यूज होना नहीं है, तो महिलाओं में और पुरुषों में ये अलगाव क्यों किया गया है, इसके बारे में बता दें।
1: सर बेसिकली ये डिफरेंस बहुत सारी चीजों को देखते हुए किया गया है, जैसे कि जो हमारी महिलाओं का क्वालिफिकेशन स्कोर होता है वो हम लोगों से कम होता है और पुरुषों का ज्यादा होता है। चूंकि ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा मतलब

0: इसमें स्ट्रेंथ तो यूज होती ही है,
1: जी
0: और पहले से ये चीजें चली आ रही हैं कि थोड़ा सा गर्ल्स को, जो भी हमारी महिलाएं हैं उनको इसमें मोटिवेट करें, ज्यादा मौका मिल पाए और उनकी एक अलग कैटेगरी हो। तो इसमें हमारा एक मिक्स इवेंट भी कराया जाता है जिसमें कि दोनों साथ में खेलते हैं, साथ में रिजल्ट बनता है, साथ में हम उनका मेडल लेते हैं। तो ये भी है हमारे यहाँ है, बट चूंकि हर जगह पे ऐसा है इस वजह से
1: जी
0: इस गेम में
1: जी
0: भी मेल फीमेल का वो किया गया है।
1: जी अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा मैं कि एक सफल शूटर बनने के लिए किस किस तरह की ट्रेनिंग से गुजरनी पड़ती है?
0: सर, सफल शूटर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज़ ये होती है कि आप सही समय पे और सही जगह पे ट्रेनिंग लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी कहीं भी ट्रेनिंग लेना, और प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ट्रेनिंग को मतलब शुरू में बहुत प्रॉपर टाइम से करते हैं, अच्छे से करते हैं, बट बाद में वो जा करके उस चीज़ को फिर एज अ हॉबी ट्रीट करने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। शूटिंग अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले शूटिंग खेल के बारे में जानें, अन्यथा इसकी सिर्फ खूबसूरती को और इसमें सिर्फ इसके मतलब अच्छी चीजों को, कि जैसे हमें फिल्मों में शूटिंग होती है उस तरह से कुछ इमेजिन करके ना जाएं, क्योंकि ये इस गेम में पूरी तरीके से आपकी सभी चीजों का परीक्षा होता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, और चाहे वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस गेम में नहीं चाहते हुए भी इतना आप इकोनॉमिकल ये गेम नहीं है, आपको उस तरह से माइंडसेट बना करके इस गेम को स्टार्ट करना चाहिए। और एक अच्छे कोच, एक अच्छे गाइडेंस में अगर आप करेंगे तो बेहतर करेंगे आप और अच्छा करेंगे।
1: जी अच्छा, जो युवा इस खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर तक पहुंचने के लिए किन-किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है?
0: जो भी युवा इस खेल को खेलना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो किसी भी सरकारी क्लब या किसी भी एकेडमी पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, या किसी भी सीनियर खिलाड़ी से वो मिल सकते हैं, किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें बहुत ही मामूली प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम एक फॉर्म हमारा होता है एसोसिएशन का, उसे हमें फिलअप करना होता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जब हम वहाँ रजिस्टर करते हैं खुद को तो वो 600 रुपये उसका शुल्क होता है, 590 रुपये, उसे हम फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारे दो एसोसिएशन है, एक स्टेट एसोसिएशन है और एक मेरा नेशनल एसोसिएशन है। दोनों जगह आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। उसके बाद जितने भी कंपटीशन आते हैं, तो जब आप जिस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पोर्टल पे उन सारे कंपटीशंस की सूची दी जाती है कि कब कौन सा कंपटीशन होने वाला है, और उसके बाद उसमें आप जिस भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें आप अपनी एंट्री कर करके और आप सीधे जाकर के प्रतिभाग कर सकते हैं।
1: जी चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप जो निशानेबाजी जो खेल है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे?
0: मैं सभी श्रोताओं से निशानेबाजी के बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग, जो लोग भी निशानेबाजी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं या खेलते हैं, आप सभी लोग इस गेम को सिर्फ इसलिए ना खेलें कि हमें इंटरनेशनल ओलंपिक या इस तरह से खेलना है। इसके बहुत सारे और भी क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है, जैसे कि बहुत सारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे जाकर रुक जाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाकर के उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो एक मन में ये होता है कि हमने ये गेम क्यों चुना, या अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिक समस्या आती है, और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ये समस्याएं आती हैं आगे चल के, जो भी युवा हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसके, अब हमारी जो शूटिंग है ये एक PSG SSHD कोर्स में भी इसका इसमें आप उपयोगिता है, और ये कोर्स एज अ मतलब आप कर सकते हैं, इससे PhD कर सकते हैं, और दूसरा मतलब इससे आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, आप कोच भी बन सकते हैं, आप ज्यूरी बन सकते हैं, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप बहुत सारे, इसमें बहुत स्कोप है।
1: जी
0: तो आप अगर एज अ खिलाड़ी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका अदर सेगमेंट में जाकर के उसमें अपना करियर बना सकते हैं।
1: सत्यम सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और निशानेबाजी से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे शूटिंग खेल में चुनौतियां और संभावनाएं। इस विषय पर राष्ट्र स्तरीय निशानेबाज व कोच सत्यम सिंह से चंदन सिंह की बातचीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है एक और भेंट वार्ता, जिसका विषय है क्या है रेस वॉकिंग। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकर रानी यादव से बातचीत की है चंदन सिंह ने।
1: श्रोताओं, मैदान चाहे क्रिकेट का हो या फिर मुक्केबाजी की रिंग हो या फिर एथलेटिक्स का ट्रैक, खेल सिर्फ हमारी

0: शारीरिक परीक्षा ही नहीं लेते हैं, बल्कि हमारे अनुशासन की भी परीक्षा लेते हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्रतिस्पर्धा की, जहां पे सख्त नियमों के अंदर ही आपको अपनी गति और अपने संतुलन का परिचय देना होता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा की। तो क्या है रेस वॉकिंग और क्या कुछ है इसमें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं रानी यादव जी। आप अंतरराष्ट्रीय रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हैं, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार सभी को मेरा। मुझे बहुत खुशी हुई जो आपने ऐसा मंच हमको दिया
0: जी। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं, आप रेस वॉकिंग को अपने करियर अपना कैसे बनाया?
1: पहले तो मेरा स्टार्टिंग गेम जो था वो हैंडबॉल था, और हम लोगों का स्टार्टिंग स्पोर्ट्स का स्कूल से स्टार्ट हुआ। वहाँ हमारी गेम टीचर थी, अब नहीं है हम लोगों के बीच में, तो वो हम लोगों को हर गेम के लिए लेकर के जाते थे। तो पहले हमें पता नहीं था एथलेटिक्स में कितने इवेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया उसमें दिन प्रतिदिन हम लोगों ने अच्छा भी किया, प्लस उसके साथ साथ अपनी जागरूकता को भी इंक्रीज किया कि इवेंट है तो कैसे है, कैसे होता है, कहाँ होता है। और चूंकि हम लोग स्कूल लेवल पे जब खेलते हैं तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता है कि हमें ओपन टूर्नामेंट कैसे खेलने हैं, कहाँ जाना है, कैसे एंट्री करानी है, इसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है तो कहाँ जाना है, क्योंकि एक स्कूल का लाइन और स्पोर्ट्स का लाइन बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो स्कूल में जब सीजन आता है कि इंटर कॉलेज के नेशनल होने हैं, स्टेट होने हैं, तो आपको जाना है, पार्टिसिपेट करना है, अपने स्कूल के लिए मेडल जीत करके लाना है। लेकिन उसी बीच में कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी हो जाते हैं कि मतलब वो ऐसे टाइम पास में भी एक्चुअल खिलाड़ी बन जाते हैं। तो हमने कोई मतलब घर से ऐसा सोच के नहीं किया कि हमें स्पोर्ट्स करना ही है, और जब हम करना भी शुरू कर दिए तो हमें जब मेडल आना शुरू हो गया
0: जी,
1: सन 2000 से हमने अपना स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट कर दिया था। एथलेटिक्स में मैं 2002-2003 के आसपास आई, तो सिगरा स्टेडियम में हमारे एक सीनियर थे जो ट्रेनिंग किया करते थे, उनको देख करके मतलब हम लोग जब स्टेडियम में जाते तो हैंडबॉल में क्या था कि शूटिंग पासिंग करने के बाद बिठा देते थे साइड पे कि आप गेम देखो, स्किल देखो, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। फिर हमें लगता था यार हम यहाँ आते तो हैं, इतना टाइम देते तो हैं, आके बैठने के लिए तो नहीं आते, तो हमें अपने इस टाइम को भी यूज करना चाहिए। तो एक दिन गए हम, बोले भैया ऐसे ऐसे हम ये इवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको और इवेंट के बारे में नॉलेज नहीं था कि एथलेटिक्स के अंडर में इतने इवेंट आते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट ये हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मतलब इसमें बहुत मेहनत है, कर लोगी? हाँ, मैंने बोला हाँ मैं कर लूंगी। तो उस टाइम अंडर 16 में 3 किलोमीटर होती थी
0: जी।
1: तो फर्स्ट टाइम मैंने बात करके फिर ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे धीरे धीरे मेडल भी आने शुरू हो गए थे। तो पहला मेरा नेशनल में 2004 में मेरा मेडल था
0: जी। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं आप कि आपने रेस वॉकिंग में कौन कौन से कंपटीशन में आपने भाग लिया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी आपने कौन कौन से गेम खेले हैं, वो भी उसके बारे में बता दें।
1: मैंने 2004 से लेकर के 2008 तक जूनियर कंपटीशन जितने भी होते थे, एक साल में 3 से 4 कंपटीशन होते हैं, तो वो 2004 से लेके 2008 तक सारे कंपटीशन में मेरे गोल्ड थे। 2008-9-10 कंटिन्यूअस ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं
0: जी।
1: और मेरे एजुकेशन इधर विद्यापीठ से थी, प्लस उसके साथ 2009 में सीनियर नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट
0: जी
1: हुई मैं। तो मेरा मतलब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड भी किसी हॉस्टल और किसी बड़े कोच के उससे नहीं था, अपना मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, देखते गए जहाँ ट्रेनिंग अच्छा होता गया। तो सबसे ज्यादा हेल्प मुझे मिला सीनियर्स का, इसलिए कि वो लोग ट्रेनिंग करते थे, उनसे अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते थे, हम लोग बात करते थे, तो वो मतलब जो जूनियर बच्चे उनके पास थे या जूनियर बच्चे ट्रेनिंग करते थे तो उनके साथ हमें भी जगह देते थे कि चलो करने में इंटरेस्टेड है लड़की तो उसको भी जगह देना है इधर करने के लिए। तो उसका बेनिफिट यह होता था ना कि एक लड़के के साथ अगर आप प्रैक्टिस कॉम्पीट कर रहे हैं

0: तो ऑब्वियसली आपका कंपटीशन भी बहुत अच्छा होगा।
1: जी
0: 2010 में हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में 6th पोजीशन था। एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप भी मैंने पार्टिसिपेट किया रशिया में, जापान में, चाइना में। बाकी सीनियर जूनियर के मिलाकर के लगभग 45-50 के एवम में मेडल होंगे हमारे।
1: जी अच्छा, हम एथलेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो एथलेटिक्स में विभिन्न तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं, अलग अलग तरह की प्रतिस्पर्धाएं हैं, उसमें रनिंग आ जाता है, फिर और भी तरह के इवेंट्स होते हैं। तो ये रेस वॉकिंग जो होता है, ये रनिंग से कितना अलग है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: पहले तो वॉकिंग रेस के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि वो है क्या।
1: जी
0: और वो भी एक मतलब रनिंग टाइप सा ही है, लेकिन उसमें रनिंग में और वॉकिंग में इतना अंतर है। जैसे कि रनिंग जो करते हैं हम टो पे करते हैं, और जो वॉकिंग करते हैं हम हील बाल टो करते हैं। मतलब वो इसकी लैंडिंग होती है कि हील पहले लगाएंगे फिर बाल से टो होते हुए, ये ऐसे चलता रहता है।
1: जी
0: इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे आपका नी बैंड नहीं होना चाहिए और लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे वॉकिंग करने के टाइम में एक पैर हमेशा ग्राउंड के टच में होना चाहिए, कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। अगर वो ग्राउंड का टच छोड़ता है तो कि आप रनिंग कर रहे हो।
1: अच्छा,
0: तो ये अंतर होता है। स्पीड वैसी ही होती है, क्योंकि भाई रनर भी ट्रेनिंग कर रहा है और वॉकर भी ट्रेनिंग कर रहा है। तो जब किसी चीज पे हम अभ्यासरत रहते हैं तो वो बढ़ती है, घटती तो है नहीं।
1: अच्छा जी अच्छा, इसके नियम भी हमारे श्रोताओं को आप बता दें जल्दी जल्दी में, कि जो रेस वॉकिंग कंपटीशन है इसके क्या क्या नियम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
0: इसमें ये है कि जैसे कि नी बैंड नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, ये एक तरीके से फॉलो होता है। अगर रेस हो रहा है तो इसके टेक्निकल जज होते हैं जो देखते हैं। ये आम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो रनिंग कर रहा है कि वॉकिंग कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं क्लियरली भी रनिंग करते हैं वो तो एक आम जनता पकड़ सकती है, लेकिन जो इसका टेक्निकल पॉइंट होता है वो टेक्निकल जज ही देख सकते हैं। तो इसका भी एक होता है कि आपको जोन बना देते हैं, पेनाल्टी जोन, वो स्टार्टिंग लाइन से 70 मीटर पीछे होता है। और उसमें जैसे कि 3 रेड कार्ड जब आ जाता है एक खिलाड़ी को, तो उसको जितना ड्यूरेशन होगा, जैसे 1 मिनट या 30 सेकेंड या 1.5 मिनट, तो उस हिसाब से उसको उतनी देर तक के लिए उस बॉक्स में खड़ा कर दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: और उसका एग्जैक्ट पॉइंट भी बना होता है, उसको इधर उधर से कहीं से भी नहीं कि आ गए और कहीं से भी चले गए, एक प्रॉपर उसका पाथवे बनाया होता है, वहां से ही जाना है और उधर से ही निकलना है। तो जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है, चीफ जज उधर से सिग्नल देता है, फिर खिलाड़ी निकल के फिर शुरू कर देता है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये था कि रेस कर रहे हैं और ट्रैक में ही आपको वार्निंग मिलती थी, और उसके बाद अगर 3 वार्निंग आ गई तो डिस्क्वालीफाई हो जाता था बंदा। अभी अब चांस मिलता है खिलाड़ी को।
1: अच्छा, ये जब किसी को चेतावनी दी जाती है तो क्या ये संभव है कि ये मान लेना चाहिए कि वो खिलाड़ी जो है वो चेतावनी देने के बाद जब वहां पे इतनी देर तक वो खड़े रहेगा तो उसके बाद वो जीत नहीं सकता है।
0: नहीं, अभी जैसे एकाएक चेतावनी तो देते नहीं है, जैसे उसको कॉशन दिखाएंगे, नी बैंड का दिखाएंगे या जो भी फॉल्ट हो रहा है उसका पहले कॉशन दिखाएंगे, तुरंत दिखा करके नहीं करते। जैसे येलो कार्ड देंगे, 2 येलो कार्ड के बाद एक रेड कार्ड देते हैं, तो वो जब 3 रेड कार्ड आता है तब उसको पेनाल्टी जोन में जाना पड़ता है।
1: अच्छा,
0: और उसमें भी जो पेनाल्टी जोन में आ गए वो तो खिलाड़ी के जीवन पंती पे है। जैसे कभी कभी कोई खिलाड़ी गिर के भी उठ के अच्छा चलता है, तो वैसे ही कभी कभी लीड पे है प्लेयर, 1 राउंड की लीड दिया हुआ है सेकंड वाले को, तो ज्यादा से ज्यादा आधे राउंड का लीड कवर हो जाता है, आधे का बचा रहता है, तो वो आधे पर से भी रेस को कंप्लीट करता है। और कोई कोई खिलाड़ी होते हैं नर्वस होके वहीं रेस भी छोड़ देते हैं कि अब तो बहुत पीछे हो गए।
1: अच्छा, ये जो रेस वॉकिंग जो प्रतिस्पर्धा है, इसके लिए रोजाना क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है और क्या दिनचर्या होती है, किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है, इसके बारे में बताएं।
0: अगर इसके ट्रेनिंग के पर्पज से आप जाएंगे तो ट्रेनिंग तो इसकी कम से कम, अगर आप 42 किलोमीटर का टारगेट रख के चल रहे हैं या 10 किलोमीटर का टारगेट रख के चल रहे हैं, अगर 10 किलोमीटर का टारगेट रख के चल रहे हैं तो ऑब्वियस जो भी कोच होता है वो 20 किलोमीटर का टारगेट रख के चलता है प्रैक्टिस में। और ये नहीं है कि सुबह शाम केवल 20 किलोमीटर भगा रहे हैं, उसका हफ्ते भर का एक शेड्यूल

0: होता है, और पूरे हफ्ते भर में हमको लग रहा है कि 10 किलोमीटर वाले को 200 से 250 किलोमीटर का एवरेज निकाल देते हैं एक पीक पे रेस भागने के लिए। एथलीट को इंटरनेशनल लेवल पे मतलब कि ये नहीं है कि 10 किलोमीटर है तो हम उसको एवरेज कम कराएंगे या डिस्टेंस 10 किलोमीटर के हिसाब से कराएंगे। अगर 10 किलोमीटर हमें भगाना है एथलीट को एक टॉप लेवल पे, तो उसके लिए 250 300, अब जैसा वो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं ऑफ सीजन से लेके फुल सीजन और कॉम्पिटिशन पीरियड, मतलब पूरे 1 साल का वो उस हिसाब से प्रोग्राम अपना बना करके कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है, उसी में हमारी पावर ट्रेनिंग होती है, रिहैब होता है, मसाज होता है, सोना बात होता है, तो हमको विदाउट ट्रेनिंग ब्रेक किए हुए ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं।
1: जी
0: तो जैसे 5 सेशन ट्रेनिंग हो गई, मंडे मॉर्निंग इवनिंग, ट्यूसडे मॉर्निंग इवनिंग, फिर वेनेसडे मॉर्निंग, और वेनेसडे इवनिंग में रेस्ट देंगे, क्योंकि 5 सेशन के बाद बॉडी में इतनी फटीग हो जाती है कि उसको एक रेस्ट चाहिए ही चाहिए।
1: जी चलते चलते हमारे जो युवा खिलाड़ी रेस वॉकिंग कर रहे हैं और उसमें अपना करियर तलाश रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: को भी यही सजेस्ट करना चाहूंगी, निरंतर अभ्यास करते रहने से फलता जरूर मिलती है, लेकिन आप बंद करके प्रयास मत करिए। पता चला कि हमारी कैपेसिटी 10th के क्लास की है और हम 5 क्लास वाले टीचर के पास पढ़ रहे हैं, तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए समय के साथ साथ बदलाव भी जरूरी है। कोचिंग पे जो आज की युवा पीढ़ी है बहुत शॉर्ट टर्म में रिजल्ट ढूंढती है, मतलब एथलेटिक्स एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है गेम का कि कम से कम 8 साल 9 साल जब ट्रेनिंग एज होती है, बायोलॉजिकल एज नहीं बता रही हूँ, ट्रेनिंग एज, जब इतना अगर आप कंटिन्यूअस ईमानदारी से कर रहे हैं तो 8 साल 9 साल जा करके आप नेशनल में बेस्ट ऑफ 4 में, बेस्ट ऑफ 3 में, बेस्ट ऑफ 2 में घुसना शुरू कर देते हैं।
1: रानी यादव जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और रेस वॉकिंग से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकर रानी यादव से चंदन सिंह की ये बातचीत अभी आप सुन रहे थे, जिसका विषय था क्या है रेस वॉकिंग। इसी के साथ कार्यक्रम खेल दर्पण संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में वाचन आकांक्षा सिंह का था, संपादन और प्रस्तुति चंदन सिंह।
3: राज्य स्तरीय प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: विविध भारती के खजाने।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित प्रेम कुमार मलिक का राग रागेश्री में धमायर गायन।

Bihari,

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित प्रेम कुमार मलिक का राग रागेश्री में धमार गायन। आपके साथ पखावज पर संगत की थी अंकित पारिख ने, हारमोनियम पर शमशेद अहमद खान ने, तानपुरा पर अंकिता पांडे और आकाश कुमार ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है।

0: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens.